असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाकिनी को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वश्रेष्ठ देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की बस प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष काम धेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। उसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे और खारे समुद्र

0: तट पर देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया, देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति-भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे, भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा, कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहसों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई, मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दशी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
0: कुछ सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है, आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रु और वनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर वनिता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उसमें से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया, उनके अभीष्ट स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देखकर यथेष उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप मिले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े खोजी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं, और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। सुवन गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गए और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनो, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से साध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मुड़ से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए, वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया, चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे, धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से करुण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े, उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8,100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान ध्यान करता था, उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर नियुक्त है, उनकी दृष्टि से विश्व का संचार होता था। वरुण जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचे और पंजे से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। वरुण जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुण मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुण जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुण जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत की जाते देखकर क्रोध में भरकर बज्र चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र इनकी हड्डी से ये बज्र बना है, इनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुण ने अपना एक पंख गिरा दिया, उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुण ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए, आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया, उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यों से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया, ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा। हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धर्मगिरि तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं, हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं, गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए, उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो, मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियाँ है, हम नहीं जान पाएंगे। और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए। हाँ। और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधू ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है, और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियाँ जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा? तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है, और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई, तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहां जाकर के और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगल पुरः सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि यह
1: अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है,
0: देखा तो सबने एक दो को ही,
1: आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हृष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर्षे गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधये देवालय गृढ़ो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही, हाँ। अब देवालय पर्वत है, हाँ। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है, मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदाय यत्नत। सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय, मंदराचल, अस्ताचल, अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहां से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा सुगंधित हवा बहती है वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुड़ नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुड़ आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्रे भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से, और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
0: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद
0: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

Radio 107.2 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहाँ उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: बिन बुलाए मेहमान,
2: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है और फिर लास्ट आनंद है। और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से

अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा कि आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और
की स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब

0: होंगे जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधियते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
3: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे वाले दिन आपके लिए खास रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत कमाल की है, बहुत टेस्टी है। कई सारे लोग इसके दीवाने हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे ये रेसिपी आज जो मैं लेकर आई हूँ, मेरी फेवरेट है और बहुत लोगों की फेवरेट है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ इस रेसिपी के बारे में सारी जानकारी दूंगी, इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगी और साथ ही कितने, देखिए ये पुरानी है, कितनी पुरानी रेसिपी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, वो भी घर पर इजी तरीके से। कई बार होता है आप रेस्टोरेंट में चीजें खाते हैं या स्ट्रीट स्टाइल खाते हैं, बड़ी स्वाद लगती है लेकिन घर पर वैसा स्वाद नहीं आता है। घर पर वैसा स्वाद कैसे लेकर के आए, ये बात तो मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसे जल्दी से झटपट से घर पर बना सकते हैं और वो भी क्वालिटी और क्वांटिटी, जो कि आपको बाहर नहीं मिलती ना, आपको घर में मिलती है। तो बस बनाइए खाना और छा जाइए सबके दिल और दिमाग पर, आपका खाना जो है बिल्कुल छाने वाला है, क्योंकि आज की जो रेसिपी है ना वो है ही कुछ ऐसी। चलिए इस रेसिपी के बारे में सारी जानकारी आपको जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आपका हिम्मत जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ जुड़े रहिए और अभी लेकर के आ रही हूँ रेसिपी। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए। दिस इज मी आर जे साक्षी एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. आज है सैटरडे का दिन और आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी आज मैं लेकर के आ गई हूँ. और इस रेसिपी के बारे में बहुत सारी जानकारी भी आपको देने वाली हूँ. जी हाँ, ये जो आज की हमारी रेसिपी है ना, मतलब आप जब ये इस रेसिपी के बारे में सुनेंगे ना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा. लेकिन उससे पहले बता दूं, देखिए अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन को लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, उसके सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना. और जैसे ही आप ऐप देख लेंगे, बस आपको डाउनलोड करना है 150 पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी रहकर. तो बस जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप को. और साथ ही आपको बता दूं, आप हमें भाई बहुत सारी और जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगी और बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

हो।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ. प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ गई हूँ और बहुत सारी बातें कर रही हूँ. अच्छा, आज ना सैटरडे का दिन है और मैं बात कर रही हूँ रेसिपीज की. देखिए, एक रेसिपी नहीं बल्कि आज जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये एक जन्नत है जब आप खाएंगे और एक इमोशन है. और मतलब जिसके अगर मैं बात करूँ ना, जब आप इसे बनाएंगे तो आपका जो पूरा मोहल्ला है ना वो महक उठेगा और दिलों की धड़कन की आज मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोगों की. अपनी भूख को ना बहुत ज्यादा मत बढ़ाइएगा, सुबह सुबह का टाइम है. बस क्या कीजिएगा, अपना एक डायरी और एक पेन, बिल्कुल नोटपैड बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि घर पर कैसे बनाए ये हमें पता नहीं है. और जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ और वो और कोई रेसिपी नहीं बल्कि है बिरयानी. जी हाँ, बिरयानी बताने वाली हूँ आपको. तो बिरयानी की जो रेसिपी है ना, इसकी बात करने वाली हूँ आपसे. तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगी. तो भाई, सुबह सुबह का टाइम है और अचानक से किचन से अगर धीमी धीमी केसर की, घी की और खड़े मसालों की शाही खुशबू आने लगे ना, तो सच बताऊँ दिमाग मेरा बत्ती जल जाती है कि बस भाई बस ये जो कुछ अलग आज बन रहा है. और आज ना काफी ज्यादा मजेदार जो है ये वीकेंड निकलने वाला है, क्योंकि कुछ तो शाही है जो किचन में बन रहा है. या फिर अगर आप मन बना लें, अगर आप बना रहे हैं बिरयानी तो मन बना लें. देखिए, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बिरयानी जो है पसंद आती है. आप चाहे इसे ऑफिस ले जाइए, आप इसे डिनर में खाइए, डब्बा खुलते ही सभी लोगों की नाक जो है ना बिल्कुल तेज हो जाती है और सब कहने लगते हैं बस बिरयानी हो जाए, बस ये थोड़ी सी बिरयानी हो जाए मजा ही आ जाएगा. एक चम्मच क्यों ना हो जाए मजा आ जाएगा. और उसके बाद भाई चम्मच पर चम्मच का जो सिलसिला है ना वो चलता रह जाता है. जब बिरयानी नाम सुनते ही ना हमारा दिल जो है वो झूमने लगता है. ये बातें जो है भाई मैं आपको बता दूं, दिल तो छू ही रही है. लेकिन आपको इस डिश के बारे में भी, यानी कि बिरयानी के बारे में भी जरूर बताऊंगी. लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रेस्टोरेंट 107.8 FM. फील गुड, फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. अच्छा, क्या आप जानते हैं बिरयानी जिसे हम बिल्कुल अपना देसी समझते हैं, उसका जो जन्म है भाई वो असलियत में

हमारे देश में नहीं हुआ था। जया शौक बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि बहुत ही देखिए आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमारे देश की है ना। नहीं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बिरयानी का असली इतिहास हमें मिडल ईस्ट यानी कि एंशिएंट पर्शिया ईरान लेकर के जाता है। बिरयानी शब्द जो है वो पर्शियन वर्ड है जिसे बिरयान जो है वो आया था, इस वर्ड से निकल के आया था जिसका मतलब होता है फ्राइंग बिफोर कुकिंग यानी कि पकाने से पहले तेल या घी में भूनना। अब सदियों पहले जब पर्शिया नोमैड्स और मुगल्स आर्मी जो है वो ट्रैवल करती थी तो वो चावल मसाले और मीट को एक ही मिट्टी के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर वो पकाते थे और वहां से इस शाही डिश का नाम जो है वो भाई चर्चा में आया, इसको पता चला लोगों को और वहां से जन्म हुआ बिरयानी का यानी कि बिरयान का। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगी आपको बिरयानी के बारे में, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और इसी के साथ बात मैं करी एक बहुत ही खास रेसिपी लेकर के आई हूँ. सैटरडे का दिन है और आज की हमारी रेसिपी है बिरयानी की. जी हाँ, बहुत ही कमाल टेस्टी रेसिपी आज मैं यानी कि आरजे साक्षी आपके लिए लेकर के आई हूँ. अच्छा, बिरयानी की मैं बात करूँ ना तो एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट आपको बताती हूँ. कहते हैं कि मुगल क्वीन मुमताज महल ने एक बार आर्मी बैराक्स का दौरा किया था और देखा कि सैनिक जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हैं. उन्होंने शाही बावर्ची से कहा कि ऐसी कोई एक डिश आप बनाइए जिसमें चावल, मसाले और मीट का एक परफेक्ट बैलेंस हो, जो न्यूट्रिशियस भी हो और स्वादिष्ट भी. और बस वहां से शाही किचन में बिरयानी की एंट्री हुई. सोचिए जरा, हमारे देश ने इसे ऐसा अपनाया कि भाई उसमें अपना देसी तड़का दे दिया और कभी मतलब बहुत ही एक अलग स्वाद आपको मिल जाएंगे, फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे. वैसे आप बताइए, आपकी जो फेवरेट बिरयानी रेसिपी है भाई वो कौन सी है? वो हैदराबादी है और या फिर वो भाई कोलकाता स्टाइल बिरयानी है, या फिर आपको वो जो वेज बिरयानी होती है वो पसंद है? कौन सी आपकी फेवरेट है वो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइएगा. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 हमारा नंबर है. तो जल्दी से मैसेज करके बताइए आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है, कौन से स्टाइल की पसंद है. लखनऊ स्टाइल आपको पसंद है, आपको हैदराबाद पसंद है, कोलकाता स्टाइल पसंद है, या फिर जो हम वेज बिरयानी खाते हैं वो, बस जल्दी से बताइएगा. नंबर आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से दोहराती हूँ, 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनेवरेज 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. लेकर के आई हूँ आपके लिए आज एक खास रेसिपी जिसका नाम है बिरयानी. जी हाँ, अच्छा क्या आप जानते हैं बिरयानी जिसे हम बिल्कुल अपना देसी समझते हैं भाई, वो हमारे देश की नहीं बल्कि आई है ईरान से, मिडिल ईस्ट से आई है और बड़े वही खास अंदाज में से पकाया जाता है, खाया जाता है. अच्छा मैं आपको बता दूं, भारत को ऐसे ही नहीं विविधता का देश कहा जाता है. हमारे यहाँ हर रीजन का अपना एक स्पेशल टेस्ट है, बिरयानी मेन्यू होता है. हैदराबाद की तीखी और वही दम स्टाइल बिरयानी बड़ी मशहूर है. लखनऊ की खुशबूदार और नजाकत भरी जो अवधी बिरयानी है बड़ी मशहूर है. वहीं हमारी प्यारी कोलकाता बिरयानी जिसमें वो मीठा नरम सा जो है, एक देखिए बड़ा ही खास आलू और साथ ही एग भी जो है, उबला अंडा जो है वो डाला जाता है और पूरा परिवार एक साथ बैठ के गर्मा गर्म बिरयानी जो है खाता है. हांडी मतलब बिरयानी में जो बनती है बड़ी स्वादिष्ट होती है और बहुत मज़ा आता है. खाना जो है हर दिन को देखिए त्यौहार जैसा बना देता है, एक ऐसा खाना जो कि बिरयानी जैसे मैं कहूँगी बड़ी खास होती है. तो आप भी मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको बिरयानी जो है फेवरेट कौन सी वेराइटी आपको पसंद है. जल्दी से नंबर है 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM. Feel good, feel light.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती हैं बातें और इसी के साथ देखिए बातें हमारी चल रही हैं और मैं आपके लिए खास रेसिपी लेकर के आ गई हूँ. और आज की हमारी जो खास रेसिपी है वो है बिरयानी, मुगल रॉयल बिरयानी रेसिपी आज मैं आपको बता रही हूँ. तो देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक किसी रेस्टोरेंट या ढाबे से आने वाली बिरयानी की खुशबू आपको सीधा आपके बचपन में ले जाए. भाई मुझे याद है कि संडे की दोपहर को जब घर में कुछ स्पेशल बनता था और जब मम्मी हांडी का वो जो आटा, क्योंकि वो सील किया जाता है उससे, भाई वो हटाती थी तो मतलब ऐसा लगता था जैसे मानो बस प्लेट लेके और रोज हांडी के आगे बैठ जाओ और खाते रहो, बस जितनी मर्जी आप बिरयानी खाते रहे वो खत्म ही ना हो. और भाई मुझे तो बिरयानी बड़ी पसंद है, वेज बिरयानी भी जो है लोग काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, कई सारे लोगों को वेज बिरयानी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और कई सारे मैसेज भी आए हैं. व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है कविता जी का, जिन्होंने लिखा है कि साक्षी घर पर जब भी वेज बिरयानी बनाते हैं वो चावल चिपक जाते हैं या पुलाव जैसे लगते हैं. भाई मैं आपको बता दूँ, डोंट वरी कविता जी, बिरयानी का एक एक दाना खिला खिला होना चाहिए, मसालों का बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए. तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताती हूँ शाही वेज दम बिरयानी आप घर पर कैसे बनाएंगे. स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपको बताऊंगी ताकि चावल जो है वो दाना दाना खिला खिला बने, वही मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ खास रेसिपी लेकर के आई हूं बिरयानी के बारे में आज आपको बता रही हूं. तो बिरयानी भाई, ये जो रेसिपी है ईरान का जो एक खास वहां से रेसिपी जो है वहां आई है और इंडिया में मुगल्स के जरिए वही आकर लखनऊ और हैदराबाद में बसी हुई ये रेसिपी आज हमारे दिलों पर राज कर रही है. अब इसको कैसे बनाना है जल्दी से बताती हूँ. सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स. बासमती राइस लेने हैं लॉन्ग ग्रेन वाले 2 कप, और 30 मिनट्स के लिए आपको 30 मिनट तक के लिए आधे घंटे के लिए इसे भिगो देना है. इसके बाद मिक्स वेजिटेबल यानी कि गाजर, बीन्स, फूल गोभी और साथ ही साथ स्वीट कॉर्न लेना है 1.5 कप. पनीर क्यूब्स लेने हैं 100 ग्राम, और दही जो है वो थोड़ी थिक लेनी है 1/2 कप. प्याज लेने हैं 3 बड़े प्याज, 2 बारीक कटे हुए आपको जो है वो प्याज आप अच्छे से उसे काट लीजिएगा, और 1 को जो है वो आपको लच्छेदार जो है वो आपको कर लेना है ताकि हम उसे फ्राई कर सकें. इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए थोड़ी सी आपको जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको लेना है 1 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम अच्छा फ्लेवर जो उसमें रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए. साथ ही खड़े मसाले लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेज पत्ता, और ये 2 तेज पत्ते आप ले लीजिए, छोटी इलायची 3 आप छोटी इलायची ले लीजिए, दालचीनी 1 इंच, शाही जीरा आपको लेना है 1 टीस्पून, और साथ ही साथ 4 लेनी है लौंग. इसके बाद बिरयानी मसाला पाउडर आपको मार्केट से मिल जाएगा, वो ले लीजिए 1.5 टेबलस्पून लेना है. इसके साथ साथ आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है 1 टेबलस्पून, केसर लेने हैं 10 से 12 धागे, और थोड़े गर्म दूध में उसे भिगो दीजिएगा पहले से ही. फ्रेश पुदीना और हरा धनिया लेना है 1 कप बारीक कटा हुआ, घी और ऑयल या फिर आप ले सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून, सॉल्ट लेना है जितनी जरूरत हो यानी कि स्वाद अनुसार, और आटा लेना है ताकि आप हांडी को सील कर सकें. बस अब आपको बताऊंगी कुछ ही देर में कि आपको इसे बनाना कैसे है. अभी कुछ थोड़ा सा आप वेट कीजिए क्योंकि अभी बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने लेकर के आई हूँ. सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास एक रेसिपी के बारे में आपको बात बता रही हूँ, और वो है बिरयानी की. बिरयानी को बनाना कैसे है इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता चुकी हूँ. तो सबसे पहले भाई चावल के बारे में जान लेंगे, और एक बड़े बर्तन में ढेर सारा पानी उबालना है, और इसमें एक तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच शाही जीरा और ढेर सारा नमक, यानी कि नमक बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है वही, क्योंकि थोड़ा सा बस खारा हो जाए उसके लिए हम डालेंगे. भीगे हुए आपको चावल डालने हैं और सिर्फ 70% तक ही इसे पकाना है. चावल में एक जो है देखिए रहनी चाहिए, थोड़ा सा कच्चापन जो है वो रहना चाहिए, लेकिन देखिए पूरा पका भी ना हो और बिल्कुल कच्चा भी ना हो, 70%. अब इसके बाद पानी जो है आप देखिए इसे अलग कर लीजिए, जैसे आपको लगे कि चावल जो है आपको जो है वो थोड़े कच्चे पक्के हो गए हैं, 70% पक गए हैं, आप इसे निकाल लीजिए. अब आपको क्या करना है, जो हमने लच्छेदार प्याज आपने काटी थी, अब एक कढ़ाई में उसे तेल गरम करके लच्छेदार प्याज को बिल्कुल गोल्डन होने तक भून लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए, क्रिस्पी होने तक आपको फ्राई करना है, और उसके बाद इसे भी अलग हटा के निकाल के रख लीजिए. अब बनाएंगे हम मैरिनेशन. एक बड़े बोल में आपको दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, कश्मीरी जो लाल मिर्च है वो, बिरयानी मसाला, नमक, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और 1 टेबलस्पून आपको ऑयल मिलाना है, और इसमें सारी सब्जियां और पनीर डाल के 20 मिनट तक के लिए आपको इसे जो है वो अच्छे से रख देना है, मैरिनेट करके आपको अच्छे से रख देना है. अब इसके बाद एक हैवी बॉटम वाली हांडी या जो पतीले में 2 टेबलस्पून आपको घी डालना है, गरम करना है, और बाकी बचे जो खड़े मसाले हैं उनको डालना है जब तक वो चटकने की आवाज आए. फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज आपको भूनना है. अब इसमें मैरिनेटेड की हुई सब्जियां डालकर 5 से 6 मिनट तक के लिए आपको अच्छे से पकाना है. सब्जियां पूरी तरह से जब देखिए आपको लगे कि ये देखिए गलने लगी है, तो उससे पहले पहले ही बस आपको थोड़ा सा पहले ही आपको जो है बस वो लेयरिंग करनी शुरू कर देनी है, यानी कि सब्जियों की लेयर के ऊपर आपको जो है पके हुए बासमती के जो चावल है वो बराबर लेयर डालने हैं. इसमें ऊपर से आपको फ्राइड अनियंस डालने हैं और कटा हुआ धनिया पुदीना डालना है, और केसर वाला दूध जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है. ऊपर से 1 टेबलस्पून घी डालिए, और बस अब हांडी के किनारों पर आपको जो आटे का रोल है उसे अच्छे से लगा देना है और बंद कर देना, सील कर देना, ताकि भाप अंदर से जो है अच्छे से जमी रहे और बाहर ना निकले. हांडी को आपको पहले 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाने जो है पकने के लिए छोड़ देना है. उसके बाद उसके नीचे एक तवा रख देना है 15 मिनट के लिए. अच्छे से जब दम हो जाए तब गैस बंद कर देनी है. 10 मिनट बाद ढक्कन खोलना है. खिला खिला वेज बिरयानी आपको जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी. बिरयानी के चावल आपको बहुत कमाल लगेंगे, वो जो खुशबू है, वो जो टेस्ट है, वो बिल्कुल बाजार जैसा होगा. और ऐसा हो जाए तो बस साक्षी को बताइएगा कि कैसा लगा. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ बात मैंने आज बिरयानी की करी. बहुत टेस्टी कमाल की रेसिपी आपके लिए लेकर के आई. और बिरयानी के चावल को कभी भी 100% मत पकाइएगा वरना दम लगते ही वो बिल्कुल चिपक जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे. सबसे पहली चीज. इसके बाद अगर आपके पास हांडी सील करने के लिए आटा आपको गूंदने का जो वक्त नहीं है तो हांडी के ऊपर आप एक एल्युमिनियम फॉइल लगाकर ढक्कन को टाइट से बंद कर सकते हैं ताकि भाप बिल्कुल भी ना निकले और दम बिल्कुल परफेक्टली आए. इसके बाद देखिए, राइस यानी कि चावल उबालते टाइम जो है पानी में नमक हमेशा ज्यादा थोड़ा डालें क्योंकि बाद में पानी जब छन जाता है तो अगर पानी में नमक कम होता है तो बिरयानी के चावल फीके लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको डालना है. इसके बाद देखिए, इसमें आपको स्वाद तो आपको मिलेगा ही, तो गर्मा गर्म बिरयानी को मैं मिट्टी की हांडी से निकाल कर धीमी आपको जो है आज पर जब रखी हुई बिरयानी जब आप पकती है ना, दम लगता है उसके बाद दम को हटाइए, उसके बाद ऊपर प्लेट ढक्कन हटाइए, उसका आप आटे का सील हटाइए, इसको परोसिए, उसके साथ आप प्याज दीजिए, रायता दीजिए और देखिए क्या टेस्ट आता है. कमाल का, बहुत कमाल लगता है. आप भी खा के कहेंगे साक्षी मजा ही आ गया. चलिए इसके साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. और इसी के साथ

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और समय है प्रोग्राम ग्रीन ग्रह का, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं अपने ही ग्रह पृथ्वी के बारे में, क्योंकि इस पृथ्वी को संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पर कहीं ना कहीं हम इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम अपना घर तो ठीक रखना जानते हैं पर अपना पर्यावरण, अपने आसपास का इलाका और अपने शहर के बारे में भूल जाते हैं। पर इस कार्यक्रम ग्रीन ग्रह को आप तक लाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का, जो ये कार्यक्रम आप तक ला रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी एक्सपर्ट्स को जोड़ रहे हैं जो आपको वेस्ट सेग्रीगेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी दे सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेशन या मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो प्रकृति से आ रही है लेकिन हमारे ही पर्यावरण को सहायता दे रही है साफ रखने में, हमारे घर को साफ रख रही है और सबसे बड़ी बात, हमारा बहुत सा पैसा भी बचा रही है। यानी जो सामान हम अपने घर को साफ रखने के लिए खरीदते हैं, महंगे महंगे वॉशिंग पाउडर्स, कपड़ों को धोने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए अच्छी और हाई एंड क्वालिटी के डिश वॉशिंग मशीन्स के साथ साथ बहुत सारे लिक्विड या फिर बार्स खरीदते हैं, इसके साथ साथ हम अपने टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर्स खरीदते हैं, ये भी कोई सस्ते नहीं आते हैं, 200-300 से कम की कोई अच्छी बॉटल नहीं आती है। इसके साथ साथ हम अपने फ्लोर को चमकाने के लिए महंगे और खुशबूदार फ्लोर क्लीनर्स खरीदते हैं और अपने एनवायरमेंट में प्लांट्स को खूबसूरत रखने के लिए कुछ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घर बैठे सब कुछ बना सकते हैं, वो भी ईजिली अपने घर के इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलकों से, जिनको आप खा के अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं, और इनके छिलकों को फेंकने की जगह इनसे आप बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सारी बातें आपके साथ मैं नहीं शेयर करने वाली, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हैं और हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं वो बायो एंजाइम्स में बहुत महारत हासिल कर चुकी हैं। अपने घर पर ही ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो घरों में इजीली इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरुआत इन्होंने कुछ सीख कर करी और अब ये इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हैं, तो ये अपने घर के साथ साथ बहुत सारे लोगों की और भी मदद करती हैं बायो एंजाइम के इस्तेमाल में। केयर बायो एंजाइम नामक ये अपने एक प्रोडक्ट को बनाती हैं, जिसमें इस ब्रांड के अंडर कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके घर को साफ़ रखने में, आपके किचन को साफ़ रखने में, आपके वॉशरूम्स को साफ़ रखने में और यहाँ तक कि आपके प्लांट्स को खूबसूरत बनाने में, उनका ख्याल रखने में भी मदद करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, घर पर बन जाते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं सुचेता साहू जी। सुचेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद दीक्षा जी।
0: तो सुचेता जी, हम बायो एंजाइम की बात कर रहे हैं और बायो एंजाइम एक ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है कि आम इंसान को नहीं पता। अब बायो है तो ऑफकोर्स प्रकृति से जुड़ा हुआ है और एंजाइम है तो कहीं ना कहीं गुड बैक्टीरिया की भी बात हो रही है। ये तो मैंने इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा सा आइडिया निकाल लिया, लेकिन मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो बायो एंजाइम है क्या और आपने कैसे इसको एक्सप्लोर किया?
1: जी मैम, इस बायो एंजाइम जो नॉर्मली जाना जाता है इको बायो एंजाइम या गार्बेज एंजाइम के नाम से बाहर
0: जी,
1: और ये फलों और सब्जियों को छिलकों को गुड़ के साथ फर्मेंट करके बनता है और इसका इन्वेंशन जो है डॉक्टर रोशुकॉन ने किया था, जो मलेशिया की साइंटिस्ट है, और उन्होंने 40 साल से इस पर रिसर्च करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट पाए और इसको प्रमोट करना शुरू किया। इंडिया में बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी के ओर से इसका प्रमोशन काफ़ी तेजी से इस समय हो रहा है और मैं इसकी मेंबर हूँ और इसको हम अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं और इसका बस सिर्फ एक सिंपल तरीका है कि हमें अपने घर में जो सब्जी और फलों के छिलके निकल रहे हैं उनको अलग करना है और एक लीटर पानी में 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़ मिक्स करके एक एयर टाइट जार में रखना है जो चौड़े मुक्के हो और उसको हम छांव में रखेंगे और उससे जो 3 महीने रखने के बाद लिक्विड बनता है वो बायो एंजाइम या इको एंजाइम हमारे बहुत काम आता है।
0: जी जी, तो सुचेता जी, ये तो बायो एंजाइम आपने बताया कि कैसे बनता है, लेकिन बायो एंजाइम ज़रूरी क्यों है? हमारे पास इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और अब तो लोग ऑर्गेनिक के नाम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करने लगे हैं कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है। तो फिर ये बायो एंजाइम का मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इतना काम कौन करे घर पर, इतनी चीज़ें कौन इकट्ठी करे और फिर उसके बाद इनको बनाए, तो क्यों ज़रूरी है ये बनाना, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
1: मैम, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और पर्यावरण के प्रति आप सजग हैं तो अपने घर से निकलने हुए वाले वेस्ट को ज़रूर आप कंपोस्ट बनाते होंगे और उसको अलग करते होंगे, तो क्यों ना हम उस कड़ी में थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ के बायोएंजाइम बनाएं जो कि हमारे घर के तमाम केमिकल्स को रिप्लेस कर सकता है। हमें नहीं पता कि ब्रांड्स जो बेचती हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं। जैसे हम बाज़ार से खाना लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या होता है और वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए या हमारी प्रकृति के लिए। तो अगर घर में हम थोड़े से कोशिश से कुछ अच्छा बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाएं। और ये इतना क्रिएटिव काम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा स्ट्रेस बस्टर है ये एक तरह से, क्योंकि जब बायोएंजाइम बन जाता है और उसको मैं तरह तरह से यूज़ करती हूँ, जैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए या फिर अपने किचन क्लीन करने के लिए या अपने स्किन के लिए या बाकी प्लांट्स के लिए, और उसमें इम्पैक्ट देखती हूँ। और जब तरह तरह से लोग पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं और सबको पता है कि ये कितना हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हम बिना पेस्ट कंट्रोल करवाए अपने घर में जो इंसेक्ट है उनसे छुटकारा पा लेते हैं, तो क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करें। एक छोटी सी चीज़ बनाने से इसके मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। आप ये भी तो देखो कि हमारे पास अगर बायो एंजाइम है तो हम अपना क्लीनिंग भी कर सकते हैं, हम पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम अपने प्लांट्स को भी केयर कर सकते हैं, और अपने छोटे छोटे जो हो जाते हैं प्रॉब्लम्स स्किन के हल्के फुल्के, उनको भी क्योर कर सकते हैं।
0: अच्छा, इन्हीं बायो एंजाइम्स से
1: तो क्यों नहीं हम ट्राई करें इन्हें और इसका आनंद ले। जब प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ हमें दी है तो हमें बनाना चाहिए, हम पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: जी जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब हम बायो एंजाइम्स की बात करें, आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया अभी कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, स्किन का भी ख्याल हो सकता है इससे, सो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं कि अगर हमें एक फ्लोर क्लीनर बनाना है, सपोज़ हम अपने घर में फ्लोर क्लीनर यानी फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्मेल लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल वाली फील आ रही है, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी भी नहीं लगती है, बट ये होता है कि क्लीनलीनेस के लिए चाहिए कि घर में चींटियाँ आ गई हैं, या अब रोज़ तो पोछा तो लगता ही है सबके घर में
1: जी।
0: और इंडिया में हर रोज़ ऐसे वैक्यूम क्लीनिंग तो पॉसिबल नहीं होती है, तो डस्ट है, गंदगी है, पोछा तो लगेगा, बट उसमें वो फिनाइल डालते हैं। बरसों से हम बचपन से देखते आ रहे हैं फिनाइल ही डलता है। कई लोग उसमें नींबू और नमक डाल के भी पोछा लगाते हैं बट उसमें खुशबू नहीं आती है। सो ये जो फ्लोर क्लीनर है, पहले आप मुझे बताइए कि ये कैसे बनता है और इसमें खुशबू क्या आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर इसमें छिलकों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें स्मेल होगी।
1: करेक्ट, इसमें स्मेल होती है, थोड़ी सी सिरके जैसी नेचुरल विनेगर की स्मेल होती है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं उनको तो सिट्रस फ्रूट्स की स्मेल जो है काफ़ी अच्छी लगती है, और स्पेशली संतरे का जब हम बनाते हैं या नींबू का बनाते हैं तो अच्छी स्मेल आती है कंपैरेटिवली अदर बायोएंजाइम्स। तो लेकिन हाँ, उसमें हम अच्छे सर्फेक्टेंट जैसे कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट होते हैं जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, प्लस एसेंशियल ऑयल डालते हैं। ये नुकसान भी नहीं करता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इसकी स्मेल को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है और अच्छी खुशबू आती है। और साथ के साथ आप ये भी देखो कि इससे जब हम एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लाई, जैसे लेमन ग्रास का हम कर रहे हैं तो उसको हम फ्लाइज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ्लाइज़ ना आए, तो वो उसका ही काम करता है, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं।
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर मैं अपने घर पे, या हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं अब ये बनाना चाहते हैं फ्लोर क्लीनर अपने घर पे इसी तरीके से, सो क्या है जो पील्स वो इस्तेमाल करें, कौन से छिलके इस्तेमाल करें, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसके लिए, जैसे हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था मैन्योर बनाने का तरीका ऑर्गेनिक एकदम, तो वो पील में थोड़ा सा उन्होंने बोला कि आप छाछ डाल दीजिए और उसके बाद उसमें खूब सारे छिलके डाल दीजिए और कागज़ डाल दीजिए, न्यूज़पेपर्स डाल दीजिए, और उसको थोड़ा थोड़ा आप बीच में कभी कभी चलाते रहिए, और इस जिस भी कंटेनर में डालें उसमें छेद होने चाहिए, ताकि वो जो गैस है वो रिलीज होती रहे धीरे धीरे, और वो उसमें भी जो है प्रॉपर तरीके से वो मैन्योर बनता रहे। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये लिक्विड है, ऑलरेडी आप इसको लिक्विड में बना रहे हैं, सो ये किस बर्तन में बनेगा, कैसे बनेगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमें बताइए।
1: जी, मेनली इसको प्लास्टिक के बर्तन में बनाना चाहिए।
0: अच्छा।
1: जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। हाँ। और प्रेफरेबली चौड़े मुंह का बनना चाहिए, होना
0: अच्छा।
1: चाहिए, जिसमें आप आसानी से छिलके डाल सकें। और पतले मुंह का अगर होगा तो उसमें गैस फॉर्मेशन, गैस निकल नहीं पाएगी और बॉटल फटने का डर रहता है। तो बनाने के लिए हम हमेशा चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं, और उसमें जो है छिलका और गुड़ और पानी। अब आपने कहा फ्लोर क्लीनिंग के लिए, तो हम हमेशा साइट्रस फ्रूट्स लानी, यानी कि मौसम्बी, संतरा और नींबू आदि के छिलके इस्तेमाल करते हैं। छिलकों को साफ सुथरा होना चाहिए, और उसको हम वे करके या फिर कटोरी से नाप के डालते हैं। अगर वेइंग कर रहे हैं तो 300 ग्राम छिलका लेंगे, और इसके लिए जार हमारा, अगर एक लीटर बायोएंजाइम पानी ले रहे हैं तो हमें जार 1.5 लीटर का होना चाहिए।
0: ओके।
1: थोड़ी सी एयर भी निकलने के लिए भी होनी चाहिए जगह, तो स्पेस होनी चाहिए। और बस उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी डालना है, 300 ग्राम छिलके डालने हैं और 100 ग्राम गुड़ डालना है। और अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं,
0: अंदाजा कर सकते हैं।
1: अंदाज से 3 कटोरी छिलके ले लीजिए, 1 कटोरी गुड़ ले लीजिए और 10 कटोरी पानी
0: ले लीजिए,
1: और बस वो आपका जार में 20% स्पेस फ्री होनी चाहिए
0: ताकि
1: गैस फॉर्म होगी। शुरू के 20 दिन आपको ढक्कन को रोज थोड़ा सा ढीला करके गैस निकलने देना है, और थोड़ा सा हिला देना है ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद 20 दिन के बाद आप रियलाइज करोगे कि थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन कम हो गया, तो हफ्ते में 1 दिन आप हल्का ढीला कर दीजिए ढक्कन। तो इस तरह से आपको 3 महीने उसको रखना है।
0: ओके।
1: अगर आपके पास पुराना बायोएंजाइम है कोई रखा हुआ, तो आप उसमें करीब 2% जितना आपने बनाया है उसका 2% आप वो डाल दीजिए, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और आपका बायोएंजाइम 45 डेज में बन जाएगा,
0: यानी वो जल्दी बन
1: जाएगा।
0: अगर आपके पास, आप एक ढक्कन के करीब या 2 ढक्कन के करीब बायोएंजाइम डाल देते हैं, तो उससे वो प्रोसेस, क्योंकि आप ऑलरेडी बायोएंजाइम डाल रहे हैं, तो वो दही की तरह है कि आपने थोड़ा सा खट्टा डाल दिया, तो वो दही जल्दी जम जाएगा। तो ये एक प्रोसेस आपने बताया कि हम ये फ्लोर क्लीनर इससे बना सकते हैं।
1: जी।
0: और इसके लिए आपने जैसे सजेस्ट किया कि बर्तन थोड़ा सा ऐसा लें जो एयर टाइट हो और बड़े मुंह वाला हो, तो जार जो हमारे पास 2-2.5 लीटर के आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पुराना प्लास्टिक का जार पड़ा उसका इस्तेमाल कर
1: लें। बिल्कुल, आप वही इस्तेमाल करिए, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं तो जब ज्यादा होता है, कहीं डेमो देना होता है या तो केमिस्ट शॉप या ग्रोसरी शॉप से मांग लेते हैं, उनके पास खाली पड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल। और प्लास्टिक के मतलब आप क्या करते हैं, आप इनको सेल ही कर देते हैं, बेच ही देते हैं। सो
1: और छिलके अगर मेरे पास नहीं होते हैं तो जूस शॉप से ले आती हूँ।
0: क्या बात है, मतलब अपनी जेब से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना है,
1: बस गुड़ का खर्चा देना है,
0: गुड़ का खर्चा देना है।
1: और अगर पानी का TDS बहुत हाई है, जैसा फरीदाबाद में है, तो आप आरओ वाटर
0: का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो आप सेफली इन चीजों को बना पाएंगे,
1: बना सकते हैं।
0: अब ये तो फ्लोर क्लीनर की बात हो गई, इसमें आपने कोई भी छिलके डाल देने, सब्जी के या कोई पर्टिकुलर कोई
1: नहीं। अगर फ्लोर क्लीनर बनाना है तो आपको सिट्रस
0: फ्रूट्स डालना पड़ेगा।
1: अगर प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो आप किसी भी सब्जी और फल के छिलके मिक्स करके डाल सकते हैं, जो प्लांट्स के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन आलू के छिलके, जिंजर गार्लिक, चिली का अलग से बनाना है, आलू के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। और बाकी जो पर्पज़ है, जैसे अगर आपको खुशबूदार बायोएंजाइम चाहिए तो रोज़ पेटल्स का बहुत ही खुशबूदार मार्वलस होता है, और रोज़मेरी का बहुत ही बढ़िया बनता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है।
0: तो जिन जिन चीज़ों में खुशबू ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: कॉफ़ी का मैंने बनाया, उसकी तो खुशबू इतनी अमेजिंग है कि आपको बता नहीं सकती हूँ।
0: मतलब
1: 3 साल पुराना बायोएंजाइम है लेकिन इतनी अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया।
0: जी, तो ये अपने आप में एकदम नेचुरल है, इसमें कोई ऐसे सेंट नहीं डले हैं, कोई एक्स्ट्रा परफ्यूम्स नहीं डले हैं, ये नेचुरल चीज़ों की खुशबू। जैसे आप कॉफ़ी डालते हैं तो ऑफ कोर्स कॉफ़ी की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो आपके घर में अगर कॉफ़ी का बायो एंजाइम होगा और आप उससे फ्लोर क्लीन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप अपने घर में भी एक बड़ा एक मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू फील कर सकते हैं 24 घंटे।
1: आपने ये जो सजेशन दिया मैं ट्राई करके देखूंगी।
0: जी सुजेता जी, अब ये फ्लोर क्लीनर की बात हो गई है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास ये आती है कि उनके घरों में जो वॉशरूम्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए वो हार्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा TDS इतना ज़्यादा होता है, तो जो पानी है उसके दाग लग जाते हैं पूरे वॉशरूम में, साफ़ नहीं होते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बुला के कई बार साफ़ कराना पड़ता है। आप खुद करते हैं तो आजकल अलग अलग ब्लीच वाले केमिकल्स आ रहे हैं जो ऑफकोर्स पानी के लिए ठीक नहीं है, एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। आप नाली में डालते हैं और उसके बाद उसको जैसे ही बहाते हैं तो वो आगे जो ड्रेन में जा रहा है वहाँ सब गड़बड़ कर रहा है, तो पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है।
1: जी हाँ।
0: तो क्या हम वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए, इन ख़राब दागों को हटाने के लिए कुछ ऐसा कुछ चीज़ आप बना सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट जो हम सेट्रस पील्स का बायोएंजाइम बनाते हैं उसके बाद जो पल्प बचता है उसको अगर हम थोड़े इस बायोएंजाइम के साथ मिला के पीस दें और उससे टॉयलेट क्लीन करें तो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा साफ हो जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है, टाइल्स भी बहुत अच्छी साफ हो जाती हैं उससे।
0: अच्छा।
1: और अगर उसमें थोड़ा सा अगर हम सिट्रिक एसिड ऐड कर दें तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो हम कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, लेकिन ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं अभी तक उसमें ये तो मैंने देखा है कि जो सिट्रस पील्स का जो छिल वो है पल्प है जो बायोएंजाइम बनने के बाद बचता है उसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है और उसको हम ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है।
0: जी जी, आपने ड्रेनेज ब्लॉक ड्रेनेज जो होती है, जो नालियां बंद हो जाती हैं घरों में अक्सर किचन वगैरह में बंद हो जाती हैं, सो उसको लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसके लिए फिर वो कुछ पाउडर्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं वो, आप जब उसको डालते भी हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप उसको रात भर डाल के रखें, किचन में काम ना करें, हाथ ना लगाएं, ग्लव्स पहने अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप खुद सोचिए जब भी हम उन्हें नाली में डालते हैं तो वो जो नाली से बहकर आगे जाता है तो कितना हार्मफुल है वो पर्यावरण के लिए, लेकिन ऑप्शन नहीं होता है लोगों के पास, उनको पता नहीं होता कि इसकी जगह क्या इस्तेमाल करें।
1: जी, आपने जो सिट्रस बायोएंजाइम बनाया है उसका ही दो ढक्कन आप डाल के नाली में रख दीजिए और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट और ऐड किए जाते हैं जो हम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें हम आपको बताएंगे, हर चीज़ तो यहाँ नहीं बता सकते, सिखा सकते, तो आप बनाएंगे तो उसको ऐड कर दीजिए तो ब्लॉक ड्रेनेज जो है वो क्लीन हो जाती है।
0: ओके।
1: और जब हम डिश वॉश वगैरह बाजार का यूज़ करते हैं तो सब

0: पता है कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और ये नेचुरली बनी चीज़ों से रीठा और के बायोएंजाइम और सिट्रस बायोएंजाइम के जो को मिक्स करके डिश वॉश बनता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी डिश क्लीन करने के लिए। अच्छे हेल्दी सर्फेक्टेंट आप यूज़ करिए, कोकोनट बेस्ड आते हैं मार्केट में, उनको मिला के आप बढ़िया डिश वॉश बना सकते हो जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है।
1: जी जी, कपड़े धोने के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि वॉशिंग पाउडर्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स की जगह आजकल लिक्विड्स आ गए हैं, पॉड्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं सबके घर में, और मशीन्स के साथ ये भी लिखा होता है कि आप इस तरीके का ब्रांड या इस टाइप का वॉशिंग पाउडर यूज़ करें। लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊँ या फिर आज भी गाँव की बात करूँ, तो वहाँ पर इन लिक्विड्स या पाउडर्स की जगह आज भी रीठे का इस्तेमाल होता है।
0: जी,
1: तो रीठा जो है वो ना केवल बालों के लिए यूज़ होता है बल्कि कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मैं जब बायोएंजाइम की बात करूँ तो मैं इसे बनाने का फॉर्मूला नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रीठे का इस्तेमाल कपड़ों को साफ करने के लिए और मशीन में डाल के साफ करने के लिए कैसे हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। और अगर बायोएंजाइम भी इसमें कुछ अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगर आप इन पाउडर्स से कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ा तो साफ हो गया, लेकिन इतना झाग जो नाली में गया उसके बाद आपकी बॉडी पे कई बार वो पाउडर जो है या वो जो वॉशिंग लिक्विड है वो कहीं ना कहीं एलर्जी भी कर जाता है बहुत सारे लोगों के केसेस में।
0: बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ बहुत आ रही है।
1: तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी।
0: जी बिल्कुल, आप रीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रीठा कई तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यूज़ करती हूँ रीठे का भी बायोएंजाइम बना लेती हूँ, जो बायोएंजाइम बनाने का प्रोसेस बताया मैंने आपको, उस तरह से रीठे को भी मंगवा के बायोएंजाइम उसका बना लेती हूँ।
1: अच्छा,
0: और दूसरा सिट्रस जो बायोएंजाइम बनाया है मैंने, उसमें रीठा भिगो के पानी के साथ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप रीठे के 4-5 पॉड 6 पॉड एक सॉक्स में या किसी कपड़े में बांध के मशीन में डाल दीजिए, वॉशिंग मशीन में, और साइट्रस बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए उसमें। तो एक फुल लोड वॉशिंग मशीन में अराउंड 100 ml साइट्रस बायोएंजाइम और 5-6 पॉड रीठा आप डाल ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास बनाया हुआ है रोज़ बायोएंजाइम तो रोज़ बायोएंजाइम ऐड कर सकते हैं,
1: खुशबू भी आ जाएगी,
0: खुशबू भी आती है, और कपड़ों के सॉफ्टनर का भी काम करता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: ओके। तो ये रीठा जो है इसको कैसे डालें हम इसमें, क्या भिगो के डालना होता है या ऐसे ही डाल दें, किस किस तरीके से?
0: दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। एक तो रीठे के सूखे जो पॉट्स होते हैं उनको एक मोजे में बांध दीजिए ताकि वो वॉशिंग मशीन में ना जाए, और बस उसके टब में रख दीजिए, और 2-3 वॉश में वो आराम से काम करेगा।
1: अच्छा, मतलब 5-6 रीठा लें।
0: हाँ।
1: जैसे उसको पील से, कवर में से निकला हुआ जो होता है, जिसको अगर
0: कवर में के साथ भी है तो भी ठीक है।
1: अच्छा,
0: बस उसको आपको मिक्स नहीं करना है, किसी कपड़े में अच्छी तरह से बांध दे ताकि वो निकल के बाहर ना आए, और साथ में आपने साइट्रस बायोएंजाइम और रोज बायोएंजाइम ऐड कर दिया उसमें।
1: अच्छा।
0: और फिर आप चला दीजिए साइकिल फुल, और आपका जो कपड़ा होगा, लेकिन हाँ जो बहुत दाग धब्बे हैं वो नहीं क्लीन होंगे, उनको आप पहले से अलग से रगड़ दीजिए।
1: जी
0: हाँ, जैसे हम नॉर्मली
1: बेसिक जो कपड़े धोते हैं वो एकदम
0: साफ, कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाएंगे।
1: तो लोगों को ये भी थोड़ा सा डाउट होगा कि क्या झाग बनेगा, क्या प्रॉपर सफाई होगी, तो क्या रीठे से झाग बनता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: रीठे से झाग बनता है, बहुत माइल्ड झाग बनता है, और अगर आपको झाग ज्यादा चाहिए लेकिन अच्छे झाग चाहिए तो कुछ कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट आते हैं मार्केट में, वो भी हम आपको बता सकते हैं जब आप कभी ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बायोएंजाइम बनाना शुरू करो, उसके बाद अगर आप फर्दर अपने घर के यूज़ के लिए और अच्छा प्रोडक्ट बना चाहते हो तो उसको आप ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है, वो ट्रेनिंग लेके आप शुरू करो। अगर आपको वो भी अच्छा लगता है, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग है, फर्दर गाइडेंस है, तो आप उस पर आ सकते हैं।
1: जी।
0: तो आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आप सिर्फ बोल के या रेडियो पे सुन के नहीं सीख सकते
0: नहीं,
1: इसको
0: नहीं।
1: जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं आपको ज्यादा क्लियर होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बायोएंजाइम्स क्योंकि एक लिविंग प्रोसेस एक तरह से है, क्योंकि बैक्टीरियाज है इसमें, तो इनको समझना, इनका सीखना, इनकी जो इफेक्ट है उसको देखना,
1: जी जी,
0: वो एक अपने आप में लर्निंग है।
1: जी,
0: तो एक्सपीरियंस से ही आती है ये, लेकिन हाँ बेसिक जो बनाना है वो बहुत आसान है, आप शुरू करिए बनाना और इस्तेमाल करिए, आपको आई एम श्योर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर कहीं डाउट है आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी से, या मुझसे भी कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे।
1: जी जी सुचेता जी, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, लेकिन एक और बहुत अच्छी सी जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है बायो एंजाइम की, जो बेसिकली आपके घर से कॉकरोच, छिपकली, चींटियाँ ये सब गायब करने में मदद करता है, और इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि छिपकली को भगाना स्पेशली मानसून या गर्मी में एक टास्क होता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क होता है। सो मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे जिनके घर में चींटियाँ बहुत आ जाती हैं और कॉकरोचेस बहुत आ जाते हैं, तो वो कैसे इसको?
0: जी, जिंजर गार्लिक चिली जो है बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट होता है हमारे घर में। लोग पहले भी इनको पानी में भिगो के 4-5 दिन रख के फिर भिगो के फिर उसका पानी इस्तेमाल करते थे। अब हमने इसको बायोएंजाइम के फॉर्म में बना दिया और इसका इफ़ेक्ट जो है मैंने देखा है अपने पर्सनल उस पर कि इस यूज़ करने के बाद छोटी चींटियाँ तो आनी बिल्कुल भी बंद हो गई।
1: अच्छा।
0: और लिजर्ड वगैरह रेगुलर यूज़ के साथ नहीं आती हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ उन कोनों में आके बैठ जाती हैं, हाँ,
0: वहाँ पर मैं हर दो दिन में स्प्रे कर देती हूँ। एक पर्टिकुलर उसका डाइल्यूशन है, डिपेंड अपॉन कितना ज़रूरत है।
1: मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमें एक आधे लीटर के करीब बॉटल बनानी है तो, या 1 लीटर के करीब हमें बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे?
0: जी, अगर आपका प्लांट्स के लिए आपको बनाना डालना है तो उसमें मुश्किल से आप 10-20 ml डालिए। अगर बहुत ज़्यादा वो है तो फिर हम अलग से उसको एक्सपेरिमेंट करके करते हैं, लेकिन घरों के लिए अगर हम चींटियों और लिजर्ड्स के लिए बनाते हैं तो 1/4 ही काफ़ी है बायोएंजाइम, और उसमें फिर आपने पानी ऐड किया और उसको छोड़ दीजिए करीब 4-6 घंटे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और पानी भी मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है बैटरी वाला पानी यूज़ करें प्रोडक्ट्स बनाने में।
1: ओके।
0: या इस तरह से तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं
1: जी।
0: या RO वाटर बहुत अच्छा, देख लीजिए।
1: जैसे इसमें हमें जिंजर डालनी है, गार्लिक डालना है और हरी मिर्च
0: डालिए और उसका
1: और इनको कट करके डालना है, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा काट के या कूट के
0: डाल दीजिए। okay. कट करके डाल दीजिए, छिलके से डालिए,
1: भी गुड़ जाएगा
0: जी।
1: ओके। okay. यानी अगर हम 300 ग्राम लेते हैं इन तीनों चीजों को, हाँ। और 100 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर पानी के जार में इसको डाल के छोड़ देना है 45 दिन तक ऑलमोस्ट छोड़ देंगे इसको, या इसको कम दिन के लिए छोड़ सकते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, पूरा 45 डेज या फुल आप 90 डेज करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है।
1: ओके, 90 डेज
0: के लिए ही मैं प्रिफर करूंगी रखने को, कहूंगी। और नीम का बायोएंजाइम बना सकते हैं आप, मैरीगोल्ड का बायोएंजाइम बना सकते हैं, तुलसी का बना सकते हैं, ये सब इंसेक्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं
1: जिनके घर में मच्छर, कॉकरोच, छिपकली और
0: रेगुलर यूज करेंगे तो आई एम श्योर मैं आप सिट्रस बायोएंजाइम भी रेगुलर यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक कीड़े कम हो जाएंगे। अपनी मॉपिंग में अगर आप केमिकल यूज़ भी करते हो तो भी आप एक ढक्कन बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए, अपना नहाने के पानी में एक ढक्कन बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: तो ये थोड़ा सा एक तरह से आपको पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप पे इम्पैक्ट करेगा।
1: यानी देखिए, नेचुरल चीज़ें बनी हुई हैं, फ्रूट से बनाए, सब्जियों से बनाए तो ऑफकोर्स बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेगा। फॉर्मेंटेड है आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉर्मेंटेड खाना भी अगर आप खाते हैं तो वो आपके गट को कितना स्ट्रांग रखता है। सो अगर आप फॉर्मेंटेड चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में करें, अपने नहाने के पानी में करें, अपने घर को साफ रखने के लिए करें, अपने प्लांट्स के लिए करें, तो उसका भी एक ज़बरदस्त लेवल का फ़ायदा होता है।
0: और अभी बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी और भी लोग जो है वो लेक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ में खेतों में इस्तेमाल हो रहा है बायोएंजाइम तो ग्रो जो उसकी यील्ड पैदावार हो रही है उसमें काफ़ी फर्क दिख रहा है, और किसानों को पेस्टिसाइड्स भी कम यूज़ करने पड़ रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से हर तरह से एयर पोल्यूशन के लिए भी इससे इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से हर तरह से हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बायोएंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और भी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, रिसर्च हो रही है, बट आई एम श्योर कि आगे चल के ये काफ़ी सक्सेसफुल होंगी।
1: जी जी। सुचेता जी, अब चलते चलते बस इतना ही जानना चाहूंगी, ये बायो एंजाइम्स बनाने के लिए जगह कितनी चाहिए होती है? क्योंकि आजकल सब ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, स्पेस इतना होता नहीं है, कई बार आपके पास एनवायरमेंट नहीं होता है इतना रखने के लिए, तो कैसे रखें इसको? ये इतनी जगह भी तो चाहिए होगी
0: मैम। ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती आप हाँ। अगर रेगुलर अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 5 लीटर का एक डब्बा ले लीजिए, उसमें आपका करीब 3 लीटर बायोएंजाइम बन जाएगा 3 महीने में। उसको छान के पतली ये जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल आती है उसमें रख लीजिए, और उसके बाद उसी जार में फिर से एक बैच डाल दीजिए हाँ। आपकी इतनी ही जगह लेगा वो, जब तक आप अगले ये 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जो छाना हुआ 3 लीटर है काफ़ी है आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद फिर आप जब तक वो ख़त्म होगा आपका नया बैच रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप
1: तो एक कोना ही चाहिए,
0: एक छोटा सा कोना आपके घर का, जैसे अचार डालते हो आप हाँ। एक कोने में रख देते हो, उसी तरह से ले रख सकते हो, और बनने के बाद तो आप अंदर कहीं अलमीरा में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इनको भरने के लिए भी आपको पुराने जार्स और बॉटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नए मत ले आइएगा अननेसेसरी प्लास्टिक के।
0: हाँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स भी कोशिश यही करती हूँ कि पुरानी बॉटल्स में ही दूँ, ताकि धरती पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, और वो सक्सेसफुल भी होता है। ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स जो हैं या सीखने वाले हैं वो सब पर्यावरण प्रेमी हैं, तो वो हमसे पुरानी बॉटल्स में ही लेते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाता है और बॉटल्स भी यूज़ हो जाती
1: जी, है जी। अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ सुचेता जी, अगर हम एक आपसे एक प्रोडक्ट लेते हैं, किसी से भी हम एक बॉटल बायो एंजाइम लेते हैं, जो प्लांट केयर फर्टिलाइज़र हो या फिर फ्लोर क्लीनर हो, और 500 ml की बॉटल अगर हम लेते हैं, तो क्या इसका प्राइस क्या होता है? क्योंकि अक्सर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट में, या फिर हम जो भी चीज़ें लेते हैं नेचर फ्रेंडली सो कॉल्ड, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी, ये सारी चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो बहुत महंगी लगती हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगी है। अगर कोई चीज़ 150 रुपये की मार्केट में मिली है तो ये ऑर्गेनिक के नाम पर वही चीज़ 400 रुपये की मिलती है
0: जी। इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा लेबर की होती है, जो बनता है छानना बनाना और उसको रेडी करना
1: जी जी,
0: तो सारा लेबर है, मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर, तो वो काफ़ी होता है। और मैं जो फ्लोर क्लीनर अपना देती हूँ नॉर्मली 150-160 रुपए के बीच आता है वो 1 लीटर, और आपको विश्वास नहीं होगा वो आराम से एक 3-bedroom फ्लैट में 2 महीने चल जाता है। नॉर्मली आप एक 5 लीटर की बॉटल
1: डालेंगे तो हाँ, बहुत लंबा चलेगा,
0: बहुत लंबा चलता है। तो आप उसका अब ये जो है प्लांट के लिए जब हम लेते हैं तो मुश्किल से 15 दिन में हमारा 10-15 ml यूज़ होता है, और अगर हमने वेजिटेबल वॉश के लिए यूज़ किया तो वही पानी फिर हम प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है। तो अगर एक बॉटल आपने ली भी है, थोड़ी महंगी भी आपको पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाती है, सब कंपनसेट हो जाती है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोग 5 लीटर से कम का फ्लोर क्लीनर नहीं लेते हैं, और वो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। ये मेरी एक बॉटल लोग लेते हैं, वो आराम से 2 महीने बाद बोलते हैं कि हमारा फ्लोर क्लीनर ख़त्म हो गया, दूसरा दे दो। तो एक तरह से बचत भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है
1: जी।
0: और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे डिश सोप है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बट वो भी आप ये देखिए कि अगर आप उसका जो हार्मफुल इफेक्ट के कारण जो डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं वो कितनी महंगी पड़ जाती है।
1: क्या बात है, बिल्कुल ये सही आपने बोला कि जो खाने में आप देखिए, खाना हम कितना भी साफ बना लें, अगर हम बर्तन ऐसी चीज़ से धो रहे हैं जिसमें केमिकल है, तो वो सब कुछ वैसे ही हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए आप अगर खाना ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो आप अपने बर्तन जो क्लीन करवा रहे हैं वो भी डिश वॉश ऐसा लें जिसमें किसी भी तरीके के कोई केमिकल ना हो। और ये जो हम बायो एंजाइम्स की बात करें, ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट होता है
0: जी,
1: घर पे बन जाता है, आपके बर्तनों को साफ रखता है, आपकी हेल्थ को ठीक रखता है, नाली में जब जाता है तो किसी तरीके का कोई पोल्यूशन वाटर में नहीं फैलाता है।
0: और तो और मैम, ये 1 लीटर बायो एंजाइम जब नाली में जाता है तो 1000 लीटर पानी को साफ करता है।
1: क्या बात है, मतलब ये गंदा नहीं करता, ये साफ करता है,
0: साफ करता है, कुछ हद तक उसकी जो BOD COD लेवल है उसको इम्प्रूव करता है।
1: क्या बात है, और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये STPs जो होते हैं, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, उनमें भी बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उनको साफ किया जाता है,
0: किया जा रहा है, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रोसेस होता है।
1: तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल की साइंस है। जिसको समझ के अगर आपने इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया तो ये जो बातें हो रही हैं बड़ी सारी कि क्लाइमेट चेंज और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोशिश तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा बेहतर करने की।
0: बिल्कुल होगा मैम, हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा।
1: बिल्कुल, और सारे घर अगर इस तरीके से इस्तेमाल करें चीज़ें, और सारी जो लेडीज होती हैं हमारे घरों की जो एक्चुअली में घरों को मैनेज करती हैं, अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचें, खुद नहीं बनानी है तो एटलीस्ट परचेज करें प्रोडक्ट्स इसी तरीके के, क्योंकि आपके घर में आपके परिवार को फिट रहना है, आपको फिट रहना है, पर्यावरण को फिट रहना है, तो थोड़ा सा एक आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुचेता साहू जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत सारी बातें आपने बायो एंजाइम के बारे में बताई। दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर बायो एंजाइम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 8010781078 पे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं आप बायो एंजाइम के बारे में क्या जानना चाहते हैं। हम आपके सारे प्रश्न सुचेता जी तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उनके जवाब आप तक लेकर आएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, और मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर लोग इसको सीखेंगे और यूज़ करेंगे। मैं अवेलेबल हूँ उनको मदद करने के लिए हर तरह से
1: जी,
0: तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए
1: जी। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में, आज हमने बायो एंजाइम्स के बारे में जाना, वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़ा ये कार्यक्रम है जहाँ पर कूड़ा निस्तारण के बारे में हम बात करते हैं, कैसे उसको किस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कूड़े को, या फिर उसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायो एंजाइम एक ऐसी ही चीज़ है, घर में आपके बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलकों से बनने वाले कुछ ऐसे लिक्विड्स जो आपके पर्यावरण को ठीक रखते हैं, आपके घर में फ्लोर क्लीनर, वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए, आपके प्लांट्स को ठीक रखने के लिए फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में एकदम नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट है। और इसके बारे में आज बहुत कुछ हमने जाना है सुचेता साहू जी से, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक्सपर्ट हैं, केयर बायो एंजाइम नामक एक ब्रांड है इनका जिसमें ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो अगर आप भी इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर ओ पी भल्ला फाउंडेशन का, इको क्लब और PTC फाइनेंस लिमिटेड का। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं ऑर्गन इंडिया की CEO सुनैना सिंह, जो बात कर रही हैं सीमा बिंदल और पंकज बिंदल से, जिन्होंने अपनी बेटी के अंग दान किए थे। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में एक बार फिर से नमस्कार। मैं सुनैना सिंह हूँ और आज के शो में मेरे साथ हैं एक बहुत हिम्मत वाले माँ बाप, जिनकी कहानी आज हम सुनेंगे उनकी जुबानी। सीमा जी और पंकज बिंदल जी, आपका हमारे शो में स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: मैं आप दोनों से कई बार मिल चुकी हूँ और आपने अंगदान की शपथ लेने के लिए बहुत लोगों को प्रेरित किया है और खूब काम किया है इस विषय में, और हर बार मुझे ये महसूस होता है कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आपका अंगदान के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आपने अपनी 16 साल की बेटी सुरभि के एक्सीडेंट के बाद उसके अंगदान किए थे। तो सबसे पहले सीमा जी, सुरभि के बारे में कुछ बताइए।
3: सुरभि जो कि एक बहुत ही होनहार लड़की थी और अपना सेल्फ स्टडी में विश्वास रखती थी, और उसका हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि पढ़ाई में अव्वल आना। कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा उसका सपना था कि CA बनकर मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करूंगी और उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगी। पर कुदरत को मंजूर नहीं था और उसकी एक दुखद हादसे में ब्रेन डेथ हो गई।
2: पंकज जी, सुरभि के बारे में आप कुछ बताएंगे प्लीज।
4: सुरभि एक अच्छी बेटी थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ वो CA भी करना चाह रही थी, किसी कारणवश वो CA ना कर पाई।
2: तो आपके और भी बच्चे हैं?
3: मेरा एक बेटा है वंश, जो कि सुरभि से 12 साल छोटा है और वो अब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। बट जो सुरभि के साथ अटैचमेंट मेरा उस समय से लेकर जब से वो पैदा हुई थी और आज तक भी उसी के साथ अटैचमेंट है, वो मैं अपने बेटे के साथ अभी तक भी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मेरी सुरभि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी जिसने अपने माँ बाप का हमेशा सुख में और दुख में साथ दिया है। उसने कभी भी जिद वाली बात नहीं की, जैसा भी है जो भी है उसमें सेटिस्फाइड थी। कभी ज़िंदगी में कुछ मांगा नहीं, कभी उसने हमसे जिद नहीं की कि नहीं मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। वो जितना चाह जो था उसी में अपना काम चला लेती थी।
2: तो उस दिन जिस दिन सुरभि का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन क्या हुआ?
3: रोज़ की तरह मैं अपने बेटे वंश को लेने जा रही थी, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम हुआ और मैंने कहा अम्ब्रेला दे, अपनी बेटी से अम्ब्रेला मांगा था। उसने कहा मम्मा मैं पढ़ रही हूँ और नहाई भी नहीं हूँ अभी, तो आप ऐसा कीजिए अम्ब्रेला मैं ही लेके चली जाती हूँ, क्योंकि आप गीले हो जाओगे और आपको नहाना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने भी कहा ठीक है बेटा आप चले जाओ, और वो दो कदम की दूरी पर ही गई थी कि सामने ही एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसके 5th टॉप फ्लोर से एक वॉल उस पर गिर गई, जो कि मेरे बिल्कुल सामने आंखों के सामने ही ये सब हुआ, जिसको उस समय सुन हो गया दिमाग कि ये हुआ क्या है। हम उसको फिर पास में हमारे हेडगेवार हॉस्पिटल था, गली में कोई मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, मेरे हाथ पैर फूल रहे थे कि मैं करूँ क्या। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था उस समय। फिर मैंने बैल बजाई, अपने घर की ही बैल बजाई, मेरे हस्बैंड घर में ही थे, तो वो नीचे फटाफट आए और देखा कि माजरा क्या है। और हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे वंश की उस समय वैन आ चुकी थी तो हम फटाफट से उसको उसी में लेके हेडगेवार पहुंचे।
2: पंकज जी, आप जो पहले आप अस्पताल में थे, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे फिर उसके बाद हुआ क्या?
4: हम इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे कज़न ब्रदर भी काम करते हैं, तो उनके द्वारा हमने अपनी बेटी के बारे में उसका इलाज करवाया, लेकिन ये क्रिटिकल मामला होने के कारण इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा हम वहन नहीं कर पा रहे थे। तब इसको ऑल इंडिया ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ ले गए थे वहाँ के हॉस्पिटल का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि हमारे को एम्बुलेंस भी नहीं मिली वहाँ पे, और एम्बुलेंस हमने अपनी मंगवाई और डॉक्टर भी हम अपने रिलेटिव के थ्रू ही गए, और काफ़ी परेशानी के बाद में जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो ड्राइवर भी ऑल इंडिया ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में होने के बावजूद उसको ऑल इंडिया ट्रॉमा सेंटर का एड्रेस भी नहीं मालूम था। तो ये सब काफ़ी दिक्कतों के बाद हम अपनी बेटी को ऑल इंडिया ट्रामा सेंटर उसी दिन 2 घंटे के अंदर ही वहाँ इलाज कराने की कोशिश की, किसी कारणवश वो सही नहीं हो पाई, और जिसके कारण हमें अपनी बेटी का अंगदान करा। लेकिन उसमें भी थोड़ी समस्या थी कि अंगदान के बारे में हमें पता नहीं थी, बेटी का डॉक्टरों ने बोला कि ब्रेन डेथ है आपकी बेटी की, आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी तो समझ में आती है, लेकिन बच्चे की जब सांसें चल रही होती हैं तो सॉरी का वर्ड समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे कज़न ब्रदर होने के नाते उनसे जानकारी ली और पता लगा ब्रेन डेथ इज डेथ, और फिर हमने ऑर्गन डोनेशन में अपना जो भी छोटा मोटा सहयोग था वो देने की कोशिश करी। और हम चाहते हैं सभी व्यक्ति कोई भी हो, सब जानकारी हासिल करके सही जगह अपने किसी भी सदस्य की मृत्यु होने के बाद अगर अंगदान करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: जैसा कि आपने बताया कि जब आपको बोला गया कि सुरभि की ब्रेन डेथ हुई है, तो इस वक्त पे लोग समझ नहीं पाते कि ब्रेन डेथ क्या है, क्योंकि कभी उनको बताया ही नहीं गया कि ब्रेन डेथ क्या है, और ब्रेन डेथ एक्चुअली डेथ है, वो कोमा नहीं है, वो कुछ नहीं है। और उस वक्त लोगों की सांसें जारी होती हैं क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं। तो आपको कैसे उन्होंने समझाया और आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ ये ब्रेन डेथ डेथ ही है, क्योंकि आपको पहले कुछ मालूम तो था नहीं?
3: ब्रेन डेथ हमें मालूम नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा डेथ हो गई है, और हम बहुत पजल थे कि सांस चल रही है और डॉक्टर कह रहे हैं डेथ हो चुकी है, क्योंकि सभी कहते हैं कि सांस है तो आस है, लेकिन वो हमारी आस टूट रही थी जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब ब्रेन डेथ क्या होता है उसे समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने समझाया हमें कि इसका माइंड काम नहीं कर रहा, और माइंड जो है वही बॉडी का मेन पार्ट होता है, और जब वो उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि आपकी बेटी की ब्रेन डेथ हो चुकी है और आप इसके ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए। तब हमने फिर उसके ऑर्गन्स डोनेट किए।
2: आपको उन्होंने समझाया कि इसके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं जब ब्रेन डेथ हो चुकी है, जब वो मर चुकी है?
3: उन्होंने बस यही बताया कि इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, इसके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, तो इसलिए अभी इसके जो ऑर्गन्स हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं और वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको वेंटिलेटर से हटा देते हैं तो ये आप इसको घर ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाकर भी आपका कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये इसका और माइंड जो है वो अब बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, और जब माइंड ही नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगी, सिर्फ एक लाश की तरह पड़ी रहेगी, जो कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने पड़ा हुआ है। हम अपनी बेटी को ऐसे तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने कहा नहीं डॉक्टर आप इसके ऑर्गन्स डोनेट कर दे।
2: तो सीमा जी, एक बार आपने हाँ कर दी अंगदान के लिए, उसके बाद क्या हुआ?
3: एक बार हाँ करने के बाद मुझे बस यही था कि मेरी बेटी के अंग जिसको भी लग रहे हैं वो प्रॉपर वर्क करें, और अगर मेरे पास मेरा बच्चा वापस नहीं आ पा रहा है तो कम से कम उन माओं का बच्चा, उन माओं के लाल तो उनकी गोदी में खेलेंगे जिनके जिनके बॉडी में इसके अंग लग रहे हैं। और कम से कम मुझे इस बात का बहुत सुकून मिलता है जब मैं सोचती हूँ कि आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो आज अपनी आँखों से, अपने दिल से, अपने किडनी, लीवर, लंग से कहीं ना कहीं तो सांस ले रही है, और बहुत खुशी होती है इस बात की, क्योंकि जाना तो सबने हैं, भगवान ने जो सांसें होती हैं वो लिख कर भेजी होती है कि कितनी लेनी है, तो जाना तो सब ने है। आज मैं भी अगर इस समय यहाँ पर आपके सामने बोल रही हूँ तो सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी के अंगदान किए हैं, और उसके ऑर्गन्स जो है वो वेस्ट नहीं किए मैंने, उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया और उनको किसी ना किसी रूप में वो काम कर रहे हैं। हम अपना पैसा भी होता है वो जीवन रूपी बैंक में जमा, हम बैंक में जमा करवाते हैं ताकि वो फले फूले। तो ये तो ऑर्गन्स हैं और वो किसी के जीवन रूपी बैंक में जमा हुए हुए हैं जहाँ पे वो फल फूल रहे हैं, वो और ज़्यादा हमारे लिए हिम्मत की बात है और हमें सुकून मिलता है इस बात से।
2: पंकज जी, आपके ये डिसीजन के बाद आपकी फैमिली में किसी ने बोला कि ये आपने क्यों किया और आप कैसे कर सकते हो?
4: असल में मैं अपने घर में इकला हूँ और रही बात मेरे रिलेटिव की, रिलेटिव में किसी से मेरी कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आपने जो करा बहुत अच्छा करा, हमारे घर में परिवार में किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, चाचाओं में मामाओं में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाज के कुछ तत्व, कुछ व्यक्ति गली मोहल्ले के जिनको समझ ना होने के कारण कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अपनी बेटी के अंगों को बेच के आए हैं, जिनके लिए लोगों को सोचने समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कभी किसी व्यक्ति किसी अपने का कोई ऐसी घटना में जिसको अंग की जरूरत हो और वो अंग ना दे पाए, उसको ना मिले, तो उसको पता लगेगी कि अंग बेचे कैसे जाते हैं और खरीदे कैसे जाते हैं। ये समाज को जो गली मोहल्ले के होते हैं उनको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और सोचेंगे तो आने वाले भविष्य में अपने बारे में भी सोचें, कभी ना हो किसी को भी ऐसी परेशानी हो। ये एक हमारे देश में अवेयरनेस की भी कमी है कि जिसकी वजह से लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है ये, और कुछ करना नहीं चाहते कि हमारे को आँखें दे दी तो आँखें नहीं मिलेंगी अगले जन्म में। आपका भविष्य यही है, यही दिन

0: उस समय उस स्थिति में होती है कि बात भी नहीं कर सकती, बात माँ क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो डॉक्टर्स ने मुझे तो कहा कि मैडम आप बाहर चले जाइए, लेकिन हम उस कंडीशन से गुजर रहे थे कि हमें अपनी बेटी का पता चल रहा था कि 10% चांस है, तो बात समझ आ रही थी। और मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप बताइए क्या कंडीशन है, तो उन्होंने फिर समझाइए नहीं मैडम प्लीज आप चले जाइए बाहर, मैं सर से बात करता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो खुद ही बहुत जल्दी है ना एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने कहा नहीं सर बताइए आप। तो डॉक्टर ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डेथ है, तो हमने जब हाँ कर दी तो डॉक्टर्स फिर भी पूरी टीम जो थी वो लगी रही उसके लिए कि मैम अभी 5 घंटे का एक टेस्ट हो रहा है, हम वो टेस्ट करेंगे, भगवान का कोई चमत्कार कोई ऐसा हो जाएगा कि शायद आपकी बेटी सही हो जाए। तो उन्होंने फिर भी टेस्ट किया, एक दवाई और उसके माइंड से ना उसमें एंटर की गई, लेकिन फिर भी भगवान को मंजूर नहीं था कि वो हमारे पास वापस आए।
1: आपको हॉस्पिटल में वेट करना पड़ा जब तक सारे अंग निकाल दिए गए, और उसके बाद क्या हुआ?
0: जब हमने एक बार हाँ कर दी उसके बाद है ना डॉक्टर्स वगैरह मैच करने के लिए कहने लगे कि अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में है और हम घर आकर आराम से बैठ जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं हम हैं यहीं पर ही हैं, आप कीजिए जितना भी टाइम लग रहा है, कम से कम 20-25 घंटे हम वहीं हॉस्पिटल में, मेरा छोटा सा बेटा था 3.5 साल का, हम उसको लेकर, वो उसको भी है ना कहीं पर हमने नहीं छोड़ा क्योंकि हम लोग अकेले हैं अपनी फैमिली में, तो हमने उसको अपने साथ ही रखा और जो भी टाइम लगा उसका हमने वेट किया। और जब उसकी सुबह हमें उन्होंने बॉडी दी तब हम उसे लेकर घर आए।
1: आप दोनों लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, उनको अंगदान के बारे में कुछ नहीं मालूम, ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको?
0: मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये हमारे अंग हैं वो बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट नहीं हैं, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इसलिए भगवान की देन है और इसे आप मिट्टी में मिला देते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के कि आगे फ्यूचर में ना करे भगवान हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे उस समय, क्योंकि इतनी आसानी से मिलने वाली प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम है ना इनको वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान ना करे जरूरत पड़ने पर हम कहाँ से लेंगे इसे, सिर्फ आंसू ही बहाएंगे। तो इसके लिए आपको सबको सोचना पड़ेगा और एक एक कदम मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि इस चीज़ की कमी हमारे जो देश में है वो पूरी हो सके और कोई भी हमारे देश में अंगों के अभाव में ना मर पाए।
2: मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अंग देने चाहिए, अंग देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंग देने में सही जगह दीजिए जिसको आप जानते हो, जैसे जो भी डिपार्टमेंट में आप देना चाहते हैं। हमने अपने अंग गवर्नमेंट ही संस्था ऑल इंडिया एम्स में और वो डिपार्टमेंट है वहाँ दिए थे, ऐसे ही आप भी अवेयरनेस होके उसकी जानकारी लेके अपने बच्चों के या कोई भी व्यक्ति का जिसको भी अंग देने वो देने की जरूर आवश्यकता है, आप जरूर दीजिए।
0: मेरी बेटी सुरभि जो है उसके अंगों से 8 लोगों की जिंदगी बची है। अब आप सोचिए कि एक माँ आजकल के ज़माने में सिर्फ 1-2 बच्चों को जन्म देती है और कितनी खुशी होती है कि मेरी बेटी ने तो 8 लोगों की ज़िंदगी बचाई है, और वो भी जो लोग मरने की कगार पर हैं, जो वेट कर रहे हैं इन अंगों की, और जो ये ऐसी स्थिति में है कि वो इसके बिना लाचार हैं और तिल तिल करके मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बचाना कितना बड़ा काम है। तो बहुत सुकून है इस बात का कि वेस्ट ना करके उसको हमने एक ऐसे इंसानों के शरीर में डाला हुआ है ताकि वो फल फूल रहे हैं, वेस्ट नहीं हुए।
3: थैंक यू सुनैना। मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
4: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या

0: या अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो लेकर आता है आपके लिए बहुत सारी जानकारी बहुत सारी बातचीत बहुत सारे इंटरव्यूज और साथ ही लेकर आता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने भी जिसे सुनकर आप खुश हो जाते हैं और आपकी खुशी देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत सारी बातों के साथ साथ गाने का सिलसिला भी हमारा चलता रहता है। इसी के साथ मैं आ गई हूँ लेकर प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, लाइफ में सक्सेस सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए आप खुद सोचिए ना। हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, कोई कामयाबी हासिल कर ले या फिर कुछ अपनी लाइफ में कर ले और कुछ बन कर निकले। दोस्तों ये बात तो सच कही है, जरूरी नहीं होता कि सबके पास सब कुछ हो तो इंसान सब कुछ तभी कर पाता है। नहीं, मैं आपके साथ ना बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किसी के पास कुछ ना होते हुए भी उसने कितने संघर्ष से कितनी मेहनत से कितनी लगन से सब कुछ हासिल कर लिया। तो बस लाइफ का ना यही मोटिव रखना चाहिए कि बस आप ना अचीव करने के ऊपर ध्यान दो, आप बस मेहनत करने पर ध्यान दो। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। आप बस काम करिए मेहनत करिए सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज भी आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए बहुत सारी बातें जहाँ पर आज हम किसी की जर्नी के साथ चलने वाले हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, आज हम B.R. अंबेडकर की जर्नी के साथ चलने वाले हैं। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी लाइफ से हम मोटिवेशन लेने वाले हैं कि ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर हम खुद आस छोड़ देते हैं पर अगर सामने कोई इंसान आ जाए और अपनी बातों से अगर हमें मोटिवेट कर दे हमें भी अंदर से हौसला आ जाता है कि यार हम भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए आपके लिए जर्नी लेकर आ जाती हूँ और ये सिलसिला पूरा एक घंटे का रहता है जहाँ पर हम बहुत सारी बातें भी करते हैं बहुत सारी गाने भी सुनते हैं। तो चलिए इसी के साथ अभी सुनाऊंगी मैं आपको बहुत ही प्यार सा गाना, उसके बाद हम इस जर्नी पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पर उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और साथ ही एक संकल्प के साथ एक कहते ना इतिहास रच दिया। और आज की हमारी कहानी है भारत के एक ऐसे महान विचारक की, एक ऐसे समाज सुधारक की, अर्थशास्त्री की, राष्ट्र निर्माता की, जिनका नाम भारत के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा, लिया जाता है और आगे भी सम्मान से लेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं B.R. अंबेडकर की, जिन्हें पूरा देश बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानता है। दोस्तों, हर महान सफलता की कहानी की शुरुआत किसी ना किसी संघर्ष से ही होती है। बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म हुआ 14th of April 1891 को। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता रामजी मोलजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा करते थे और शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वता भी देते थे। बचपन से ही बाबा साहब एक तेज और जिज्ञासुक विद्यार्थी थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उस समय भारत में सामाजिक असमानता और भेदभाव गहरा था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अलग अलग व्यवहार का सामना भी करना पड़ा था। ये अनुभव किसी भी बच्चे का हौसला तोड़ सकता है, लेकिन बाबा साहेब ने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जी हाँ, जितनी मुश्किलें उनके सामने आती गई, उतनी ही उनकी पढ़ाई के प्रति लगन और ज्यादा बढ़ती गई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। इसी सोच ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब कई लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, तब कुछ लोग उन्हें बदलने का संकल्प ले लेते हैं। जी हाँ, बाबा साहेब उन्हीं लोगों में से एक थे। दोस्तों, बचपन की कठिनाइयों ने उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत ज्ञान और शिक्षा से ही होगी। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यहीं से हमने बाबा साहेब अंबेडकर का पहला सक्सेस मंत्र भी मिल गया। जी हाँ, वो ये है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती है, बल्कि सोचने, समझने और अपनी जिंदगी को बदलने की एक ताकत होती है। जी हाँ, इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की बचपन के बारे में, उनके शुरुआती संघर्षों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उनके अद्भुत सफर की जो उन्हें भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक बनाता है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि अगर जिंदगी में सच्चा बदलाव लाना है तो उसका रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। जी हाँ, इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और समर्पण के साथ जारी रखा। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिनस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया। उस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन बाबा साहेब के सपने भी इससे और ज्यादा बड़े थे। उनकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की। जी हाँ, ये स्कॉलरशिप उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसकी मदद से बाबा साहेब को अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। जी हाँ, अमेरिका पहुंचकर उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जैसे विज्ञानों का गहरा अध्ययन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से समझा। वहाँ उन्हें एक ऐसा वर्ताव मिला जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत और योग्यता से होती थी। इस अनुभव ने उनकी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन बाबा साहेब का सीखने का जो सफर यहीं नहीं रुका, वो अमेरिका के बाद भी इंग्लैंड गए थे। वहाँ पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की, साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। इतनी कठिनाइयों के बावजूद लगातार पढ़ाई करना उनके संकल्प का प्रमाण था। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सीखने की इच्छा हो और मेहनत करने का जज्बा होना, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं होती। उन्होंने ज्ञान को सिर्फ अपनी सफलता का जरिया नहीं बनाया, बल्कि समाज में बदलाव लाने का माध्यम भी बनाया है। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का दूसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा तरक्की के दरवाजे खुलते जाएंगे। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरती स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम B.R. अंबेडकर की जर्नी के साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक की शिक्षा यात्रा को पूरी की और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का उद्देश्य सिर्फ खुद सफल बनना नहीं था, बल्कि उनका सपना था कि एक ऐसा समाज बनाना जहां पर हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय मिल सके। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद जब बाबा साहेब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में असमानता और भेदभाव की समस्याएं अब भी मौजूद थी। उन्होंने फैसला किया कि जो ज्ञान और अनुभव उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से प्राप्त किया है, उसका उपयोग वो समाज के हित में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा की महत्वता के बारे में बताया, शिक्षा से जागरूक करना सिखाया, और उसके बाद उनका मानना था कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो लोगों को शिक्षित और सशक्त बनना बहुत जरूरी होगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कई लेख लिखे, भाषण दिए और सामाजिक जागरूकता के अभियान भी चलाए। साल था 1924, जिसमें उन्होंने बहिष्कृत हितक्रांति सभा की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य था कि शिक्षा पर प्रसार, सामाजिक जागरूकता, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। बाबा साहेब ने हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई जिसे समाज में समान अवसर नहीं मिल पा रहा था। उनकी एक और खास बात थी कि वो समस्याओं की सिर्फ आलोचना नहीं करते थे, बल्कि उनके समाधान भी प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सोच के साथ साथ संगठित प्रयास भी बहुत जरूरी है। इसी वजह से धीरे धीरे लोग उनकी बातों को सुनने लगे और उनके विचारों से प्रेरित होने लगे। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि नेतृत्व करना हो। असली लीडर वही होता है जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है और उन्हें अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित भी करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी उद्देश्य को समर्पित कर दिया। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का तीसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी समाज के हित के लिए भी करते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आज स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम चल रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जर्नी के साथ। बहुत सारी सीखें मिल रही हैं हमें, बहुत सारे सक्सेस मंत्रा मिल रहे हैं उनकी लाइफ से। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में हमने जैसे उनके बारे में जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए किया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विचार रखना ही काफी नहीं होता है, कभी कभी बदलाव लाने के लिए हिम्मत के साथ खड़े होना भी जरूरी होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही किया। जी हाँ, उस दौर में समाज में कई ऐसी परंपराएं और व्यवस्थाएं मौजूद थी जो लोगों के बीच में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती थी। बाबा साहेब ने इन समस्याओं को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ आवाज भी उठाई। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। फिर आया साल 1927, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे महत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस आंदोलन का उद्देश्य था सार्वजनिक जल स्रोत पर सभी लोगों का समान अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं था बल्कि समानता और मानव अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक भी था। बाबा साहेब ने हमेशा कानूनी और शांतिपूर्वक तरीके से बदलाव लाने पर ज्यादा जोर दिया। उनका विश्वास था कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन उस संघर्ष में सोच, तर्क और संगठन की भी उतनी ही अहमियत है। इसी वजह से उनके आंदोलन ने हजारों लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी बनाया। दोस्तों, कभी किसी बड़े बदलाव के लिए हिम्मत चाहिए होती है। कई बार जब कोई व्यक्ति पुरानी सोच को चुनौती देता है तो उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मुश्किलों और विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उनका फोकस हमेशा एक ही भारत का निर्माण था, जहाँ पर हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल सके। उनकी लीडरशिप ने लोगों को ये सिखाया कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। उनका संघर्ष सिर्फ एक समय के लिए नहीं था बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता तैयार कर रहा था। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का चौथा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो हिम्मत के साथ उसके लिए खड़े होना भी जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से नहीं बल्कि उनके लिए संघर्ष करने से परिवर्तन आता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सक्सेस मंत्रा में बात करी बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलनों और समानता के लिए किए गए संघर्ष के बारे में, इसके बारे में हमने जाना। लेकिन अब बात करते हैं आगे इस सेगमेंट में उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय। ये वो अध्याय था जिसने उन्हें भारत का सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में शामिल कर दिया था। जी हाँ, जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था तब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे, न्याय सुनिश्चित करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। इस महान जिम्मेदारी के लिए बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। जी हाँ दोस्तों, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश था। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियां थी। ऐसे में एक ऐसे संविधान बनाना जो सबको साथ लेकर चले, एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने गहरे अध्ययन, कानूनी ज्ञान और दूरदर्शी सोच का उपयोग करते हुए संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब देश के हर व्यक्ति को अवसर और सम्मान मिलेगा। फिर आया दिन 26 नवंबर 1949। जी हाँ, भारत का संविधान अपनाया गया। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं था बल्कि एक नए भारत का सपना था। एक ऐसे भारत का जहाँ पर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार हो, अपनी प्रगति का मौका हो और कानून के सामने सब समान हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये भी सिखाया कि किसी भी राष्ट्र की ताकत उनके नागरिकों और उनके संस्थानों में होती है। इसलिए उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र और कानून के प्रति सम्मान की बात की है। दोस्तों, आज जब हम जिस भारत में अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं उसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके सहयोगियों के वर्षों की मेहनत छुपी हुई है। इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का पांचवा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है कि बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों को मिलती है जो तैयारी, ज्ञान और ईमानदारी के साथ उन्हें निभाने की क्षमता रखते हैं। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे और भी बातचीत हमारी बाकी है जिसे हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर यानी कि B.R. अम्बेडकर की जर्नी के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई और एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता को महत्वता दिया गया। और अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी विरासत, उन्हें मिले सम्मानों और उनके विचारों की, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने समय में महान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन के बाद भी कई पीढ़ियों तक बना रहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और महान अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है, इसीलिए उन्होंने हमेशा लोगों को पढ़ने, सीखने और जागरूक बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सामाजिक स्थानों में चर्चा का विषय बना रहता है। और उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। ये सम्मान उनके द्वारा राष्ट्र और समाज के लिए किए गए अमूल्य योगदान की पहचान है। आज देश के कई संस्थान, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर स्थापित हैं, जो उनकी अमर विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो एक विचारक, अर्थशास्त्री, लेखक, समाज के सुधारक और दूरदर्शी नेता भी थे। उनके विचार हमें आज भी ये याद दिलाते हैं कि समानता और न्याय किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और सबसे खास बात तो ये है कि उनकी सीखें सिर्फ इतिहास की किताबों में ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के युवाओं के लिए उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण भी है। खुद को शिक्षित बनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का सक्सेस मंत्र मिलता है कि आपकी असली पहचान आपके जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और समाज पर छोड़े गए प्रभाव से बनती है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा के प्रेरणादायक सफर में हमने बात करी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनके कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जाना, एक ऐसे बच्चे की कहानी जानी जो कठिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ, एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी जिसने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और एक ऐसे नेता की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी हमें कई ऐसे सबक देती है जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय में थे। उनका पहले सक्सेस मंत्र है, शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। जी हाँ, बाबा साहेब का विश्वास था कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो लोगों को गलत राहों पर असमानता और असीमित सोच से मुक्त कर सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने और सीखने को महत्वता दिया। दूसरा सक्सेस मंत्र है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, कभी हार मत मानिए। बचपन से लेकर जीवन के कई पड़ाव तक उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष सफलता का विरोध नहीं बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने सपनों को अपनी पहचान बनाया और कैसे वो आज लोगों में इतने महान व्यक्ति बन गए। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जिंदगी सिर्फ एक इतिहास का एक अध्याय ही नहीं है, बल्कि उनके हौसले, शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक जीवांत मिसाल है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजी स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत, और अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक और ऐसी शख्सियत की कहानी के साथ जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्र मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए, और साथ ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें हर शनिवार ना, आपको बड़ी खूबसूरत जगह लेकर के जाती हूँ घुमाने के लिए। कभी जाते हैं हम कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी, कभी जाते हैं वेस्ट बंगाल तो कभी जाते हैं हम गुजरात। अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग कोनों में, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हम भारत से बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। और आज जिस जगह आपको घूमने के लेकर के आई हूँ भाई, वो तो इंडिया की ही बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज आपको सदियों पुरानी मिट्टी, जहाँ इतिहास का आईना बन जाए और हर गली से जास्मीन की खुशबू आए, एक ऐसी जगह आपको लेकर के जाने वाली हूँ। तो जरा सोचिए, जास्मीन की बात हो रही है, किस जगह की मैं बात कर रही हूँ? तो चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई संदेश है, कोई गाना है सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। फिलहाल गई मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
2: इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव। ना

आए, पॉपलिन का बदल के नंबर टेरिलिन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा दे।

0: महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।
1: टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे,

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हो हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना आपको बहुत खूबसूरत सी जगह लेकर के मैं आ गई हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में ना हम जा रहे हैं साउथ इंडिया के एक ऐसे शहर में जिसे द एजेंट्स ऑफ द ईस्ट और या फिर थुंगा नागरम जो है यानी कि द सिटी ऑफ दैट नेवर स्लीप जिसे कहा जाता है। और यानी कि देखिए ये जो जगह है ना ये कभी सोती नहीं है। आज हमारा रास्ता ना मुड़ रहा है मदुरई की तरफ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जिसका डिजाइन बिल्कुल एक खिलते हुए लोटस यानी कि कमल के फूल जैसा है, जिसके सेंटर में माता मीनाक्षी का एक विशाल एक बड़ा भव्य मंदिर है और चारों तरफ से शहर बसे हुआ है और पूरा शहर बड़ा खूबसूरत है। जब हम पहली बार वहां जाएंगे तो मदुरई की मिट्टी पर जब आप कदम रखेंगे तो हवाओं में गरम फिल्टर की कॉफी जो है फिल्टर कॉफी वही उसकी ताजा खुशबू और मदुरई के जो मल्ली यानी कि जो जैस्मिन है इस फूलों की यहाँ पर आपको खुशबू भाई इतनी अच्छी आपको महका देगी बिल्कुल। आज के इस प्रोग्राम में हम मदुरई जाने वाले हैं और यहाँ की जो पुरानी जिंदा गलियों से हम भाई का जो एहसास है हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ के ग्रैंड पैलेस आपको मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, अनोखे किस्से आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं मदुरई और यहाँ की बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आई हूँ। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

मंदिर के ऊंचे गोपुरम जब आकाश को छूते हैं तो लगता है आस्थाने खुद को पत्थर पर उकेर दिया है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं, मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। मदुरई की पहचान, इसकी धड़कन और इसका दिल, सब कुछ एक ही जगह बसा हुआ है और वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये मंदिर जो आर्किटेक्चर है ना, उसका एक ऐसा अजूबा है जिसे देख कर ना सांसें रुक जाती हैं। इस मंदिर में 14 विशाल गोपुरम यानी कि टावर है और सबसे बड़े टावर पर हजारों देवी देवताओं की, जानवरों की कलरफुल मूर्तियां इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर माता पार्वती यानी कि मीनाक्षी और भगवान शिव यानी कि सुंदरेश्वर को डेडिकेट ये मंदिर किया गया है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे सुबह सुबह इस मंदिर के अंदर एंटर जब आप करते हैं तो वहाँ की गोल्डन लोटस पॉन्ड जो है उसका पानी चमक रहा होगा। कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ जो पोएट होते थे अपनी किताबें पानी में डालते थे और जो किताब सच्ची होती थी वो पानी पर तैरते लगती थी। मंदिर के अंदर की हवा भी चंदन और जो कपूर है उसकी खुशबू वहाँ पर आती है, पवित्र खुशबू वहाँ पर आती है, आपके मन को एक अलग लेवल की यहाँ पर शांति मिलेगी जब आपको इस मतलब उस भव्य मंदिर के जो अंदर एहसास है ना उसमें रम जाएंगे आप खो जाएंगे उस टाइम पर ना, मतलब उस जगह में, उस एटमॉस्फेयर में, उस ऑरा में आप एकदम गायब हो जाएंगे। सुकून से मैं आप बस कहीं बस खो जाएंगे, बस सुकून में ही खो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, क्योंकि मदुरई की बातें हो रही हैं, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं, एंजॉय कीजिए आप भी। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर के अंदर की मैं अब बात कर रही हूँ। पहले हम मदुरई आ जाए हैं तो वहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर के अंदर एक ऐसी देखिए जगह है, एक ऐसा हॉल है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अय्यरम काल मंडपम यानी द हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। असल में यहाँ 985 पिलर्स हैं और एक पिलर पर इतनी बारीक से जो देखिए नक्काशी जो है वो की गई है जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर को जो देखिए मक्खन की तरह जो है काटा गया हो और इतनी खूबसूरत जो नक्काशी है वो की गई है कि क्या कहने। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, बड़ी जादुई बात है ये, बल्कि कई लोग हैरान होंगे ये जानकर जिनको अभी नहीं पता है। देखिए इसके बाहर खड़े होकर जब आप इन पत्थरों पर धीरे धीरे थपथपाते हैं तो उनमें से संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं, यानी कि सारे गामा पा धा नी सा। माफ कीजिएगा मेरी आवाज। लेकिन जब आप खुद एक पिलर को हल्के से छूकर और आप छुएंगे और उसमें से मेटल जैसी आवाज जो है वो आएगी तो मतलब आप दंग रह जाएंगे। और ये आवाज जो है बिल्कुल एक सुर की तरह जो है वो निकलती है, इसलिए इसे म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ये हमारे पुरखों के ज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो बताता है कि पुराने जमाने में साइंस और आर्ट कितना गहरा जो है वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो जुड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। चलिए अब मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं मदुरई के रॉयल इतिहास की तरफ, थिरुमलाई नयक्कर महल। इसे जो राजा है थिरुमलाई नायक ने 1636 में बनवाया था। जब आप इस महल के देखिए जाएंगे, आंगन में जाएंगे, वहाँ खड़े जब होंगे तो आपको सबसे पहले दिखेंगे इसके विशाल सफ़ेद खम्भे यानी कि पिलर्स। और ये खम्भे इतने बड़े और इतने ज़्यादा बड़े मतलब मोटे हैं कि चार लोग मिलकर भी एक खम्भे को नहीं पकड़ सकते हैं। इस महल का आर्किटेक्चर इटालियन और इस्लामिक स्टाइल का इससे बना हुआ है और एक परफेक्ट मिक्स है। जब आप यहाँ शाम को जाएंगे तो देखिए यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ लाइट्स की रोशनी में महल की दीवारें जो हैं वो बोल उठती हैं और राजा थिरुमलाई की बहादुरी और उनके ख्वाब की दास्तां सुनाई जाती है। ये महल आपको एहसास करवाता है कि मदुरई सिर्फ एक स्पिरिचुअल शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रॉयल किंगडम भी है। चलिए देखिए, एक बहुत रॉयल किंगडम की हम बात कर रहे हैं और ये रहा था मतलब बहुत ही खूबसूरत एक टाइम पर जो था वो एक किंगडम रहा था और उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए अब मदुरई की बात करें, और भी बहुत सारी जगहें यहाँ घूमने के लिए, खाने पीने की भी बहुत सारी जगहें हैं। अब खाना तो खाएंगे, अब आए हैं मदुरई तो, लेकिन उससे पहले अभी लेते हुए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

शिव की, भगवान देखिए यहाँ पर जो हमारे महाकाल हैं उनकी मूर्ति को एक रंगीन पालकी में बैठाकर ढोल नगाड़ों और आरती के साथ माता मीनाक्षी के दरबार में, यानी कि माता पार्वती के दरबार में ले जाया जाता है ताकि वो दोनों एक साथ आराम कर सकें। जब आप सामने से ये देखेंगे ना, ये दृश्य देखेंगे, तो पूरा मंदिर जो है बादाम और चंदन के जो धुआंधार रोशनी से जो है वो भरा हुआ होता है और लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होकर जो भजन कीर्तन है वो करते हैं। और ये जो रिचुअल है, ये जो देखिए वहाँ पर होता है, जब मदुरई के लोग जब देखते हैं तो आप मतलब जब आप वहाँ जाएंगे ना, जब आप उन लोगों से बात करेंगे, ईश्वर को सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा लोग मानते हैं वहाँ, जिन्हें हर रात प्यार से सुलाया जाता है। ये 20 मिनट आपके दिल को एक ऐसा देखिए एहसास देंगे, जो गर्माहट है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो दिखाएंगे और आप कभी वो भूल नहीं पाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा वो आपको। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। जायका वहाँ का बेहतरीन होता है जहाँ खाने के हर एक बाइट में शहर का जश्न खुला हो। अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो देखिए, मदुरई को फूड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ का खाना एकदम लाजवाब है। अगर आप यहाँ हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए यहाँ का आइकॉनिक ड्रिंक जिगर ठंडा। इसका नाम सुनकर ही मतलब ऐसा लगता है जैसे जिगर को ठंडक ये पहुंचा दे। ये जो दूध आलमंड यानी कि बादाम और गोंद यानी कि बादाम गोंद से जो है वो तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है सरसा पारिल्ला जो सिरप है वो डाला जाता है, और एकदम रिच आइसक्रीम से ये बनती है। एक सब में आपको जन्नत का एहसास हो जाएगा। और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो मदुरई का जो करी डोसा है, करी डोसाई है, यहाँ पर ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये एक मोटा डोसा होता है जिसके ऊपर मसालेदार चॉप किया हुआ मटन जो है और अंडा एग जो है इसकी लेयरिंग होती है। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ लगेगा, और क्रंची और तीखा स्वाद जुबान पर आपको रह जाएगा। और यहाँ हर स्वाद में ना मज़ा है। यहाँ का खाना थोड़ा मसालेदार ज़रूर है लेकिन आपको काफ़ी कमाल लगेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और विशाल टेम्पल टैंक यानी कि तालाब है जिसे कहते हैं वांदियोर मारियम्मन तेप्पाकुलम, और ये पूरे तमिलनाडु का सबसे बड़ा टेम्पल टैंक यानी कि जो पॉन्ड है इसे माना जाता है। और ये इतना बड़ा है कि इसके बीच में एक छोटा जो है छोटे से हरा भरा जो आइसलैंड है जहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थित है। कहते हैं कि जब थिरुमलाई जो राजा है यहाँ के, जब जो महल है जिसने बनाने के लिए यहाँ की मिट्टी जो है वो खोदी जा रही थी, तो ज़मीन के नीचे से भगवान गणेश

गणेश की बहुत बड़ी मूर्ति निकली थी और बाद में उस खाली जगह को इस विशाल तालाब में बदल दिया गया और जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ जो फ्लोट फेस्टिवल है ये होता है, जहाँ उस जगह पर उस जो आइलैंड एक बना हुआ है तो इस पे मंदिर को लाखों दियों से सजाया जाता है और माता मीनाक्षी यानी कि माता पार्वती की जो एक बोट निकाली जाती है शाम को इस तालाब के किनारे, जो अगर आप बैठते हैं तो ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं और सुकून आपको यहाँ मिल जाएगा। मदुरई एक ऐसी जगह है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको हर जगह मंदिर जो है वो आपको मिल जाएंगे और साथ ही आपको जो नेचर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो ठंडी हवाएं हैं उसे महसूस कर पाएंगे, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है वो भी आप महसूस कर पाएंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, जो मदुरई है ना इसको जैस्मिन कैपिटल भी जो है वो कहा जाता है। फूलों की महक जब शहर की हवाओं में और घुल जाए ना तो हर रास्ता एक नया ख्वाब लगने लगता है और हर रास्ता आपको ख्वाब ही लगने लगेगा जब आप मदुरई आएंगे। चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज लेकर के आई हूँ आपको मदुरई। मदुरई की एक और बहुत बड़ी पहचान है वहाँ के जास्मीन यानी कि मोंगरे के फूल, जिसे लोकल लैंग्वेज में मदुरई मल्ली कहते हैं। और यहाँ के जास्मीन के फूल यानी कि जो मोंगरे के जो फूलों की खुशबू है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी यूनिक है कि इसे GI टैग यानी कि ग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो मिला हुआ है। जब आप मदुरई के फ्लावर मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरफ सफ़ेद फूलों के ढेर दिखाई देंगे और हवाओं में एकदम महक जो है ये रहती है वहाँ के फूलों की, यानी कि जो फूल हैं वहाँ पर मोंगरे के उसकी आपको खुशबू जो है ये आपको उसका महसूस आपको हो जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने बालों में ये गजरा बहुत ही प्यार से लगाती हैं और जब आप यहाँ जाएंगे, और मैंने सुना है कि मदुरई मल्ली की खुशबू इतनी फेमस है कि ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड्स यहाँ से फूल एक्सपोर्ट कराते हैं और इस मार्केट से गुजरने पर आपको समझ आ जाएगा कि मदुरई सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि खुशबू का भी शहर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ।

मदुरई आज हम घूमने के लिए आए हैं। मदुरई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक साइट जो है यहाँ पर है, जो हमारे देश के इतिहास में भी है, द गांधी मेमोरियल म्यूजियम। पूरी इंडिया में ऐसे सिर्फ 5 गांधी म्यूजियम है और मदुरई का ये एक जो म्यूजियम है उनमें से ये एक है। पता देखिए, मैं आपको इसलिए बता दूं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1921 में मदुरई में ही महात्मा गांधी ने पहली बार देखा कि हमारे देश के गरीब जो है किसान कपड़ों के बिना रह रहे हैं, और उन्होंने वहीं फैसला किया कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक छोटे की देखिए जो खादी धोती है, छोटी सी खादी धोती जो है वो पहनकर गुजारेंगे। और इस म्यूज़ियम के अंदर वो ऐतिहासिक कपड़ा यानी कि ब्लड स्टेन क्लॉथ रखा हुआ है जो बापू ने अपनी आखिरी वक्त में पहना हुआ था। जब आप इस म्यूज़ियम के हॉल में घूमते हैं और आज़ादी के उन पुरानी फ़ोटोज़ और लेटर्स को आप जब देखते हैं तो आपकी आँखें नम हो जाएंगी और दिल में देशभक्ति जो है वो भाई आ जाएगी, और गुरूर होगा आपको उस देशभक्ति पर। आपको एहसास होगा कि हमारे देश ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर गांधी जी की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत कुछ है, और साथ ही यहाँ पर आपको मदुरई की मैं बात आपसे कर रही हूँ, मदुरई की बात करें तो मदुरई को लोकल बड़े प्यार से कहते हैं ठुंगा नागरम, और इसका मतलब होता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। पूरे तमिलनाडु में ये एकमात्र शहर है जहाँ रात के 2 बजे भी आपको मार्केट्स खुले मिलेंगे, सड़कों पर चहल पहल होगी और गर्म इडली या फिल्टर कॉफ़ी आपको मिल रही होगी। जब आप यहाँ रात को जाएंगे तो 1 बजे के करीब भी आपको यहाँ पर लोग आसपास खूब चलते हुए मिल जाएंगे, आसपास बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे, लोग दुकानों पर खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, ऑटो चल रहे होंगे, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो है वो चल रहे होंगे और वहाँ पर बन रहा होगा पराठा। मदुरई के लोग बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं और उनकी लाइफ में एक अलग ही जोश होता है, और ये शहर आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में भी थकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए जैसे ये शहर चलता रहता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारी बातें लेकर के आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। इसी के साथ वक्त जो है ये आपको बताने का है कि देखिए इतनी खूबसूरत ये जगह है, तो आप इस जगह पर ना सिर्फ घूमने मत आइए, यहाँ से आप जो है कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइएगा, शॉपिंग जरूर कीजिएगा। शॉपिंग तो बनती है। मीनाक्षी मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है पुट्ठू मंडपम। ये एक सदियों पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे राजा थिरुमलई नायक ने बनवाया था। इस मार्केट के अंदर जब आप घूमेंगे तो आपको दोनों तरफ लाइन से टेलर्स बैठे दिखाई देंगे जो कपड़े सिलते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है मदुरई संगुड़ी साड़ी, और ये एक खास तरह की टाई और टाई एंड डाई जो कॉटन की साड़ी होती है जो बहुत ही लाइट वेट और कलरफुल होती है। और साथ ही यहाँ बेहतरीन क्वालिटी के आपको जो ब्रास हैं यानी कि जो पीतल का काम जो है उसके दिए मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। जब आप यहाँ जाएंगे तो एक कोई भी चीज़ आप ज़रूर लेकर के आएगा तो एक यादगार चीज़ जो है वो रह जाती है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, जिसके बाद होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा में आज हमने करी बहुत सारी बातें। आज हम आए मदुरई, और मदुरई की बहुत सारी जगहों में हमने घूमा है, और एक बहुत ही सुखमय, शांति, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। मतलब शब्द कम पड़ जाए, इतनी अच्छी जगह है, यह सुकून आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप भी मदुरई जरूर जाइएगा। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात आपसे होती रहेंगी। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रागा आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक। जी हां, और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांगा आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के

आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स, जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए, आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा। आप च्युइंगम अपने पास में रखें और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है। और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको। उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है। और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे। और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है। जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए, उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें। यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है, अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए। मतलब आप ये समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं। पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मजबूत आप हो पाएंगे। और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है, आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे। और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8010781078। आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है, तो आइए इन्जॉय करते हैं उस गाने को। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।
1: में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूं बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूं. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना तो उसका चेहरा ही बता देता है कि अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसीलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें.

कि दूसरों की बातों से, राइट? तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना, तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको। और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए। तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए, और हाँ मैसेज करना ना भूलिएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में, और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से, और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे जो होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है. क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो अब मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक, वो इसी से ही जुड़ा है. अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना. और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं, तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं. लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो. हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं. जी हाँ, है ना, कितना इंटरेस्टिंग. क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं. हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना. लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा. तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके. तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए. नंबर हमारा है 8010781078. मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो ख़िलाफ़ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हों बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इन्जॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इंजॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: डूबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही। यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम चल रहा कैफे क्लासिक्स। और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को। दोस्तों अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरू इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालांकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गाने के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरू सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों बात हो गई बहुत सारे इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में।

इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी कि ये तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारी देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सर श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। हमारे शो एक मुहिम है, एक पहल है, एक इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको आपके राइट्स के बारे में एटलीस्ट बता पाएं, कानून क्या बोलता है, कानून की व्यवस्था कैसी है आपके लिए, ये देश आपको क्या क्या अधिकार देता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं सिंपल सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचा पाएं। आज वापस से लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि करंट सिनेरियो में या बीते कुछ टाइम में जो आपने चीज़ें इस देश में सुनी होंगी या देखी होंगी, महसूस करी होंगी, उसको देखते हुए ये सवाल आपके दिमाग में आए होंगे। तो आपके उन तमाम प्रश्नों को आज हम यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं। संविधान की बात करेंगे, प्रोटेस्ट की बात करेंगे, कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर दीपक बंसल। दीपक सर इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट मानववर्षण यूनिवर्सिटी। और दीपक सर क्योंकि लॉ के अध्यापक हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खुद अपनी PhD परस्यू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा या इनसे सही कोई इंसान हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर बात करने से। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे दीपक सर का। हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
4: थैंक यू सागर जी, दोबारा आपके पास आने के लिए, बहुत बहुत बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। हर बार जब आप लोगों से बात होती है, लॉ डिपार्टमेंट में किसी भी फैकल्टी से बात होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। शुरुआत करना चाहूँगा पहले प्रश्न से। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक शब्द है, लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान को, एक आम नागरिक को इसका सही मायना क्यों पता होना चाहिए?
4: सागर जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझसे। संविधान और संविधान के बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है? संविधान क्या है बेसिकली? संविधान एक ऐसा कागज़ या आप एक मान सकते हो किताब है, जो हमारे पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, काम पूरा चलता उसी के अनुसार है। उसमें जब आप देखेंगे तो शुरुआत से ही पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स डिफाइंड हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3, विच इज़ डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकारों से डील करता है। अब मौलिक अधिकारों में भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अगर किसी चीज़ में माना जाए तो एक जीवन जीने का अधिकार है, एक समानता का अधिकार है, एक बोलने का और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को रखने का अधिकार है। इसी के लिए हमने अपना पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, इसी के लिए नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सबकी यही लड़ाई थी कि हमें अपनी बात रखने का और हमें समान रखने का एक वो मिल सके। तो संविधान में वो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो निहित हैं। और मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं? मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि उनके हनन होने पर एक कोई भी भारत का नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनके इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ, उनकी जब उनका हनन किया जाए होता है सरकार के द्वारा, तो उसमें पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 32 है उसमें। तो हमारा आर्टिकल 19 जो है संविधान का, वो हमारा बेसिकली जैसे तीन जो मैंने आपको मुख्य राइट्स बताए, आर्टिकल 14 विच डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 विच डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर राइट्स, एंड आर्टिकल 21 विच डील्स विद लाइफ एंड लिबर्टी। तो इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ एंड लिबर्टी है, बट वो लाइफ किस तरीके की लाइफ होनी चाहिए? लाइफ ऐसी नहीं कि केवल जानवरों जैसी ज़िंदगी, वो लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम अपनी कोई बात भी रख सकें समाज में एक हद तक। उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलें, कहीं भी बोलें, कैसा भी बोलें, उसके कुछ नियमित पैमाने हैं। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बोला है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का, एक्सप्रेशन रखने का, अपनी स्पीच का फंडामेंटल राइट है। बट वो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट इन द सेंस आर्टिकल 19(2) उसके साथ हमें पढ़ना पड़ता है, विच प्रोवाइड सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? कि आप जब आपका मन कर रहा है कुछ भी बोलने का, जब आपका मन कर रहा है कुछ भी कहने का, कोई चित्र बनाने का, तो वो इनडिसेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, भारत की अखंडता एकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे किसी फ्रेंडली रिलेशन है जो फॉरेन स्टेट्स है उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो उसमें ऐसे 8 या 9 के करीब रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड है, जहां जहां अगर सरकार चाहे तो कोई कानून लाके आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक सकती है। विच मीन्स वॉट, इन अदर वर्ड्स आई शुड एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस, कि भाई जहां जहां आपकी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है वो प्रोवाइडेड है संविधान के द्वारा, संविधान उसके बारे में बात कर रहा है, बट वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं,
5: मतलब एज इट इज नहीं है,
4: एज इट इज एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी बोलना, हाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस इसलिए भी की गई हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो कहीं दूसरे को परेशान ना करने लगे। आपको बोलना है, अधिकार है, दैट्स फाइन एंड इनफ, बट दैट शुड नॉट इन अ वे डिफेम द अदर पर्सन, दैट शुड नॉट इन अ वे इन्फ्रिंजिंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दैट शुड नॉट you know go against the sovereignty and integrity of India. So that reasonable restrictions are being there, but predominantly jitne bhi aaj tak hamare jo samvidhan nirmata hain jab inko banaya bhi gaya tha samvidhan ke is article ko, to shuruaat mein ye reasonable restrictions zyada nahi the, bahut thode the. Jaise ek public order hai, public order kya hota hai, public order hamesha koi aisa nahi hai ki koi ek kagaz pe likh diya ki ye public order hai. Public order bahut ek tarike se subjective cheez hai. Subjective cheez matlab हो सकता है किसी पुलिस वाले के मन के अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार धारा 144 पहले होती थी सीआरपीसी की, 144 सीआरपीसी जो हम बोलते हैं, धारा 144 लग गई, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते, एसडीएम डीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगाता था उसको, वो अब 163 बीएनएसएस हो गई है क्योंकि अब हमारे यहाँ नया क्रिमिनल लॉ आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसका 163 सेक्शन है, वो डील करता है, सेम है, सेम वर्डेड है 144 और अब 163 में भी ये ऑर्डर पास किया जाता है बाय द गवर्नमेंट कि अगर हमें लग रहा है भाई कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उधम होने की संभावना है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो वहाँ आप जाके अपना धरना या अपना प्रदर्शन या अपना कुछ और ना करें, दैट इज बीइंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन दैट सेंस। तो जो सरकार है वो हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ऊपर रखने की कोशिश करेगी और जो अभिव्यक्ति है, जो नागरिक है, वो हमेशा अपनी आज़ादी को, तो एक तरीके का मतलब दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज में एक टकरावट है, और इन टकरावों को किस, फिर कोई एक जज भी होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि भाई ये सही है या ये पैमाना सही है, उसको हम जजेस के पास छोड़ते हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स पे, देन देयर आफ्टर दे विल डिसाइड कि भाई क्या सही है या किसके हद तक ऑर्डर जो पास किया गया वो सही था या किसके हद तक जो ऑर्डर पास किया गया वो गलत है। तो संविधान, मोर ओवर जो आपका प्रश्न जहाँ से शुरुआत हुई कि संविधान हमारा है क्या, तो संविधान में सारे हमारे अधिकार निहित हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी है, राज्य को भी उनकी शक्तियाँ मिलती हैं जिस तरीके से वो अपने काम को परफॉर्म करना चाहते हैं, बट नागरिक की जो राइट्स हैं उनको भी उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है।
5: बहुत सुंदर, अभी आपने एक बात बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन में अगर कुछ इमोरल हो रहा है, ठीक है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि उसको रोक सकती है,
4: मोरालिटी डिसेंसी ग्राउंड है,
5: ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कानून के हिसाब से या संविधान के हिसाब से या कोई और ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट, क्या है डेफिनेशन इस इमोरालिटी?
4: जैसे अब ये जो मोरालिटी है, मोरालिटी और डिसेंसी, जैसे कपड़े पहनना, और ये इसके 3 अलग अलग टेस्ट थे, जैसे इंडिया में भी एक कानून है इनडिसेंसी के ऊपर, अगर आप आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है, अगर कोई अभद्रता करते हैं, अब जैसे उसके भी टेस्ट हैं जो कोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किए, जैसे हिकलिन टेस्ट होता है, हिकलिन टेस्ट, HICKLIN, हिकलिन टेस्ट, एक होता था कंटेम्प्रेरी सोशल मोरालिटी टेस्ट, जैसे फ्रांस में जो कंटेम्प्रेरी मोरालिटी है वो अलग है, इंडिया में वो अलग है, जैसे फ्रांस में आप PDA करते हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ का सभ्यता, वहाँ की संस्कृति उस टाइप की है, बट यहाँ अगर आप PDA करते हो पार्क में या कहीं और, सो इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ अ न्यूसेंस बिकॉज द मोरालिटी इज समवॉट सब्जेक्टिव इन इट्स अप्रोचेस। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हम अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं और सरकार बोल रही कि आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये इनडिसेंट है, ये इमोरल है, ये आप डिफेमेशन कर रहे हो, या सरकार की जो सोवरेनिटी, भारत की अखंडता, संप्रभुता के ऊपर हमला कर रहे हो, अगर सरकार ने ये बोला तो वो उन चीज़ों से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे बारंबार किसी नागरिक की। इस मोमेंट पे उस नागरिक के पास क्या बचता है, क्योंकि नागरिक सरकार के खिलाफ तो कुछ, सरकार इतना माइटी पावरफुल, पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके पास है, नागरिक के पास कुछ नहीं है, इसलिए इस मोमेंट पे उनको ये मौलिक अधिकार मिला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और ये मौलिक इसलिए है कि अगर ये कभी इन्फ्रिंज होता है सरकार के अननेसेसरी मनमाने तरीके के ऑर्डर पास करने पे, तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट्स में 226 में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भाई जनाब ये जो आप मेरे खिलाफ जो सरकार का ऑर्डर पास किया गया है ये बिल्कुल ही गलत है, हम अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, चुपचाप पीसेबली प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो उसमें 6 राइट्स हैं नीचे। 6 में सबसे पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है फ्रीडम टू फॉर्म टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, ऐसे करके कि आप कहीं पे भी एकजुट हो सकते हैं बिना किसी हथियार बंद के, मतलब आराम से चुपचाप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सत्याग्रह करना चाहते हो तो करो, लाठी वाठी चाकू वाकू ये ना लेके जाए। लेकिन अगर सरकार को लगने लगा कि ये इसमें कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट भी आ गए आपके पीसेबली, अब ये पीसेबल मतलब वायलेंट होने वाला है या कुछ और, तो वो पब्लिक डिसऑर्डर का बहाना लगा के आपके ऊपर उसको रोक भी सकते हैं आपके स्पीच। तो कहने का मतलब ये इन दोनों के जो टसल है, क्योंकि नागरिक हमेशा ये बोलेगा कि भाई मेरा तो मैं तो चुपचाप बैठा था, जैसे आज कल का ही जो इंसिडेंट देखिए आप, जो 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ, उस 20 जुलाई के इंसिडेंट में भी पुलिस, दिल्ली पुलिस का ये कहना है या जो प्रशासन का ये कहना था कि भाई मिसक्रिएंट एलिमेंट्स आर बीइंग देयर इन द प्रोटेस्ट इन दैट सेंस, एंड द प्रोटेस्टर्स वर सेइंग कि हम तो अपना पीसफुल मार्च कर रहे थे। तो यही एक मतलब एक तरीके का टसल है बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस। पुलिस नेसेसरी जो जो मतलब कह सकते हैं एक बल का या किसी और तरीके का जो रीजनेबल फोर्स दे कैन यूज अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, सो दैट और लोगों का डिसऑर्डर क्रिएट ना हो समाज में और लोगों को कोई परेशानी ना हो इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ ऐसी परिस्थितियों में ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है हमें, और इसका बेस्ट वे ये है कि जजेस को और अपना व्यू पॉइंट रखते हुए देन दे हैव टू यू नो डिसाइड दीज केसेस की सरकार की गलती है या कहाँ किसी आदमी की गलती है। इस पर हम एक दो जजमेंट्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी इनके बारे में, जो बहुत बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं जिनके हमें जानना जरूरी है।
5: फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बहुत रोचक टॉपिक है, मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा ऐसी आशा करता हूँ। नहीं आ रहा है तो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइट्स की बात हो रही है, केवल यहाँ पर मेरा व्यू या किसी और इंसान का व्यू नहीं चल रहा है, यहाँ पर प्रॉपर राइट्स की बात हो रही है, एग्जैक्टली जो चीज़ें मायने रखती हैं हमारे संविधान के हिसाब से। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि अभी वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल गो फील Life.

0: भाई पसंद आई होगी। हमारे साथ है मिस्टर दीपक बंसल और यहाँ पर हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है, लेकिन आपके हिसाब से एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, फॉर एग्जांपल एक इंसान है मेरे जैसा जो वोकल है थोड़ा सा, जो अगर गलत को आवाज़ देना चाहता है या चीज़ों के लिए बहुत वोकल है, जागरूक रहता है, अपने आसपास करंट अफेयर्स में बहुत अप टू डेट रहता है, मेरे जैसे लोगों को क्या क्या राइट्स हैं जो पता होने चाहिए, नॉन नेगोशिएबल, संविधान देता है हमें?
1: ये सचमुच में बहुत आपका बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और मैं चाहता था ये चीज़ बोलना एट द एंड ऑफ आवर शो, बट ये जो मौलिक अधिकार हैं आपके सारे, इनको हम ब्रॉड कैटेगराइज करते हैं 6 हिस्सों में। ये सारे हमारे बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट हैं और इसमें भी जब हमने अपनी बात शुरू करी तो 3 जो मुख्य फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज़ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार, बोलने का अधिकार और सारी फ्रीडम्स जो हमारी 19 में मेंशन है, अभी मैं बता भी दूंगा आपको जो 19 में सारी हैं, और 21 का जीवन जीने का अधिकार और आज़ादी से जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी। क्योंकि हमारा प्रीएम्बल भी इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बहुत बात करता है, जो संविधान की सबसे पहली, प्रीएम्बल मींस द प्रस्तुति जिसको हम कह सकते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कॉन्स्टिट्यूट, जो पूरा संविधान की प्रतिलिपि है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इन 4 गोल्स को बहुत महत्वता दी गई है कि इन 4 चीज़ों पर बहुत नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, एवरी सिटीजन मस्ट बी नोइंग इट। क्योंकि हमारी पूरा, आप समझिए, जैसे सागर जी, ये थोड़ा विरोधाभास होगा और एज अ संविधान के अध्यापक की नज़र से मतलब गलत होगा कहना, बट हमारा संविधान ना एक तरीके से बैग ऑफ बोरोइंग्स है। हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे दूसरे देशों से अच्छी अच्छी ले ली हैं अपने संविधान में। और जो एक अंग्रेज़ों का संविधान था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको हम कहते हैं, उसमें और हमारे आज के संविधान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए सिस्टम बना रखा था 1935 वाला, उससे हम बहुत सारा मिलता जुलता है। उसमें एक ही चीज़ बहुत अलग है, दैट इज़ पार्ट 3, जो समवट फंडामेंटल राइट से जो डील करता है पूरा पार्ट। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर समथिंग डिफरेंट एंड दैट टू द 1935 एक्ट, राइट? तो ये चीज़ के लिए ही एक तरीके से आप समझिए कि हमारा पूरा जो आज़ादी की लड़ाई थी इसी के ऊपर थी, बोलना, अपनी बातें रखना, क्योंकि हम बराबर नहीं थे अंग्रेज़ों के। दैट वॉज आर ओनली डिमांड कि जो राइट एक ब्रिटिश सिटीजन को मिलते हैं इंग्लैंड में, हम भी आपके, आप हमारे रैया मान रहे हो हमें अपनी, मतलब एक तरीके के हम भी आप हमारे ऊपर रूल कर रहा है ब्रिटिश क्राउन, तो हमें भी वही सारे राइट्स दो दैट वर नॉट बीइंग अवेलेबल टू अस बिफोर द इंडिपेंडेंस। सो ये हमारी पूरी बुनियादी लड़ाई थी इन हकों को मांगने की। नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल 19, क्योंकि 14 और 21 पूरा ही एक अलग से शो भी बन सकता है इनके ऊपर, इक्वालिटी के राइट के ऊपर, बट 19 जो राइट है ये हमें एक तरीके से, आप इसको चेरिश करते हो, जो आप सारे जितने भी आपके राइट्स हैं, जैसे 19(1) मैंने आपको बताई दिया, 1A जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, 19(1B) जो है वो डील करता है आपका टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, 3rd आपका डील करता है टू फॉर्म associations, जो आप associations बनाते हो, cooperative societies and the associations which is being, that is also a fundamental right, कि आप अपने कोई group बनाना चाहते हो मिलके, डूटा, Delhi University Teacher Association, students union बनती हैं या ये संगठन बन जाए, CJP बन गया, कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसका फंडामेंटल राइट है, एवरी सिटीजन इज हैविंग दिस राइट। देन द 4th वन इज राइट टू मूव इन एनी वे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ भारत में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरा मन कर रहा है नागालैंड जाने का, मेरा मन कर रहा है पांडिचेरी जाने का, तो आई डू हैव द फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(d) टू रोम अराउंड एनीवेयर। देन देर इज वन आर्टिकल 19(1)(e) ऑल्सो स्टेट्स की मेरा मन कर रहा है कहीं और सेटल होने का, भारत में ही कहीं पे भी, हमें रहने वाला था ग्वालियर का, फरीदाबाद में आके सेटल हो गया, मेरा मन करे बैंगलोर जाके सेटल होने का, सो आई कैन डू this settlement as well, I can do and can work anywhere as well. And last one is 19(1)(g) जिसको हम बोलते हैं टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जहाँ आपकी मर्जी है, जो आपको प्रोफेशन चूज करना है, ऑक्यूपेशन, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको इसमें नॉन नेगोशिएबल है, मेरा मन कर रहा है डॉक्टर बनने का तो मैं बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता कि ये ही केवल बनेगा या ये नहीं बन सकता, आरजे बनने का मन है तो मैं बन सकता हूँ, सो दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। What important over here is the discussion which we are having us on this point is कि जो आपके मौलिक अधिकारों में भी जो सबसे important मौलिक अधिकार हैं, बोलने का अधिकार, ये बोलने का जो अधिकार हैं, इस पे किसी भी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, एक ये पक्ष है लोगों का। मैं हम देखिए हम यहाँ पे जब बैठे हैं तो हम अपनी ओपिनियंस ना बताते हुए जो कानून के जो ओपिनियन है उसको बताएंगे। मेरी ओपिनियन और आपकी ओपिनियन से देश नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन के ओपिनियन से चलता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जी आप अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन करिए एक्सरसाइज, असेंबल चुपचाप होइए, कोई लाठी वाठी रखे नहीं, कोई कट्टा बारूद ये सब रखे नहीं, पिस्तौल वगैरह। बट इसके साथ साथ जो सरकार आपके ऊपर कोई जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मीन्स आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन नहीं। आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन होता है कि मेरा मन कर गया इस लाइन के आगे नहीं जा सकते, मेरा मन कर गया जंतर मंतर पे ही रहोगे, इसके आगे नहीं जा सकते। वो चीजों के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू है तो सरकार अपने मतलब जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करती है फ्रीडम्स के ऊपर, तो उसमें उनको रीजनेबल होना जरूरी है। यस एस कोर्ट के जजमेंट्स में भी है, जैसे एक केस है, आपने दो इंस्टांसेस में लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक केस है अमित कुमार का करके, अमित कुमार वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का 2020 का, जो शाहीन बाग का जजमेंट था। उसमें यह था कि जैसे शाहीन बाग की जो रोड है मेन रोड, उसको ऑब्स्ट्रक कर दिया गया था बाय द प्रोटेस्टर्स एट दैट टाइम, जब OCA NRC का प्रोटेस्ट हुआ था। दैट वॉज ऑल्सो पीसफुल प्रोटेस्ट हैपनिंग एट दैट टाइम। बट जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट से एक पब्लिक जो रोड है दैट वॉज बींग डिसरप्टेड। तो उसमें कोर्ट ने एक पॉइंट दिया अपने ऑब्जर्वेशन में जजेस ने कि देखिए आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको करिए, लेकिन आप पब्लिक रोड को मत डिसरप्ट करिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, बहुत लोग लेट पहुंचते हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में भी होती है और लोगों के ट्रेड ऑक्यूपेशन में भी हो रही है, मूवमेंट में भी हो रही है। तो आपको डेजिग्नेटेड प्लेस अगर सरकार एक कोई दे दे तो वहां पे आप अपना प्रदर्शन करिए, जैसे रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए प्रोटेस्ट। अगर उसमें भी सरकार आपसे मना कर रही है कि हम यहाँ परमिशन नहीं देंगे, आपको करने ही नहीं देंगे एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, तो ये गलत चीज है बाय द गवर्नमेंट एट सच। बट जो पब्लिक प्लेसेज हैं यू शुड अवॉइड गोइंग एट दैट प्लेस। ये पहला केस था। एक केस है अनुराधा भसीन का, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2020 का ही, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें क्या बोला गया है कि जैसे आपने एक चीज़ नई चीज़ देखी होगी जो कल भी हुई, 20 तारीख को भी हुई प्रदर्शन के दौरान, इंटरनेट शटडाउन हुआ सेंट्रल दिल्ली में, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया एक फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 AM अराउंड 10 AM, जब वो प्रोटेस्ट एकदम शुरुआत होने लग गई थी उसके बूमिंग की, और 10 बजे से 3-4-5 बजे तक के लिए उन्होंने विदाउट इवन गिविंग एनी प्रायर नोटिस उसको पैन को इशू कर दिया। अब आप एक बात सोचिए, हर व्यक्ति कोई टेम्पलेट या पोस्ट कार्ड लेकर तो घूम नहीं रहा, दे आर नाउ द मीडियम इज द सोशल मीडिया। उस मीडियम को यूज करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? अगर वो इंटरनेट हमारा रुक जाएगा तो हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब वो उस मीडियम को ही उन्होंने रोक दिया तो एक तरीके से इसको भी माना जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। उस रिस्ट्रिक्शन के लिए भी अनुराधा भसीन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि भाई जब कभी भी सरकार को रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ऐसा इंटरनेट शटडाउन करना है या रोकना है, तो उसके लिए पहले होम सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, होम सेक्रेटरी मतलब गृह सचिव, राज्य का भी या केंद्र का, तो दिल्ली तो केंद्र के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, तो उन्होंने कहा केंद्र के गृह सचिव के द्वारा एक ऑर्डर पास होना चाहिए और वो भी पब्लिश्ड होना चाहिए ऑर्डर सब जगह पहले कि हम इतने बजे से इतने बजे तक इसको बंद रखेंगे इंटरनेट को। एकदम से चुपचाप से नहीं कर देना चाहिए सरकार को, बट सरकार पब्लिक इमरजेंसी में इसको कर देती है ग्राउंड बना के। एक टेलीग्राफ एक्ट है हमारा सेक्शन 20, उसमें क्या है कि पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे सरकार चाहे तो एब्रप्टली भी कर सकती है, एक मिनट का बिना नोटिस दिए भी कर सकती है, विच इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। तो कहने की बात यह है कि रेस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको बोला रेस्ट्रिक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, जैसे उन्होंने बोला हम मार्च करेंगे संसद मार्च तक, तो उन्होंने बोला नहीं जी आप संसद तक नहीं मार्च कर सकते, डेजिग्नेटेड प्लेस यही है आपके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, जंतर मंतर, दैट्स इट, इसके अलावा आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो वो जो और लोगों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो बींग डिसरप्टेड। तो पुलिस के हिसाब से भी, और जो प्रदर्शनकारी कह रहे कि हम मार्च करेंगे क्योंकि आप हमारी सुन नहीं रहे, संसद का सत्र चलने वाला है, सो दैट इज ऑल्सो बींग अ पॉइंट कि जब कभी भी सरकार, मेनी अ टाइम्स हमने देखा है पहले के भी केसेस में और आज भी, कि सरकार मीडियम्स पे ज्यादा रोक लगाती है, जैसे मीडियम मीन जैसे इंटरनेट इज अ मीडियम, सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करेगी, आपके अकाउंट ब्लॉक कर देगी, सोशल मीडिया इज़ वेरी बूमिंग राइट नाउ बिकॉज हम देख रहे हैं द प्रेजेंट डे सिनेरियोज हैपनिंग. लोग उनसे ज़्यादा एम्बेडेड जर्नलिस्ट से ज़्यादा विश्वास करते हैं ऑन टू द सोशल मीडिया एंड द सोशल मीडिया हैंडल्स आर दिस कॉकरोच जेंडर पार्टी इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया मूवमेंट विच हैपन. सो द पॉइंट इज ओवर हेयर कि सरकार मेनी टाइम्स विल बी इन अ पोजिशन और ट्राई टू यू नो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडियम इन इटसेल्फ लाइक द इंटरनेट or their or on their speech and expression in any other form in the physical forms as well in that sense which is happening here as well in that sense.
0: तो आपने सोशल मीडिया की जो बात बोली, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया पे भी जो मैं बोलता हूँ क्या वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आएगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा अधिकार है ट्वीट करने का, सब चीज़ लिखने का. एक हमारा जजमेंट और है, वो बहुत फेमस जजमेंट है, कोई भी वकील अगर इसको सुन रहा होगा तो श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है 2015 का. उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था. पहले उसमें क्या होता था कि सरकार IT एक्ट का एक प्रोविजन है धारा 66A, वो बोलती थी कि अगर आपने कुछ भी ऐसा लिखा इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो थोड़ा सा भी ऐसा लगा जिससे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होने वाला है, तो आप पे FIR दर्ज होती थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यू विल बी बिहाइंड बार्स इन दैट सेंस. बट उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बड़ा गलत प्रोविजन है भाई, कोई आदमी अपनी कोई बात ही नहीं रख पाएगा ऐसे इंटरनेट पे, क्योंकि अब हमारे पास मीडियम क्या है, सोशल मीडिया है. जैसे मुझे भी अगर कुछ चीज़ आपको अपनी ओपिनियन शेयर करनी है तो आप कहाँ करोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल तो हमें लिखने नहीं देगा. सो द बेस्ट वे मैकेनिज्म अवेलेबल विद अस इज द सोशल मीडिया ऑन विच वी कैन शेयर आवर व्यूज एंड ओपिनियंस. दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली. बट इफ गवर्नमेंट ट्राई टू you know impose unreasonable restriction on that account in itself or on that social media platform, then that is considered to be infringement of your right, and then you can seek the help of court as well in that sense.
0: All right, so amazing. तो भैया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, अपनी बात खुल करके रखिए, आपको पूरा अधिकार देता है, आपको संविधान देता है, और अगर बीच में कोई आपको बोलता है तो आपको ये बात जरूर कहनी है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में पता है, तो कृपया करके मुझे ना बताएं, कोर्ट में मुलाकात होगी. फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आके बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ.

0: जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है इस कन्वर्सेशन में, आई एम जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है इस म्यूजिकल वाइब के साथ, आई एम जस्ट होपिंग आपको कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर इस शो में। आइए शो को आगे लेकर चलते हैं। दीपक सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारी नॉलेज अपने साथ रखते हैं और बहुत सिंपल शब्दों में हमें हमारे जितने भी कन्फ्यूजन, डाउट्स और प्रश्न हैं उनको एड्रेस करके यहाँ पर दे रहे हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं थोड़ा सा डिफेमेशन की बात करना चाहूँगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये टर्म मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बार बोली गई है डिफेमेशन, और बहुत कम इसको समझाया गया है, बहुत कम इसको समझा गया है। क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं डिफेमेशन में जो मैं कहूँगा, अगर मेरी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो रही है फॉर एग्जांपल E20 पेट्रोल डलवा करके, तो मेरे पास फैक्ट है इसका, मैं लाइव एविडेंस आपको दिखा रहा हूँ कि ये हो रहा है, तो क्या इसको डिफेमेशन में डाला जा सकता है?
1: देखिए एक ज़्यादा अच्छा शब्द होगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन पे भी हम आपको मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, बट एक होती कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, एक होती डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है कि आप अपना पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने पेट्रोल का एग्जांपल दिया जो हम बहुत देख रहे हैं आजकल, E20, E50 जाने कौन सा। तो इन सारे सिनेरियोज में भी अगर मैं सरकार की किसी पॉलिसी का एज अ नागरिक, क्योंकि उनकी पॉलिसी से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, उन्होंने ये बना दिया बिना मेरी राय लिए, मशवरा लिए, क्योंकि यूजुअली कोई भी कानून बनता है या कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसका एक नियम है जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं कि आपको पहले उस पर राय मशवरा लेना चाहिए जनरल पब्लिक का, उनके जाए राय मशवरे लेने के बाद आपको अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, आपको मतलब सरकार को, दैट इज़ देयर ड्यूटी। हियर इन दीज सर्कमस्टांसिस वॉट इज़ हैपनिंग विद दिस E20 एंड E10 जो हमारा हो रहा है, पहले E10 पॉलिसी थी देन E20, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति का कोई क्रिटिसिज्म है तो उसको बैश ऑन करके या मतलब ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके, बिकॉज देखिए एक नॉर्मल आदमी मेरे जैसा आपके जैसा, हमारी हैसियत नहीं है सरकार से लड़ने की, सच बात मैं बता रहा हूँ आपको। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद द गवर्नमेंट, यू कैन फाइट विद एनी वन हियर इन इंडिया बट यू कैन नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट, ये बहुत मुश्किल लड़ाई है। जैसे आपको बोलते हैं जैसे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी मतलब माना क्यों जाता है उनको, या क्या उनको ऐसा क्या दिया कहा था उन्होंने जिसके लिए उनको वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय हैं वो व्यक्ति या सम्माननीय है वो व्यक्ति, इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 32 जो मैंने आपको बोला, 32 क्या बोलता है, 32 हार्ट एंड सोल की तरह है संविधान के, आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाता हूँ देन यू विल अंडरस्टैंड इट। आपने एक ओपिनियन रखी, मिनिस्टर ने या कोई एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अपनी एक पॉलिसी निकाल दी, उसके खिलाफ आपने अपनी क्रिटिसिज्म रखी, नाउ दे आर यूजिंग द ब्रूट फोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू यू, स्टेटिंग कि भाई तुमने जो जो बोला उससे हमारी मान हानि हुई, तुमने जो जो बोला उससे पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, तुमने जो बोला उससे संप्रभुता खतरे में आ गई, एंटी नेशनल हो गए तुम, कोट अनकोट, राइट। अब इस परिस्थिति में मेरे पास क्या बचता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार जो कर रहा है वो कर रही है जो मेरे खिलाफ वो गलत चीज़ है, एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट दे आर अनरीजनेबल, कंसिडर टू बी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे रेस्क्यू में आना चाहिए हाई कोर्ट को, मेरे रेस्क्यू में आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट जो है भारत में वो सरकार के अधीन नहीं है, लग सकते हैं कई लोगों को बट दे आर नॉट, दे आर इंडिपेंडेंट द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तभी जैसे आप कल देखो आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनका बहुत अच्छा जजमेंट आया है, अभी अभी एक उन्होंने ऑर्डर पास किया है, अभी 2-3 घंटे पहले मैंने उनका देखा था, जस्टिस अभय नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अभय पता नहीं आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उन्होंने एक बात कही है कि सरकार का विरोध करना या सरकार के खिलाफ आप अपनी क्रिटिसिज्म भी रख रहे हो, या आप बोल रहे हो कि भाई किसी एक पार्टी को कि भाई फॉल बैक, या आपको मुर्दाबाद के आप बोल भी दिया कि आपने किसी पार्टी को एक्स वाई जेड, आई एम नॉट गोना नेम देम, तो वो क्या किसी तरीके से मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति की जवाब आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर आप सरकार इस तरीके से प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकती कि तुमको एंटी नेशनल कर दे, तुम पे NSA लगा दे या तुम पे कुछ और मुकदमे फाइल कर दे, क्योंकि जब वो मुकदमे फाइल करेगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा उनसे लड़ने के लिए, इजंट इट। तो इधर उन्होंने भी कहा जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, कि देखिए सरकार को भी मतलब पेरेंट की तरह बिहेव करना चाहिए अपने सिटीजन्स के साथ, वो सिटीजन से ही सरकार बनी है, उस सिटीजन के खिलाफ अगर आप जाओगे देन आप बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऑल दो हमारे पास मौका आता है 5 साल बाद वोट डालने का, बट उन 5 साल के बीच में भी आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे नागरिकों के विरुद्ध ही आप चले जाओ इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट. मुझे मौका मिलेगा चुनाव में वोट डालने का, तब मैं अकाउंटेबिलिटी दिखाऊंगा. दैट मेनी ऑफ द पीपल आर सेइंग सो एज वेल, दे आर, बिकॉज इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल. वो चिल्लाते नहीं है, वो चुप रहते हैं. जब वो वोट डालने जाएगा देन ही विल से इट लाउडली कि मैंने क्या किया है, वो उसका वोट बता देगा. बट उसके बीच में भी आपकी बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी बनती है. यू नीड टू टेक एक्शंस अगेंस्ट दोज मिनिस्टर्स, अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स एज वेल, जो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किसी की स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि इसको रोकने का मतलब यही है कि कहीं से भी आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. जैसे एक एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, भारत में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट शटडाउन होता है. हम प्रेस अभिव्यक्ति में सबसे पीछे हैं, बहुत पीछे, पाकिस्तान वगैरह और देशों से भी बहुत पीछे, 140 इसके आसपास हमारी रैंक है. इसका रीजन क्या है? इट शोज दैट आर डेमोक्रेसी इज नॉट फंक्शनिंग वेल इन अ वे इन दैट सेंस, राइट? बिकॉज डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि केवल चुनाव डाल देना. डेमोक्रेसी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी भी होना. डेमोक्रेसी का मतलब है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट्स को प्रिवेल होने देना. क्योंकि जब ज्यादा बातचीत होगी तभी व्यूज आएंगे, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी, एंड द पीपल आर टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल इनफ टू हैव टू कास्ट देयर वोट्स एज वेल इन द लॉन्ग रन इन दैट सेंस, राइट? तो ये चीज हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, कि भाई आपको बैलेंस स्ट्रकआउट करें, ज्यादा विचार एंड विमर्श करें पब्लिक के साथ भी एंड देन इन दैट सेंस. और ये जो कानूनों का जो इस्तेमाल करते हैं डिफेमेशन का, अपनी क्रिटिसिज्म को हेल्दी क्रिटिसिज्म लेना चाहिए. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, और मैं पढ़ाता रहा हूँ, कुछ तो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, और मैं उसकी जो क्रिटिसिज्म आ रही है उसको गलत तरीके से ले रहा हूँ. गलत एक तरीका ये है कि मैं उन जो क्रिटिसिज्म आ रही है उनको एब्जॉर्ब करूँ, फिर अपने पढ़ाने के तरीके को सुधारूँ आगे आने वाले क्लासेस में. एक तरीका ये है कि मैं उनसे लड़ाई लड़ूं, तो लड़ाई लड़ने का कोई पर्पस नहीं होगा. अगर मैं अपने आप को उनकी जो बातें भी आ रही हैं क्लास में बच्चों की उनको सुनूंगा, देन अपने तरीकों को चेंज करूंगा, देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द नेशन एज वेल, फॉर द क्लासरूम एज वेल. दैट इज वॉट आई फील इज मिसिंग, दैट इज माई ओपिनियन दैट इट इज मिसिंग राइट नाउ इन द सिस्टम एज वेल. दैट शुड नॉट हैपन. वो डिस्कोर्स होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए. जो कोई बोल भी रहा है कि सर मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो उस पर डेफेमेशन मत लगाओ. बिकॉज डेफेमेशन इज समथिंग, जैसे डेफेमेशन आपने पूछा, इन जस्ट टू लाइन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. डेफेमेशन बहुत ओल्ड ब्रिटिश लॉ है. उसकी दो रेमेडीज होती हैं, एक सिविल रेमेडी, एक क्रिमिनल रेमेडी. एक तो आप मुकदमा भी दर्ज करा सकते हो उस पर, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि आपकी जो रेपुटेशन है उसको इंजरी अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक योर प्रॉपर्टी एंड योर बॉडी, तो उस पर आप अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं. पहले आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है, ठीक है? उसमें आप अगर डिफेमेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करते हैं किसी के खिलाफ, तो उसमें आप उसको जेल भेजने की कोशिश ज़्यादा करते हैं. दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज. दूसरा है एक सिविल डिफेमेशन. सिविल डिफेमेशन जैसे आपने सुना होगा, 100 करोड़ रुपए का मां नानी का मुकदमा दायर कर दूंगा, 80 करोड़ का कर दूंगा. अरुण जेटली ने जैसे केजरीवाल पे किया था, 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरविंद, जो अरुण जेटली साहब थे, जो लेट अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने इन पे किया था अरविंद केजरीवाल पे. तो जब इन्होंने इन पे एक मुकदमा किया, तो उसमें केजरीवाल का ट्रायल, मतलब अरुण जेटली का ट्रायल भी हुआ. दैट ट्रायल वॉज बींग कंडक्टेड बाय राम जेठमलानी एट दैट टाइम, बहुत सीनियर एडवोकेट थे. केजरीवाल ने उनको हायर किया था जेठमलानी को, तो वो विटनेस बॉक्स में था जेटली. वो एक बहुत फैसिनेटिंग सीन था, पुराने 1817-18 की बात है. देन देयर आफ्टर बाद में जब उनको लगा कि इसमें कुछ होना नहीं है, मुकदमे में आगे, तो केजरीवाल ने सॉरी बोल दिया था कोर्ट में. बिकॉज अपॉलोजी इज वन ऑफ द वे ऑफ यू नो सेइंग कि भाई कोई नहीं, अब मैटर सॉल्व करो. कोर्ट भी इसको अलाउ कर देता है इफ यू प्लीड फर्दर. बट डेफेमेशन से बचने के तरीके हैं. जैसे डेफेमेशन कब नहीं माना जाएगा? डेफेमेशन तब नहीं माना जाता जब आप कोई सच्चाई बोल रहे हो, कोई ट्रुथ आप स्पीक कर रहे हो. इन द सेंस, जैसे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाला, उस पेट्रोल से ही मेरी गाड़ी खराब हुई, एंड इफ आई एम सेइंग इसमें एथेनॉल मिक्स था, इसकी वजह से हो रहा है. और मैं तो एक लेमैन हूं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो जानता है गाड़ियों के बारे में, ही सेइंग दिस फैक्ट, और मेरी गाड़ी खराब हुई है, तो अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो आप मेरे ऊपर डिफेमेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज आई एम स्टेटिंग द ट्रूथ इन दैट सेंस, राइट? ट्रूथ इज अ डिफेंस ऑफ डिफेमेशन. कोई आदमी चोर है, मैं उसको चोर बोल रहा हूं, तो उसमें मैं डेफेमेशन नहीं कर रहा, दैट इज अ रियलिटी इन दैट सेंस, राइट? यू कैन नॉट से दैट भाई. और जैसे गडकरी जी पे कई लोग बोल रहे थे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, या कोई और पे भी कई लोग बोलते हैं इन दैट सेंस, या कई और किसी मिनिस्टर पे भी बोलते हैं कि आपने, आपके बेटों की चल रही है, शुगर मिल्स चल रही हैं, ऑल दिस विच इज बींग देयर. तो वो एक ट्रू फैक्ट है. यू कैन नॉट मतलब से कि भाई तेरे पे डेफेमेशन लगा दूंगा. सो एज टू कर्ब इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एक तरीका है डरा देने का दूसरे वाले आदमी को, बट इसमें डरना नहीं चाहिए आदमी को. मतलब इन दैट सेंस ऑल्सो, बिकॉज डेफेमेशन प्रूव करना भी मुश्किल है. आप जब आप ये कोई इससे एक और भी चीज निकल के आती है कि जब भी आप कोई चीज बोल रहे हो अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, तो उसको बैक करो किसी सत्य से, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है. जैसे मैं कभी भी कोई रील शेयर करता हूँ तो कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा, देन ओनली आई विल शेयर इट, अदरवाइज आई वोंट शेयर इट. क्योंकि ये भी शो करता है कि भाई आपको पता नहीं था, देन यू आर सेइंग मिसकोटिंग सम अदर थिंग एज वेल रिगार्डिंग द अदर पर्सन, दैट मे टेंटामाउंट टू डेफेमेशन इन दैट सेंस, राइट.
0: ओके, ये बहुत सुंदर बात आपने बोली, आप रील शेयर करते हो, फैक्चुअली वो करेक्ट होती तो आप उसको शेयर करते हो. व्हाट इफ समवन इज शेयरिंग एंड देयर इज नो फैक्ट दैट इज बैकिंग इट, क्या वो इल्लीगल हो जाता है?
1: हाँ, वो एक तरीके से कंसिडर किया जाता है कानून की निगाह में. जैसे आजकल आप जानते हो ये जो डीप फेक वीडियोज, इंटरनेट एआई के थ्रू दे आर क्रिएटिंग वीडियोज, अब उसमें कुछ भी उल्टा सीधा आपने बना लिया. जैसे कल का ही एक इंसिडेंट का, परसों के इंसिडेंट का था कि नसीरुद्दीन शाह है जो फेमस एक्टर हैं, नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने उसको प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया, जबकि नसीरुद्दीन शाह अपने घर पे बैठे वो उनका किसी एक थिएटर का वो था सीन, तो उन्होंने उसकी क्लिप लगा के बोल दिया कि दैट सीजेपी के प्रोटेस्ट को ही इज ज्वाइनिंग, तो कई लोग उसको रीशेयर कर रहे हैं. सो दिस इज इन अ वे कंसिडर्ड. अब अगर नसीरुद्दीन शाह चाहें अगेंस्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल्स की, मैं तो था नहीं उसमें प्रोटेस्ट में, ना मैं कुछ कर रहा था, आप मेरा नाम क्यों उछाल रहे हो, इन दैट सेंस. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सेइंग कि ये गलत चीज स्प्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक जैसे द सोशल मीडिया इज जस्ट एन एम्पलीफायर, इट स्प्रेड्स द लाई एज वेल और द ट्रूथ एज वेल, दोनों को बढ़ाता है ये, इसका काम यही है. तो जो सच है अगर वो चीज समझ में आए, सब लोगों को दिखे, देन इट इज परफेक्टली फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर कोई झूठ है तो उस झूठ पे तो फिर आपके ऊपर मुकदमा, फिर आपको फिर तभी रीजनेबली यू हैव टू चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. ऐसा नहीं कि किसी के बारे में भी आपने कुछ भी गलत बोल दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, एंड देन यू कैन से नहीं नहीं ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, ये नहीं है, सॉरी टू से. बट वहां आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी रुकेगी, क्योंकि आपका आपकी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है वो दूसरे व्यक्ति का भी है. अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, राइट, दैट इज द बैलेंस विच यू नीड टू स्ट्रक इन ऑफ इन दैट सेंस.
0: सो अमेजिंग. हालांकि प्रश्न मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन समय की हमारे पास एक सीमा है, तो इसलिए अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा. कंक्लूड करते हुए मुझे इतना समझ में आया मोटा मोटा कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, और कोई इंसान सामने से आए हुए भारी भरकम शब्द का प्रयोग करता है, हमें लगता है कि अरे बाप रे ये क्या कर दिया हमने, एक सहमा सा माहौल बन जाता है. वो ना बने इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने अधिकारों को पहले तो जाने पहचाने कि आपके अधिकार क्या हैं, कानून क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है. दैट इज रियली रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सलाह दूंगा आप सभी को, एक बार अपने जीवन में संविधान जरूर पढ़िएगा. संविधान इस देश का, इस आज़ाद भारत का एक मूलभूत आप कह सकते हैं कि सोर्स है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है. आप ये कह सकते हैं कि एक अधिकार जो आपको मिलता है नागरिक होने का, या जो प्राउडली आप बात बोल पाते हैं कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, तो वो जो इंडिया आप जो टर्म यूज़ कर रहे हो वो आपको संविधान में उसका सही से एक जवाब मिलेगा कि क्यों आप इंडियन हो एंड क्या क्या अधिकार हैं आपके इंडियन होने के साथ साथ. ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये ज़रूर करने की कोशिश करिएगा कभी मौका मिले तो. बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर.
1: थैंक यू सर सागर सर, आपने मुझे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दिया दोबारा से. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड कोई भी अगर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा हमारे जितने भी श्रोतागण हैं कि मानव रचना यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ में देर इज़ दिस लीगल एड सेल, जहाँ पे हम इस टाइप का अगर कोई आपका इशू भी है देन वी आर डीलिंग विद दैट एज वेल. तो अगर आपको भी कोई और गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं एंड टू सी आर लीगल एड सेल एज वेल, इट इज़ फंक्शनिंग वेल.
0: यूनिवर्सिटी में
1: स्कूल ऑफ लॉ जी ब्लॉक में चलता है,
0: जी ब्लॉक में चलता है, हर रोज चलता है.
1: हाँ जी जी, हफ्ते में एक दिन एडवोकेट भी आते हैं उसमें, सो इट इज बीइंग देयर. और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वी आर हियर एज वेल. सो
0: बहुत उम्दा. तो सर ने भी बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई केस करने की धमकी दे रहा है, कोई केस कर चुका है आपके ऊपर, तो यहाँ पर लीगल एड में आप आ सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि हमारे इतने काबिल प्रोफेसर, सारे अध्यापक जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एडवोकेट्स भी आते हैं. सो डेफिनेटली मानव रचना यूनिवर्सिटी जी ब्लॉक. फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहाँ पर खत्म करने का. आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा. आज के शो से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी. संविधान के बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है. हालांकि संविधान इतना छोटा शब्द नहीं है कि मैं एक शो में इसको समअप कर सकूँ. बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट कोशिश करेंगे लेयर बाय लेयर हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेकर के चलें. फिलहाल अपने शो को यहाँ पर विश्राम देना होगा। नाउ दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग ले एक वादा। अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूं। सशक्त महिलाओं से मिलवाने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं की कहानियां सुनाती हूं जिन्होंने सशक्तिकरण का मार्ग चुना है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नुपुर माथुर। डॉक्टर नुपुर माथुर एक MBBS डॉक्टर हैं और सेवा की राह पर इस तरीके से चल रही हैं कि क्या कहने। ना सिर्फ ये जो गरीब लोग होते हैं या हमें कहना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उनके लिए सलाह लेकर जाती हैं, एडवाइस लेकर जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस लेकर जाती हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें सेहत का एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा देने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: हाँ, नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा विशेष है नहीं मुझमें जितना आपने बताया है, बट स्टिल आई थिंक।
0: तो डॉक्टर नुपुर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं?
1: हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण शायद हर व्यक्ति सोच में एक अलग अर्थ रखता है, और जैसा कि हम सोचते हैं, एक आम आदमी ये सोचता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ पैसे से रिलेटेड है या महिला काम कर रही है या नौकरी कर रही है उससे रिलेटेड है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। सशक्तिकरण से अगर आप वैसे अर्थ ले तो महिला शक्ति, देखिए शक्ति तो महिला में होती है, नारी शक्ति का हमारे में तो हमेशा से रहा है, तो उस शक्ति को थोड़ा सा एक सही अर्थ देने को शायद सशक्तिकरण कहा जा सकता है। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह पर स्त्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, तो सशक्तिकरण इस माध्यम से हम देखें तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक स्वयं की जो भावना है जो नारी में होनी चाहिए, उस भावना को लेकर कुछ भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए जो भी कार्य वो करना चाहे उसको हम नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं।
0: हालांकि
1: हाँ, एक बड़े तौर पर देखा जाए अगर किसी देश के लिए या विश्व के लिए तो यही देखा जा सकता है कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कमा सकती हैं। पर अगर इंडिविजुअल अप्रोच देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही रिलेट किया जाना चाहिए।
0: वाकई बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नुपुर आपने। और मैं ये कहती हूँ महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिए वो आजादी है जिससे वो अपना जीवन जी सकती हैं, क्योंकि परेशानी है कि महिलाएं अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबे समय तक बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती रहती हैं। दोस्तों, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर से। डॉक्टर नुपुर की वैसे तो पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन पर्सनल प्रैक्टिस में ये इतनी सारी महिलाओं की मदद करती हैं कि क्या कहने। भाई मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि महिलाएं जो है ना वो अपनी बीमारियों को छुपाती रहती हैं, और जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं होता ना वो बाहर डॉक्टर के पास तो जाती ही नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर नुपुर हैं, आई एम श्योर इस बात से तो वो बिल्कुल अग्री करती हैं। डॉक्टर नुपुर मुझे बताइए ना कि आज के टाइम की महिलाओं का क्या खास चैलेंज है।
1: हाँ, ये बात आपने सही कही है कि महिलाएं नहीं आती हैं आसानी से डॉक्टर्स के पास। इसका एक कारण जो ये है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या इवन जो लोअर क्लास है उसमें इतनी विजिलेंस नहीं है। लगता है कि छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो है कि पैसों की कमी होती है। जो लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए और जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है उसमें पैसों की काफ़ी कमी होती है। तो हमेशा महिलाओं का पहला प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, उनको पहले आगे रखें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इसका इलाज करा दें। फिर एजुकेशन है जिसमें आजकल काफ़ी पैसा चला जाता है, तो उसमें वो अपना योगदान दे देती हैं और उनकी बीमारी थोड़ा पीछे रह जाती है। और एक दूसरा कारण यह है कि कुछ हद तक औरतें अपनी बात बहुत आसानी से नहीं कह पाती हैं सबसे, खासतौर से जो अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ उनके पति का कोई बहुत विशेष योगदान नहीं होता है और इस तरह से वो पीछे रह जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों मैं तो महिलाओं से हमेशा से ये बात कहती हूँ, इतनी सारी महिलाएं फिलहाल मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी, जीवन तो आपका है और इस जीवन का ख्याल रखना भी आप ही का काम है। तो अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बना पाएंगी। जरूरी है कि अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। जहां पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वहां अपने आप को भी प्रायोरिटाइज जरूर करें। जुड़े रहे रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: डिपार्टमेंट। महिला सशक्तिकरण, जब मैं ये कहती हूँ ना सशक्तिकरण, तो ऐसा लगता है महिलाओं में बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन ये जो शक्ति है ना, ये दरअसल चैनलाइज कहीं और जगह हो रही है। मानी वो शक्ति है तो वो पूरे परिवार को पालने के लिए शक्ति है, शक्ति है तो बहुत सारे दर्द को एंड्योर करने की शक्ति है, शक्ति है तो अच्छे डिसीजन लेने की शक्ति है, लेकिन उसे सही जगह इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं को ये मौके मिलने चाहिए। आज हम डॉक्टर नुपुर से बात करें। डॉक्टर नुपुर माथुर अगर देखा जाए तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन दिल में इनके बिल्कुल मदर टेरेसा की जैसे ही बहुत सारा प्यार है। इतने सारे लोगों की ये मदद करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश में तो बहुत कम है। डॉक्टर नुपुर, अब मैं ना आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। क्या आपके समय में डॉक्टर बनना आसान था? और अगर मैं आज तक की आपकी पूरी जर्नी देखूं, तो कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया जिसको आप आज जीवन के इस पड़ाव पर बैठकर ये कहें कि यस, मैंने ये एम्पावरमेंट भरा डिसीजन लिया?
1: थोड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। खैर, जर्नी मेरी कुछ बहुत कठिन नहीं रही, क्योंकि एक शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था। माता पिता दोनों शिक्षा वर्ग थे और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम जहाँ रहते थे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैंपस था, तो चारों तरफ देखा जाए तो शिक्षा ही शिक्षा थी। फादर भी मेरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, मदर लेक्चरर थी, तो ये हमेशा देखते चले आए कि हमसे सीनियर, हमारे से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो या तो उस टाइम पर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और ये दो ही चार थोड़ी अच्छी वाली शिक्षाएं कही जा सकती थी। तो थोड़ा सा प्रयत्न करा, कुछ बहुत विशेष नहीं, पर हाँ उस टाइम PMT एग्जाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट करके, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर पढ़ाई भी खत्म हो गई। और उसके बाद हाँ यह ज़रूर था कि शादी हमेशा माँ बाप सोचते थे कि एक सही समय पर हो जाए, तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा मैं पीछे रह गई थी, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर शादी के बाद यहाँ दिल्ली आई और उसके बाद लगा कि पिछड़े वर्ग को और भी समाज को ऐसा लगा कि एक MBBS डॉक्टर की अपनी अलग पहचान है, तो फिर मैंने वही परस्यू कर लिया। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड का एक क्लिनिक था तो मैं उसके साथ ही जुड़ गई और फिर बस तब से शायद चली रही है गाड़ी।
0: वाओ, बट भाई देखिए, ये एक बहुत एम्पावरिंग सी जर्नी है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत सारी महिलाएं नहीं ले पाती हैं, और आपने ये डिसीजन लिया। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि आज आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज जब आप उनके इलाज करती हैं, आज जब आप उनके पास जाती हैं, उन्हें सलाह देती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके जीवन को टच कर रही हैं और उनके जीवन को बदलकर उनके जीवन को और भी खुशमय बना रही हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव दर्शन 107.8 FM के साथ। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। ढेर सारे लोगों से हम बात करते हैं, जब डॉक्टर्स की बारी आती है ना, तो मन में हमेशा ये फीलिंग होती है कि ये वो लोग हैं जो हमें दर्द से बाहर निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर में हम भगवान का रूप तो देखते ही हैं, और आज हम बिल्कुल कहना चाहिए कि भगवान स्वरूप डॉक्टर नुपुर माथुर से बात कर रहे हैं। ये जिस तरीके का काम कर रही है ना, दरअसल मानवता की सच्ची सेवा है। आज भी ऐसे जमाने में जहाँ पर कि आपको डॉक्टरी सलाह फ्री में नहीं मिलती है या बहुत कम कॉस्ट में नहीं मिलती है, ये आज भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं। और इनफैक्ट मेरे इस पूरे इंटरव्यू के बाद ये वहीं जाने वाली हैं। डॉक्टर नुपुर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ना जेंडर इक्वालिटी की बड़ी बात करते हैं, और अगर मैं डॉक्टरी लाइन में देखूं तो वहां तो फिर भी इक्वालिटी है, क्योंकि देखिए महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमार तो सब पड़ते हैं, तो डॉक्टर तो आपको हर जेंडर के चाहिए। लेकिन बाकी सारे एरियाज में अगर आप देखें तो इम्बैलेंस है, तो क्या इस इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं?
1: हाँ, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में काफी हद तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहा जाए तो उत्थान नहीं हो पा रहा है। मगर अब बहुत सा नजरिया सब लोगों का बदल गया है। डॉक्टरी में तो आपने अभी देखा होगा कि शायद ज्यादातर डॉक्टर्स हर फील्ड में फीमेल्स हैं, और इवन जो पहले इवन हम जब पढ़ रहे थे तब भी ऐसा था कि जो सोचा करते थे कि गायनी डिपार्टमेंट में इसमें मेल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर मेल्स भी होते थे। तो डॉक्टरी में तो ये समानता है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में इतना कोई अंतर नहीं रहा है। पर और फील्ड में देखा जाता है कि इंजीनियरिंग में जो क्रूड वाली इंजीनियरिंग होती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा पीछे से अगर देखा जाए, अच्छी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो या उनके मम्मी पापा अच्छी तरह समझा दें, तो शायद हर फील्ड में, और इंडिया में तो आजकल देखिए कहाँ कहाँ लड़कियाँ पहुँच गई हैं। तो ये कहना कि समानता नहीं है, यह भी गलत होगा। थोड़ा सा उसमें अंदर से, अपने अंदर से कुछ एक भावना सी चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं, तो काफी हद तक सरलता से पहुंच जाती हैं स्त्रियां।
0: वाकई, तो भाई देखिए, इस बात की हम खुशी मना सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। जहां पर एक जमाने में महिलाएं होती ही नहीं थी, वहां अब हम महिलाओं को देख पा रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी आएगा, क्योंकि अगला सवाल बड़ा दिल को छूने वाला है। हर महिला जब इस सवाल को सुनती है तो कहीं ना कहीं वो इस सवाल से रेजोनेट करती है और सोचती है इसका सॉल्यूशन क्या मेरी जिंदगी पर फिट होगा या नहीं। तो पूछने वाली हूँ ये अगला सवाल डॉक्टर नुपुर माथुर से, पर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज उतनी ही प्यारी लेकिन सीजन्ड डॉक्टर डॉक्टर नुपुर माथुर जी से मैं बात कर रही हूँ। बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर नुपुर, जब कभी भी महिलाओं की बात होती है, मतलब मैं अक्रॉस पूरे भारत की बात करूं या ग्लोब की बात करूं, तो हमेशा से ये माना गया है कि जो महिला है ना वो घर की केयर टेकर है और नर्चरर है, और ये जो रोल्स हैं मुझे लगता है कि बहुत जमाने से डिफाइन कर दिए गए हैं। ऐसा होता है कि एक अगर महिला अपना करियर बना भी रही है या बना भी चुकी है, तो जैसे ही जीवन का वो पड़ाव आता है जहां बच्चे आते हैं और आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी केयर के लिए हमेशा एक महिला को अपने करियर का त्याग करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करिए, आप ब्रेक ले लीजिए या आप कुछ और करिए। तो मुझे बताइए कि क्या इसमें बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कहीं किसी भी महिला के करियर के लिए एक पुरुष ने कहीं कोई त्याग दिया हो।
1: नहीं नहीं, ये तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आजकल तो पुरुष वर्ग बहुत साथ देता है और बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी यंग, बिल्कुल यंग अभी आगे बढ़ रही हैं, और जब फैमिली में आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी एक अच्छा प्रमोशन होने वाला है, साथ में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देर आर मैनी, अब तो अपर क्लास में तो हैं पर लोअर क्लास में भी देर आर मैनी मेल मेंबर्स हु रेस्पेक्ट देम एंड हु ऑप्ट फॉर लीव फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द फीमेल पार्टनर। सो इट्स नॉट एज सच, बट हाँ, डिफिकल्टीज आर ऑलवेज देयर। द मेन थिंग इज दैट इन लॉज एंड हूएवर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द फैमिली शुड बी कंपैशनेट फॉर द गर्ल। सो आई थिंक इतना नहीं है, रहता जरूर है। और अगर स्त्री कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए थोड़ा बहुत कर भी रही है, कुछ फॉरगो करना पड़ रहा है उसको, अपना प्रमोशन या कुछ अपने आवर्स जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो शायद मन में एक ऐसा मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है कि हमने वो नहीं करा लेकिन कुछ उससे बढ़कर कर दिया। तो ये मेरा मानना है।
0: वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर नुपुर, और शायद मुझे लगता है कि यही मातृत्व कहलाता भी है। तो इसीलिए एक माँ का जो दर्जा है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि माँ बनने के बाद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के माइंडसेट को और भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के लिए रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं।
1: रिस्पेक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। वो शायद मुझे लगता है कि पुरुष वर्ग में एक स्कूलिंग के टाइम से जो मैनर्स और रिस्पेक्ट फीमेल्स के प्रति इम्बाइब हो जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, मगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो बॉयज होते हैं उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आपको अपने साथ वाली जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होगी के लिए, मैंने देखा है मदर्स के लिए भी कई लोगों में वो रिस्पेक्ट नहीं होता है जो होना चाहिए, जो और कंट्रीज में होता है मेल्स में। तो वो उसमें अगर थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से अगर अच्छी एजुकेशन दे दें तो शायद काफी हद तक ये समस्या खत्म हो सकती है।
0: और इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत घर से हो सकती है, और घर में फिर कौन, माँ, महिला। तो भाई अगर महिलाएं चाहें तो वाकई बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। दोस्तों, वक्त एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर माथुर से। डॉक्टर नुपुर, अब एक बड़ा अहम सवाल, आपने ना अपने पूरे जीवन के पन्ने खोले, आपने बहुत सारी शिक्षा हमें दी, साथ के साथ ही बताया कि चीजें बदल रही हैं और कुछ जो चीजें बदलनी है उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन सामंजस्य बिठाकर। तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी सभी को आप?
1: खास मैसेज तो यही है कि स्त्रियों को लगे रहना पड़ेगा, अपना एक अलग स्थान तो बनाना पड़ेगा और परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के शायद यह काम करना ज्यादा आसान होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो स्थान आपका परिवार आपको नहीं देगा, जरूर देगा। थोड़ा सा बस हौसला बनाए रखें और उस तरफ अपने प्रयत्न जारी रखें।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये जो समाज है ये तभी बदलेगा जब आप और मैं बदलने वाले हों, जब हम अपनी सोच को बदल दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नुपुर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंगल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और वो मुद्दा वो विषय भी ऐसा जो हमारे आसपास होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसे किसी मुद्दे को। तो रेडियो मानव रचना का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम ऐसे विषयों को एक नई सोच के साथ नई दिशाएं प्रदान करें, जो आपको लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। तो श्रोताओं, आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब एजुकेशन की बात आती है तो एक हर किसी का एक सपना होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह एक अपना स्थान रखती है, लेकिन एक सपना हर किसी के मन में पल रहा होता है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े। तो आज का मुद्दा इसी मुद्दे विषय पर चर्चा हम करेंगे, विदेशी शिक्षा बनाम भारतीय शिक्षा, यानी सपनों की उड़ान या जड़ों की पहचान। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर दूसरे घर में एक सपना पल रहा होता है, बेटा विदेश जाएगा, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और एक शानदार नौकरी करेगा, लेकिन क्या विदेशी शिक्षा वास्तव में हमारी इंडियन एजुकेशन से बेहतर है? क्या भारत में पढ़कर भी वैश्विक सफलता हासिल की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्री के बाद नौकरी और प्लेसमेंट में कौन आगे है, फॉरेन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे विदेशी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उनकी फीस की, उन अपॉर्चुनिटीज की, प्लेसमेंट की और पैकेजेस की। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की उस सच की जो सोशल मीडिया की चमक से बिल्कुल कहीं अलग है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की, जो हमारी सोच को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आखिर क्यों बढ़ रहा है विदेश जाने का सपना, जो हम बात करते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की तरफ जो लोगों का रुझान है, आखिर उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अपने देश की। सरकारी और शिक्षा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख छात्र विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए, चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो उनकी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। श्रेणी में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है वहाँ के मॉडर्नाइज कैंपस, उनकी जो स्टडी का जो तरीका है और रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है वो, उनकी बेहतर प्रयोगशालाएं जो हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एजुकेशन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता है हर भारतीय के मन में कि यदि आप किसी भारत के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंचे पद पर या एक बड़े वेतन के साथ नौकरी भी लग जाएगी। तो जो ये उम्मीद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो चमकदार तस्वीरें हैं वो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। वहाँ की एमिनिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से या आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, तो उनसे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सन 2015 2025 में, यानी हमने अभी आपको 2024 का एक डेटा बताया कि जिसमें करीब 7.5 लाख छात्र बाहर गए, कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफ़ी कम छात्र बाहर गए। उसका कारण जितनी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने देखा था यूएस में भी जो वीज़ा के नियमों में काफ़ी सख्ती कर दी गई थी, नॉट पर्टिकुलरली फॉर भारतीय छात्रों की हम बात करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने वीज़ा नियम काफ़ी सख्त कर दिए थे। और एक जो बड़ी चिंता, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि आपको बाहर पढ़ने के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई गई जिसकी वजह से ये 6% की गिरावट आई। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 43% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण विदेश जाने का विचार छोड़ दिया, यानी बढ़ती हुई फीस और उस फीस के पैसे का अरेंजमेंट ना हो पाना भी एक कारण रहा इस गिरावट का। यानी अगर हम बात करें तो केवल फॉरेन जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि आज के छात्र इतने स्मार्ट भी होने लगे हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी देखने लगे हैं, यानी आपको कितनी फीस दे करके क्या पढ़ाई मिलेगी और उस पढ़ाई का आउटकम क्या होगा, कैसी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी एक नज़रिया छात्रों का बदल गया है। और अगर हम उसको एक लाइटर नोट पे बोलें तो पहले सपना होता था कि विदेश जाना है, लेकिन अब सवाल होता है कि विदेश जा कर के एजुकेशन लोन की ईएमआई कौन भरेगा। यानी एक जागरूकता जो आई है उसने कहीं ना कहीं इस नंबर में, बाहर जाने के जो नंबर है परसेंटेज में, गिरावट लाने का काम किया है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है हमारे बच्चों की शिक्षा से, यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या बाहर का विदेशी एजुकेशन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, अट्रैक्शन के कारण क्या हैं। और जो हमने अभी बात की कि सन 2024 में जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने, लेकिन 25 में वो करीब 6% गिरावट उसमें आई, तो उसके भी हमने अभी कारण आपको बताए। दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है उसकी ताकत को हम कम नहीं आंक सकते। मतलब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसा हमारा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे देश में हुए हैं, तो यदि विदेशी शिक्षा की चमक हमें आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी एक ताकत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भारत ने, हमारे देश ने दुनिया को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी विशेषज्ञ और साथ ही साथ बहुत बड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी दिए हैं, जिनका मूल हमारा देश रहा है, हमारा भारत रहा है। और हमारी भारतीय शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा मजबूत गणितीय आधार, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जो कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और दूसरी बात, जिसका दबाव आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा समझता है, वो है फीस। कंपैरेटिवली इंडिया में एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत सस्ती है अगर हम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट देश में, भारत में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो IITs हैं, IIM हैं, एम्स की बात हम करें या IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। पूरे विश्व में जो उनका सम्मान है वो बहुत शीर्ष संस्थानों में किया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ चैलेंजेज भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक रटने की जो संस्कृति है, या फिर बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज की जो फोकस रहता है कि आपको इतने अंक आने चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, वो जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और साथ ही साथ जो स्किल गैप और बड़ी लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह का एक कमी वाला जो रोल है वो प्ले करती हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी कि भारत में लाखों छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते। हमने आमतौर पर देखा है कि इंजीनियर, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है, लेकिन यदि हम उनकी कार्यकुशलता की बात करें तो वो उतने बेहतर तरीके से उन कार्यों में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो नहीं दिखा पाते हैं जितने लेवल की एजुकेशन उनके पास होती है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो कंपनीज हैं वो केवल डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर उद्योग की, हर इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की। जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है, AI और टेक्नोलॉजी की जो समझ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी अच्छे संस्थान में नौकरी पाने के लिए। यानी समय अब बदल चुका है, केवल पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको कार्यकुशल होना यानी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और इसमें हमने देखा कि जो एक फीस है या जो अंकों का दबाव है, एक तरह की हमने बात की, जहां एक तरफ कम फीस होना हमारे लिए अट्रैक्शन हो जाता है, एक कंफर्टेबिलिटी दिखती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन वहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं या हम बात करते हैं अंकों का जो दबाव है, जो एक परसेंटेज गैदर कैप्चर करने का या हासिल करने का जो एक प्रेशर फील होता है, वो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि अगर हम वर्ष दर वर्ष बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले जो छात्र हैं उनके परसेंटेज में गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है आमतौर पर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए, यानी यदि आप किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एक चार्म कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मन में रहता है कि आपको एक बड़ी किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बात का सच क्या है? दोस्तों, आज हर छात्र और अभिभावक का, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कितनी अच्छी मिलेगी। यानी उनका एक बड़ा फोकस रहता है कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसके बाद कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये वो सवाल है जिसके जवाब के आधार पर लोग चयन करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, यानी किसकी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर तरीके से होती है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेसमेंट के नंबर्स हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा चार्म भी रहता है हमारे देश में उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाने का। यदि हम 2025 वर्ष 2025 के प्लेसमेंट सीजन की बात करें तो IIT बॉम्बे में लगभग 74% प्लेसमेंट दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये कि IIT मुंबई में 74% प्लेसमेंट हुआ। और इंटरनेशनल जो पैकेज था वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर तक गया था। यानी अगर हम एवरेज पैकेज की भी बात करें, जो हमने 74% प्लेसमेंट की बात की, तो वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो भी 23 लाख पर एनम था। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट का जहाँ की प्लेसमेंट 74% हो। या हम बात करते हैं IIT चेन्नई की, वहाँ पर 4.3 करोड़ तक का पैकेज मिला। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 53 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यानी 53 लाख पर एनम का रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, यानी IIT नागपुर का जो CSE विभाग है, उसकी प्लेसमेंट आपको यकीन कीजिए जानकर के आश्चर्य होगा कि 100% प्लेसमेंट हुई। और वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 15 लाख रुपीज पर एनम रहा। साथ ही साथ हम NIT जालंधर की बात करें तो वहाँ तकरीबन 900 जॉब ऑफर्स आए और 1 करोड़ रुपये से ऊपर का एनुअल पैकेज मिला। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि भारत का हर कॉलेज IIT नहीं है। यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग के जो शीर्ष संस्थानों में जिनका शुमार होता है IITs का, हर कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे जो सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कमज़ोर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कम है, कई छात्रों को नौकरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, विदेशों में जो शुरुआती वेतन है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फॉरेन एजुकेशन का, वो ये भी कि जब इनिशियल जो वहाँ पर सैलरी ऑफर होती है वो भारत से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पर्टिकुलरली अगर हम AI की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, या फाइनेंशियल हेल्थ केयर या रिसर्च के क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, AI में, इनमें जो एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर पढ़ाई करने का। लेकिन आज की यदि हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद 25 में गिरावट आई, वो गिरावट आने का एक कारण ये भी था कि आज स्थिति वहाँ पर भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे देशों में नौकरी जो है वो कंपटीशन जो उसमें है जॉब्स में, वो बहुत बढ़ गया है, वीज़ा की इश्यूज हो गए हैं, और साथ ही साथ कुछ जो टेक कंपनीज हैं उनमें रिट्रेंचमेंट भी हुई है, छटनियाँ भी हुई हैं। यानी
अब केवल विदेशी डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं रहा, ये कड़वा सच हमें आज स्वीकारना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो, इसका एक जो लाभ है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी सीधा सीधा मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हर बार जो हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा आपके साथ करते हैं, तो आज का मुद्दा है विदेशी एजुकेशन बनाम भारतीय शिक्षा। अभी हमने बात की कि आखिर फॉरेन एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रहता है, तो उसके पीछे के कारण थे वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टिव तरीके से दिखना, बड़े पैकेज की ऑफर्स आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो महंगी फीस है या वहाँ का जो वातावरण है या डे बाई डे नौकरी मिलने में परेशानियाँ होना या वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में अट्रैक्शन कम हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो सीधा सीधा रिलेटेड है इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन से, वो है कि यदि हम विदेशी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्च है, आमतौर पर हम बात कर लेते हैं केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स के फीस की, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसकी फीस कितनी है। लेकिन दोस्तों, विदेशी शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, उसमें शामिल होता है वहाँ पर रहने का खर्च, वहाँ खाने का खर्च, वहाँ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए होते हैं, चाहे उसमें लैपटॉप है या कोई भी और एसेसरी। और साथ ही साथ जब आप किसी जगह पर रहते हैं नई जगह पर विदेशों में, तो निश्चित रूप से वहाँ रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा भी करना पड़ता है। और एक अनुमान के अनुसार जो हम कई देशों की हम बात करते हैं, तो उसमें तकरीबन किसी एक छात्र पर 20 से 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। हालांकि ये बात भी तय है कि छात्र अपने खर्चे को बियर करने के लिए, वहाँ एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, और वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले वहाँ मिल जाती हैं और उनमें उनको पेमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप उस खर्चे और कमाई के बीच में रहता है। हालांकि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उसमें दिखाया जाता है बहुत सुंदर कैंपस है या वहाँ का जो वातावरण है या उस वहाँ का जो पर्यावरण की हम बात करें, क्लीन एयर और बर्फबारी और सुंदर दृश्य देखने वाले मिलते हैं, एक बड़े ही आधुनिक कैफ़े या एक जो लाइफस्टाइल वहाँ की है, विदेशी जो जीवनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू जो आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नहीं दिखाया जाता, वो है कि जो असली ज़िंदगी है वहाँ की, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है किराए का, बहुत महंगे महंगे रेंटल्स आपको पे करने पड़ते हैं, लोनलीनेस, जो आपको अकेलापन महसूस होता है, वो एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का भी कई बार कारण बन जाता है। और कुछ देशों की तो जो जलवायु, जो पर्यावरण वहाँ का है, वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो इंडिया के मुकाबले दिन और रात में फ़र्क होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी ना होना, बहुत ज़्यादा समय तक अंधेरा रहना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग आदी नहीं होते, तो वहाँ पर जा करके उनको इस चीज़ का भी एक मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं रह पाती, और साथ ही अकेलेपन के कारण या एक नई जगह के कारण एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बच्चों में, युवाओं में देखी जाती है वहाँ के छात्रों में। और साथ ही साथ जब पढ़ाई की बात होती है, तो जैसा कि हमने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना या पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है, उसका भी एक बहुत दबाव और उसकी एक भागदौड़ जो है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी विदेशी एजुकेशन हासिल करने जाना होता है या वहाँ पर कोई डिग्री लेना होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की एजुकेशन ले लेना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बेहतरीन स्थिति की क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पर जा करके जॉब मिलेगी ही, एक बेहतर जॉब मिलेगी या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस सच्चाई को हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए, जो एक बेहतर निर्णय लेने में हमारे लिए सहायता करती है या हमारे लिए सहायक होती है। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम का अगले हिस्से में। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आमतौर पर हमने अभी बात की कि विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजना एक बड़ा हर किसी परिवार का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत महंगी फीस दे देना, एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा होना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का माहौल बदला है विदेशों का, उससे काफ़ी संख्या में कमी आई है और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इम्प्रूव हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और रिसर्च फैसिलिटीज़ का आ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है कि बच्चों में बाहर के देशों में जाने की अट्रैक्शन कम हो गई है। और साथ ही साथ अभी हमने हाल ही में कुछ खबरें सुनी कि बाहर की जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में भी बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और हमारे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और एक पहलू जो फॉरेन एजुकेशन का है वो ये भी है कि जब कोई भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि विदेशों में बहुत अच्छे सफल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी देश से हमारे ही गए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं और ये प्रतिभा हमारे देश की ही है, और इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी एक शब्द इसके लिए किया गया ब्रेन ड्रेन। और एक रिसर्च के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले जो इंडियन जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें से 73% वापस नहीं लौटते। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो यदि 100 लोग बाहर जाते हैं तो उसमें से 73 लोगों की संभावना रहती है कि वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये तस्वीर बदल रही है, यानी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे छात्र वो इस थॉट के साथ जाते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ें, वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, इंडिया में वापस आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करें, साथ ही साथ जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं उनको यहाँ आकर के और लोगों से शेयर करके रिसर्च करें, और जो उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंस अर्न किया है उसको अपने देश में ले कर के आएँ। तो वो बहुत एक नया बदलाव जो आना शुरू हुआ है, एक बेहतर स्थिति में हमारा देश, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेहतर स्थिति में आता जा रहा है, और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। साथ ही जैसा भी मैंने आपको कहा कि भारत में भी अब ग्लोबल कैंपसेज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, यानी शिक्षा नीति के माध्यम से भी बदलाव की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ विदेश जाना नहीं है, सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हो रहे हैं, और हमारी सोसाइटी को अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखने के बाद क्या लौटा रहे हैं। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल भाव केवल और केवल एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन युवाओं को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास के जो काम है, विकास की जो गति है, उसमें उनका योगदान भी सुनिश्चित करना होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे समापन की ओर। अभी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हमने चर्चा की फॉरेन एजुकेशन वर्सेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति में क्या बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह से हम कहते थे कि हर घर का एक सपना होता था कि उनका बच्चा बाहर पढ़े, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छे पैकेज पर उसको नौकरी मिले या वो अपना कोई व्यवसाय करे, वहीं परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जरूर जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर के आते हैं अपने देश में वापस और यहाँ पर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति हम बात करें या यदि हम विकास की बात करें, तो उसमें अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आखिर बेहतर कौन है, भारतीय शिक्षा या विदेशी शिक्षा? एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी की अपनी एक जीवन की एक, अगर हम बात करें, लक्ष्य है, गोल है। तो उसके हिसाब से यदि हम बोलें किसी छात्र को चाहिए कि बहुत हाई लेवल की रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोजर या विशेष तकनीकी अवसर, तो विदेशी शिक्षा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसे हमने भी आपको कहा कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे ही किसी स्टूडेंट के अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानिए हमारे देश में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जज्बा भी आपके भीतर होना चाहिए। हमारे देश में ही IIT IIM जैसे संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। यदि आप बात करें बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, हम देश से बाहर जो गए हैं, उनकी मूल जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इंडिया में ही हुई है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ही देश के IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चे जो ग्लोबली वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है, या और हम किसी ग्लोबल कंपनीज की बात करें, तो उनमें बहुत ही शानदार पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हमें बात समझनी चाहिए कि जो असल जो फर्क है वो केवल देश नहीं बनाता, फर्क बनाता है छात्रों का दृष्टिकोण, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका स्किल या उनकी स्किल टू लर्न, यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है, वो फर्क पैदा करती है कि आप किस देश में, किस कंपनी में, किस पैकेज पर कैसी नौकरी हासिल करते हैं या कैसा स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सच्ची बात है कि पहले लोग आमतौर पर पूछते थे कि कौन सा कॉलेज मिला जब कभी एजुकेशन की बात आती थी, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिला, यानी पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हमने समझने की कोशिश की है कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों की अपनी ताकत और अपनी लिमिटेशंस है। विदेश अवसर देता है और भारत आधार देता है, यानी हमारा जो देश है वो हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन का फाउंडेशन देता है। और साथ ही साथ जो विदेशी डिग्री है वो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और साथ ही हमें समझना भी पड़ेगा कि जो भारतीय डिग्री है या हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियाँ हैं, वो असफलता की भी पहचान नहीं है। यानी इस बात में यदि हम अंतर को समझें तो बाहर के देशों में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती सफलता होना, और इंडिया में पढ़ना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना कोई असफलता होने की पहचान नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की शक्ति दे, यानी आपको कुशल बनाए और आप अपने विजन और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करा सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल आपको शिक्षित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ये भाव पैदा करना कि जिस देश में, जहां आपने ये शिक्षा हासिल की है, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की प्रगति में आप अपने शिक्षित होने के बाद, कार्यकुशल होने के बाद किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी का जो एहसास कराए, दरअसल शिक्षा का पूरा उद्देश्य जब ही होता है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंघल को दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थे। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और समय है प्रोग्राम ग्रीन ग्रह का, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं अपने ही ग्रह पृथ्वी के बारे में, क्योंकि इस पृथ्वी को संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पर कहीं ना कहीं हम इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम अपना घर तो ठीक रखना जानते हैं पर अपना पर्यावरण, अपने आसपास का इलाका और अपने शहर के बारे में भूल जाते हैं। पर इस कार्यक्रम ग्रीन ग्रह को आप तक लाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का, जो ये कार्यक्रम आप तक ला रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी एक्सपर्ट्स को जोड़ रहे हैं जो आपको वेस्ट सेग्रीगेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी दे सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेशन या मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो प्रकृति से आ रही है लेकिन हमारे ही पर्यावरण को सहायता दे रही है साफ रखने में, हमारे घर को साफ रख रही है और सबसे बड़ी बात, हमारा बहुत सा पैसा भी बचा रही है। यानी जो सामान हम अपने घर को साफ रखने के लिए खरीदते हैं, महंगे महंगे वॉशिंग पाउडर्स, कपड़ों को धोने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए अच्छी और हाई एंड क्वालिटी के डिश वॉशिंग मशीन्स के साथ साथ बहुत सारे लिक्विड या फिर बार्स खरीदते हैं, इसके साथ साथ हम अपने टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर्स खरीदते हैं, ये भी कोई सस्ते नहीं आते हैं, 200-300 से कम की कोई अच्छी बॉटल नहीं आती है। इसके साथ साथ हम अपने फ्लोर को चमकाने के लिए महंगे और खुशबूदार फ्लोर क्लीनर्स खरीदते हैं और अपने एनवायरनमेंट में प्लांट्स को खूबसूरत रखने के लिए कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घर बैठे सब कुछ बना सकते हैं, वो भी ईजिली अपने घर के इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के छिलकों से, जिनको आप खा के अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं, और इनके छिलकों को फेंकने की जगह इनसे आप बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सारी बातें आपके साथ मैं नहीं शेयर करने वाली, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हैं और हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं वो बायो एंजाइम्स में बहुत महारत हासिल कर चुकी हैं। अपने घर पर ही ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो घरों में इजीली इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरुआत इन्होंने कुछ सीख कर करी और अब ये इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हैं, तो ये अपने घर के साथ साथ बहुत सारे लोगों की और भी मदद करती हैं बायो एंजाइम के इस्तेमाल में। केयर बायो एंजाइम नामक ये अपने एक प्रोडक्ट को बनाती हैं, जिसमें इस ब्रांड के अंडर कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके घर को साफ़ रखने में, आपके किचन को साफ रखने में, आपके वॉशरूम्स को साफ रखने में और यहाँ तक कि आपके प्लांट्स को खूबसूरत बनाने में, उनका ख्याल रखने में भी मदद करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, घर पर बन जाते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं सुचेता साहू जी। सुचेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: धन्यवाद दीक्षा जी।
1: तो सुचेता जी, हम बायो एंजाइम की बात कर रहे हैं और बायो एंजाइम एक ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है कि आम इंसान को नहीं पता। अब बायो है तो ऑफकोर्स प्रकृति से जुड़ा हुआ है और एंजाइम है तो कहीं ना कहीं गुड बैक्टीरिया की भी बात हो रही है। ये तो मैंने इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा सा आइडिया निकाल लिया, लेकिन मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो बायो एंजाइम है क्या और आपने कैसे इसको एक्सप्लोर किया?
2: जी मैम, इस बायो एंजाइम जो नॉर्मली जाना जाता है इको बायो एंजाइम या गार्बेज एंजाइम के नाम से बाहर
1: जी,
2: और ये फलों और सब्जियों को छिलकों को गुड़ के साथ फर्मेंट करके बनता है और इसका इन्वेंशन जो है डॉक्टर रोशुकॉन ने किया था, जो मलेशिया की साइंटिस्ट है, और उन्होंने 40 साल से इस पर रिसर्च करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट पाए और इसको प्रमोट करना शुरू किया। इंडिया में बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी के ओर से इसका प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से इस समय हो रहा है और मैं इसकी मेंबर हूँ और इसको हम अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं और इसका बस सिर्फ एक सिंपल तरीका है कि हमें अपने घर में जो सब्जी और फलों के छिलके निकल रहे हैं उनको अलग करना है और एक लीटर पानी में 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़ मिक्स करके एक एयर टाइट जार में रखना है जो चौड़े मुखे हो, और उसको हम छांव में रखेंगे और उससे जो 3 महीने रखने के बाद लिक्विड बनता है वो बायो एंजाइम या इको एंजाइम हमारे बहुत काम आता है।
1: जी जी, तो सुचेता जी, ये तो बायो एंजाइम आपने बताया कि कैसे बनता है, लेकिन बायो एंजाइम ज़रूरी क्यों है? हमारे पास इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और अब तो लोग ऑर्गेनिक के नाम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करने लग गए हैं कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है। तो फिर ये बायो एंजाइम का मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इतना काम कौन करे घर पर, इतनी चीज़ें कौन इकट्ठी करे और फिर उसके बाद इनको बनाए, तो क्यों ज़रूरी है ये बनाना, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
2: मैम, अगर आप प्रकृति प्रेमी है और पर्यावरण के प्रति आप सजग हैं तो अपने घर से निकलने हुए वाले वेस्ट को ज़रूर आप कंपोस्ट बनाते होंगे और उसको अलग करते होंगे, तो क्यों ना हम उस कड़ी में थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ के बायोएंजाइम बनाएं जो कि हमारे घर के तमाम केमिकल्स को रिप्लेस कर सकता है। हमें नहीं पता कि ब्रांड्स जो बेचती हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं। जैसे हम बाज़ार से खाना लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या होता है और वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए या हमारी प्रकृति के लिए, तो अगर घर में हम थोड़े से कोशिश से कुछ अच्छा बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाएं। और ये इतना क्रिएटिव काम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा स्ट्रेस बस्टर है ये एक तरह से, क्योंकि जब बायोएंजाइम बन जाता है और उसको मैं तरह तरह से यूज़ करती हूँ, जैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए या फिर अपने किचन क्लीन करने के लिए या अपने स्किन के लिए या बाकी प्लांट्स के लिए, और उसमें इम्पैक्ट देखती हूँ। और जब तरह तरह से लोग पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं और सबको पता है कि ये कितना हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हम बिना पेस्ट कंट्रोल करवाए अपने घर में जो इंसेक्ट है उनसे छुटकारा पा लेते हैं, तो क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करें। एक छोटी सी चीज़ बनाने से इसके मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। आप ये भी तो देखो कि हमारे पास अगर बायो एंजाइम है तो हम अपना क्लीनिंग भी कर सकते हैं, हम पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम अपने प्लांट्स को भी केयर कर सकते हैं, और अपने छोटे छोटे जो हो जाते हैं प्रॉब्लम्स स्किन के हल्के फुल्के, उनको भी क्योर कर सकते हैं।
1: अच्छा, इन्हीं बायो एंजाइम्स
2: से, तो क्यों नहीं हम ट्राई करें इन्हें और इसका आनंद ले। जब प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ हमें दी है तो हमें बनाना चाहिए, हम पीछे नहीं हटना चाहिए।
1: जी जी, मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब हम बायो एंजाइम्स की बात करें, आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया अभी कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, स्किन का भी ख्याल हो सकता है इससे, सो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं कि अगर हमें एक फ्लोर क्लीनर बनाना है, सपोज़ हम अपने घर में फ्लोर क्लीनर यानी फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्मेल लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल वाली फील आ रही है, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी भी नहीं लगती है, बट ये होता है कि क्लीनलीनेस के लिए चाहिए कि घर में चींटियाँ आ गई हैं, या अब रोज़ तो पोछा तो लगता ही है सबके घर में
2: जी।
1: और इंडिया में हर रोज़ ऐसे वैक्यूम क्लीनिंग तो पॉसिबल नहीं होती है, तो डस्ट है, गंदगी है, पोछा तो लगेगा, बट उसमें वो फिनाइल डालते हैं। बरसों से हम बचपन से देखते आ रहे हैं फिनाइल ही डलता है, कई लोग उसमें नींबू और नमक डाल के भी पोछा लगाते हैं, बट उसमें खुशबू नहीं आती है। सो ये जो फ्लोर क्लीनर है, पहले आप मुझे बताइए कि ये कैसे बनता है और इसमें खुशबू क्या आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर इसमें छिलकों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें स्मेल होगी।
2: करेक्ट, इसमें स्मेल होती है, थोड़ी सी सिरके जैसी नेचुरल विनेगर की स्मेल होती है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं उनको तो सिट्रस फ्रूट्स की स्मेल जो है काफ़ी अच्छी लगती है, और स्पेशली संतरे का जब हम बनाते हैं या नींबू का बनाते हैं तो अच्छी स्मेल आती है कंपैरेटिवली अदर बायोएंजाइम्स। तो लेकिन हाँ, उसमें हम अच्छे सर्फेक्टेंट जैसे कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट होते हैं जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, प्लस एसेंशियल ऑयल डालते हैं। ये नुकसान भी नहीं करता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इसकी स्मेल को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है और अच्छी खुशबू आती है। और साथ के साथ आप ये भी देखो कि इससे जब हम एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लाई, जैसे लेमन ग्रास का हम कर रहे हैं तो उसको हम फ्लाइज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ्लाइज़ ना आए, तो वो उसका ही काम करता है, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं।
1: तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर मैं अपने घर पे या हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं अब ये बनाना चाहते हैं फ्लोर क्लीनर अपने घर पे इसी तरीके से, सो क्या है जो पील्स वो इस्तेमाल करें, कौन से छिलके इस्तेमाल करें, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या इसके लिए जैसे हमने आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था मैन्योर बनाने का तरीका ऑर्गेनिक एकदम, तो वो पील में थोड़ा सा उन्होंने बोला कि आप छाछ डाल दीजिए और उसके बाद उसमें खूब सारे छिलके डाल दीजिए और कागज़ डाल दीजिए, न्यूज़पेपर्स डाल दीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा आप बीच में कभी कभी चलाते रहिए और इस जिस भी कंटेनर में डालें उसमें छेद होने चाहिए ताकि वो जो गैस है वो रिलीज़ होती रहे धीरे धीरे और वो उसमें भी जो है प्रॉपर तरीके से वो मैन्योर बनता रहे। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये लिक्विड है, ऑलरेडी आप इसको लिक्विड में बना रहे हैं, सो ये किस बर्तन में बनेगा, कैसे बनेगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमें बताइए।
2: जी, मेनली इसको प्लास्टिक के बर्तन में बनाना चाहिए।
1: अच्छा।
2: जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। हाँ। और प्रेफरेबली चौड़े मुँह का बनना चाहिए होना।
1: अच्छा।
2: चाहिए जिसमें आप आसानी से छिलके डाल सकें, और पतले मुँह का अगर होगा तो उसमें गैस फॉर्मेशन, गैस निकल नहीं पाएगी और बॉटल फटने का डर रहता है, तो बनने से बनाने के लिए हम हमेशा चौड़े मुँह का बर्तन लेते हैं, प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं और उसमें जो है छिलका और गुड़ और पानी। अब आपने कहा फ्लोर क्लीनिंग के लिए, तो हम हमेशा साइट्रस फ्रूट्स लाने यानी कि मौसम्बी, संतरा और नींबू आदि के छिलके इस्तेमाल करते हैं। छिलकों को साफ सुथरा होना चाहिए और उसको हम वे करके या फिर कटोरी से नाप के डालते हैं। अगर वेइंग कर रहे हैं तो 300 ग्राम छिलका लेंगे और इसके लिए जार हमारा, अगर एक लीटर बायोएंजाइम पानी ले रहे हैं तो हमें जार 1.5 लीटर का होना चाहिए।
1: ओके।
2: थोड़ी सी एयर भी निकलने के लिए भी होनी चाहिए जगह, तो स्पेस होनी चाहिए। और बस उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना है, 1 लीटर पानी डालना है, 300 ग्राम छिलके डालने हैं और 100 ग्राम गुड़ डालना है। और अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आप कटोरी से भी नाप सकते हैं,
1: अंदाजा कर सकते
2: हैं। अंदाज से 3 कटोरी छिलके ले लीजिए, 1 कटोरी गुड़ ले लीजिए और 10 कटोरी पानी
1: ले लीजिए
2: और बस वो आपका जार में 20% स्पेस फ्री होनी चाहिए
1: ताकि
2: गैस फॉर्म होगी। शुरू के 20 दिन आपको ढक्कन को रोज थोड़ा सा ढीला करके गैस निकलने देना है और थोड़ा सा हिला देना है ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद 20 दिन के बाद आप रियलाइज करोगे कि थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन कम हो गया, तो हफ्ते में एक दिन आप हल्का ढीला कर दीजिए ढक्कन। तो इस तरह से आपको 3 महीने उसको रखना है।
1: ओके।
2: अगर आपके पास पुराना बायोएंजाइम है कोई रखा हुआ तो आप उसमें करीब 2% जितना आपने बनाया है उसका 2% आप वो डाल दीजिए, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और आपका बायोएंजाइम 45 डेज में बन जाएगा,
1: यानी वो जल्दी बन जाएगा। अगर आपके पास आप एक ढक्कन के करीब या 2 ढक्कन के करीब बायोएंजाइम डाल देते हैं तो उससे वो प्रोसेस, क्योंकि आप ऑलरेडी बायोएंजाइम डाल रहे हैं तो वो दही की तरह है कि आपने थोड़ा सा खट्टा डाल दिया तो वो दही जल्दी जम जाएगा। तो ये एक प्रोसेस आपने बताया कि हम ये फ्लोर क्लीनर इससे बना सकते हैं
2: जी।
1: और इसके लिए आपने जैसे सजेस्ट किया कि बर्तन थोड़ा सा ऐसा लें जो एयर टाइट हो और बड़े मुंह वाला हो, तो जार जो हमारे पास 2-2.5 लीटर के आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पुराना प्लास्टिक का जार पड़ा उसका।
2: हाँ,
1: इस्तेमाल कर
2: बिल्कुल
1: लें।
2: आप वही इस्तेमाल करिए, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं तो जब ज्यादा होता है कहीं डेमो देना होता है या तो केमिस्ट शॉप या ग्रोसरी शॉप से मांग लेते हैं, उनके पास खाली पड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल। और प्लास्टिक के मतलब आप क्या करते हैं, आप इनको सेल ही कर देते हैं, बेच ही देते हैं। सो
2: और छिलके अगर मेरे पास नहीं होते हैं तो जूस शॉप से ले आती हूँ।
1: क्या बात है, मतलब अपनी जेब से आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना है,
2: बस गुड़ का खर्चा देना है,
1: गुड़ का खर्चा देना है जो इजीली आप।
2: हाँ, और अगर पानी का टीडीएस बहुत हाई है जैसा फरीदाबाद में है तो आप आरओ वाटर
1: का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो आप सेफली इन चीजों को बना पाएंगे,
2: बना सकते हैं।
1: अब ये तो फ्लोर क्लीनर की बात होगी, इसमें आपने कोई भी छिलके डाल देने हैं सब्जी के या कोई पर्टिकुलर कोई
2: नहीं। अगर फ्लोर क्लीनर बनाना है तो आपको सिट्रस
1: ही डालना पड़ेगा।
2: अगर प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो आप किसी भी सब्जी और फल के छिलके मिक्स करके डाल सकते हैं जो प्लांट्स के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन आलू के छिलके, जिंजर गार्लिक चिली का अलग से बनाना है, आलू के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। और बाकी जो पर्पज़ है, जैसे अगर आपको खुशबूदार बायोएंजाइम चाहिए तो रोज़ पेटल्स का बहुत ही खुशबूदार मार्वलस होता है और रोज़मेरी का बहुत ही बढ़िया बनता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है।
1: तो जिन जिन चीज़ों में खुशबू ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: कॉफ़ी का मैंने बनाया, उसकी तो खुशबू इतनी अमेजिंग है कि आपको बता नहीं सकती हूँ।
1: मतलब
2: 3 साल पुराना बायोएंजाइम है लेकिन इतनी अच्छी खुशबू है।
1: अच्छा।
2: बहुत ही बढ़िया
1: जी। तो ये अपने आप में एकदम नेचुरल है, इसमें कोई ऐसे सेंट नहीं डले हैं, कोई एक्स्ट्रा परफ्यूम्स नहीं डले हैं, नेचुरल चीज़ों की खुशबू, जैसे आप कॉफ़ी डालते हैं तो ऑफ कोर्स कॉफ़ी की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो आपके घर में अगर कॉफ़ी का बायो एंजाइम होगा और आप उससे फ्लोर क्लीन कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप अपने घर में भी एक बड़ा एक मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू फील कर सकते हैं 24 घंटे।
2: आपने ये जो सजेशन दिया मैं ट्राई करके देखूंगी।
1: जी सुजेता जी, अब ये फ्लोर क्लीनर की बात हो गई है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास ये आती है कि उनके घरों में जो वॉशरूम्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए वो हार्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा TDS इतना ज़्यादा होता है तो जो पानी है उसके दाग लग जाते हैं पूरे वॉशरूम में, साफ़ नहीं होते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बुला के कई बार साफ़ कराना पड़ता है। आप खुद करते हैं तो आजकल अलग अलग ब्लीच वाले केमिकल्स आ रहे हैं जो ऑफकोर्स पानी के लिए ठीक नहीं है, एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। आप नाली में डालते हैं और उसके बाद उसको जैसे ही बहाते हैं तो वो आगे जो ड्रेन में जा रहा है वहाँ सब गड़बड़ कर रहा है, तो पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है।
2: जी हाँ।
1: तो क्या हम वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए, इन ख़राब दागों को हटाने के लिए कुछ ऐसा कुछ चीज़ आप बना सकते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो हम सिट्रस पील्स का बायोएंजाइम बनाते हैं उसके बाद जो पल्प बचता है उसको अगर हम थोड़े इस बायोएंजाइम के साथ मिला के पीस दें और उससे टॉयलेट क्लीन करें तो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अच्छा। टाइल्स भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं उससे।
1: अच्छा।
2: और अगर उसमें थोड़ा सा अगर हम सिट्रिक एसिड ऐड कर दें तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो हम कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, लेकिन ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं अभी तक उसमें ये तो मैंने देखा है कि जो सिट्रस पील्स का जो छिल वो है पल्प है जो बायोएंजाइम बनने के बाद बचता है उसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है और उसको हम ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है।
1: जी जी, आपने ड्रेनेज ब्लॉक ड्रेनेज जो होती है, जो नालियां बंद हो जाती हैं घरों में अक्सर किचन वगैरह में बंद हो जाती हैं, सो उसको लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसके लिए फिर वो कुछ पाउडर्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं वो। आप जब उसको डालते भी हैं तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप उसको रात भर डाल के रखें, किचन में काम ना करें, हाथ ना लगाएं, ग्लव्स पहने अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक वो होता है। आप खुद सोचिए जब भी हम उन्हें नाली में डालते हैं तो वो जो नाली से बहकर आगे जाता है तो कितना हार्मफुल है वो पर्यावरण के लिए, लेकिन ऑप्शन नहीं होता है लोगों के पास, उनको पता नहीं होता कि इसकी जगह क्या इस्तेमाल करें।
2: जी, आपने जो सिट्रस बायोएंजाइम बनाया है उसका ही दो ढक्कन आप डाल के नाली में रख दीजिए और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट और ऐड किए जाते हैं जो हम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं।
1: अच्छा।
2: तो उसमें हम आपको बताएंगे, हर चीज़ तो यहाँ नहीं बता सकते सिखा सकते, तो आप बनाएंगे तो उसको ऐड कर दीजिए तो ब्लॉक ड्रेनेज जो है वो क्लीन हो जाती है।
1: ओके।
2: और जब हम डिश वॉश वगैरह बाजार का यूज़ करते हैं तो सबको पता है कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और ये नेचुरली बनी चीज़ों से रीठा और के बायोएंजाइम और सिट्रस बायोएंजाइम के जो को मिक्स करके डिश वॉश बनता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी डिश क्लीन करने के लिए। अच्छे हेल्दी सर्फेक्टेंट आप यूज़ करिए, कोकोनट बेस्ड आते हैं मार्केट में, उनको मिला के आप बढ़िया डिश वॉश बना सकते हो जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है।
1: जी जी, कपड़े धोने के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि वॉशिंग पाउडर्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स की जगह आजकल लिक्विड्स आ गए हैं, पॉड्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं सबके घर में और मशीन्स के साथ ये भी लिखा होता है कि आप इस तरीके का ब्रांड या इस टाइप का वॉशिंग पाउडर यूज़ करें। लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊँ या फिर आज भी गाँव की बात करूँ तो वहाँ पर इन लिक्विड्स या पाउडर्स की जगह आज भी रीठे का इस्तेमाल होता है।
2: जी,
1: तो रीठा जो है वो ना केवल बालों के लिए यूज़ होता है बल्कि कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मैं जब बायोएंजाइम की बात कर रही हूँ तो मैं इसे बनाने का फॉर्मूला नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रीठे का इस्तेमाल कपड़ों को साफ़ करने के लिए और मशीन में डाल के साफ़ करने के लिए कैसे हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। और अगर बायोएंजाइम भी इसमें कुछ अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगर आप इन पाउडर्स से कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ा तो साफ़ हो गया लेकिन इतना झाग जो नाली में गया उसके बाद आपकी बॉडी पे कई बार वो पाउडर जो है या वो जो वॉशिंग लिक्विड है वो कहीं ना कहीं एलर्जी भी कर जाता है बहुत सारे लोगों के केसेस में।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ बहुत आ रही है।
1: तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी।
2: जी बिल्कुल, आप रीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं और रीठा कई तरह के से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यूज़ करती हूँ रीठे का भी बायोएंजाइम बना लेती हूँ, जो बायोएंजाइम बनाने का प्रोसेस बताया मैंने आपको उस तरह से रीठे को भी मंगवा के बायोएंजाइम उसका बना लेती हूँ।
1: अच्छा।
2: और दूसरा सिट्रस जो बायोएंजाइम बनाया है मैंने उसमें रीठा भिगो के पानी के साथ उसको भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप रीठे के 4-5 पॉड 6 पॉड एक सॉक्स में या किसी कपड़े में बांध के मशीन में डाल दीजिए, वॉशिंग मशीन में, और साइट्रस बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए उसमें। तो एक फुल लोड वॉशिंग मशीन में अराउंड 100 ml साइट्रस बायोएंजाइम और 5-6 पॉड रीठा आप डाल दें, ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास बनाया हुआ है रोज़ बायोएंजाइम, तो रोज़ बायोएंजाइम ऐड कर सकते हैं,
1: खुशबू भी आ जाएगी,
2: खुशबू भी आती है और कपड़ों के सॉफ्टनर का भी काम करता है।
1: अच्छा
2: जी,
1: ओके। तो ये रीठा जो है इसको कैसे डालें हम इसमें, क्या भिगो के डालना होता है या ऐसे ही डाल दें, किस किस तरीके से?
2: दोनों तरीके से आप डाल सकते हो। एक तो रीठे के सूखे जो पॉट्स होते हैं उनको एक मोजे में बांध दीजिए ताकि वो वॉशिंग मशीन में ना जाए, और बस उसके टब में रख दीजिए और 2-3 वॉश में वो आराम से काम करेगा।
1: अच्छा, मतलब 5-6 रीठा लें।
2: हाँ।
1: जैसे उसको पील से, कवर में से निकला हुआ जो होता है, जिसको अगर
2: पानी कवर में के साथ भी है तो भी ठीक है।
1: अच्छा,
2: बस उसको आपको मिक्स नहीं करना है, किसी कपड़े में अच्छी तरह से बांध दे ताकि वो निकल के बाहर ना आए, और साथ में आपने साइट्रस बायोएंजाइम और रोज बायोएंजाइम ऐड कर दिया उसमें।
1: अच्छा।
2: और फिर आप चला दीजिए साइकिल फुल, और आपका जो कपड़ा होगा, लेकिन हाँ, जो बहुत दाग धब्बे हैं वो नहीं क्लीन होंगे, उनको आप पहले से अलग से रगड़ दीजिए।
1: जी
2: हाँ, जैसे हम नॉर्मली
1: बेसिक
2: करते
1: जो कपड़े धोते हैं,
2: बेसिक
1: वो एकदम साफ
2: कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाएंगे।
1: तो लोगों को ये भी थोड़ा सा डाउट होगा कि क्या झाग बनेगा, क्या प्रॉपर सफाई होगी, तो क्या रीठे से झाग बनता है, ये मैं आपसे जानना चाहती
2: हूँ। रीठे से झाग बनता है, बहुत माइल्ड झाग बनता है, और अगर आपको झाग ज्यादा चाहिए लेकिन अच्छे झाग चाहिए, तो कुछ कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट आते हैं मार्केट में, वो भी हम आपको बता सकते हैं जब आप कभी ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बायोएंजाइम बनाना शुरू करो, उसके बाद अगर आप फर्दर अपने घर के यूज़ के लिए और अच्छा प्रोडक्ट बना चाहते हो तो उसको आप ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है, वो ट्रेनिंग लेके आप शुरू करो। अगर आपको वो भी अच्छा लगता है, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग है, फर्दर गाइडेंस है, तो आप उस पर आ सकते हैं
1: जी।
2: तो आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आप सिर्फ बोल के या रेडियो पे सुन के नहीं सीख
2: जी
1: सकते
2: नहीं,
1: इसको
2: नहीं।
1: जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, आपको ज्यादा क्लियर होगा नहीं।
2: बिल्कुल, बायोएंजाइम्स क्योंकि एक लिविंग प्रोसेस एक तरह से है, क्योंकि बैक्टीरियाज है इसमें, तो इनको समझना, इनका सीखना, इनकी जो इफेक्ट है उसको देखना,
1: जी जी,
2: वो एक अपने आप में लर्निंग है
1: जी।
2: तो एक्सपीरियंस से ही आती है ये, लेकिन हाँ, बेसिक जो बनाना है वो बहुत आसान है, आप शुरू करिए बनाना और इस्तेमाल करिए, आपको आई एम श्योर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर कहीं डाउट है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी से, या मुझसे भी कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे।
1: जी जी, सुचेता जी, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, लेकिन एक और बहुत अच्छी सी, जो दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है बायोएंजाइम की, जो बेसिकली आपके घर से कॉकरोच, छिपकली, चींटियाँ, ये सब गायब करने में मदद करता है, और इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि छिपकली को भगाना स्पेशली मानसून या गर्मी में एक टास्क होता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क होता है। सो मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग इससे इत्तफाक रखते होंगे, जिनके घर में चींटियाँ बहुत आ जाती हैं और कॉकरोचेस बहुत आ जाते हैं, तो वो कैसे इसको?
2: जी, जिंजर गार्लिक चिली जो है बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट होता है हमारे घर में, लोग पहले भी इनको पानी में भिगो के 4-5 दिन रख के, फिर भिगो के फिर उसका पानी इस्तेमाल करते थे। अब हमने इसको बायोएंजाइम के फॉर्म में बना दिया, और इसका इफ़ेक्ट जो है मैंने देखा है अपने पर्सनल उस पर, कि इस यूज़ करने के बाद छोटी चींटियाँ तो आनी बिल्कुल भी बंद हो गई।
1: अच्छा।
2: और लिजर्ड वगैरह रेगुलर यूज़ के साथ नहीं आती हैं।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ उन कोनों में आके बैठ जाती हैं,
2: हाँ,
1: वहाँ
2: पर मैं हर 2 दिन में स्प्रे कर देती हूँ। एक पर्टिकुलर उसका डाइल्यूशन है, डिपेंड अपॉन कितना ज़रूरत है।
1: मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमें 1.5 लीटर के करीब बॉटल बनानी है, तो या 1 लीटर के करीब हमें बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे?
2: जी, अगर आपका प्लांट्स के लिए आपको बना डालना है, तो उसमें मुश्किल से आप 10-20 ml डालिए। अगर बहुत ज़्यादा वो है तो फिर हम अलग से उसको एक्सपेरिमेंट करके करते हैं, लेकिन घरों के लिए अगर हम चींटियों और लिजर्ड्स के लिए बनाते हैं, तो 1/4 ही काफ़ी है बायोएंजाइम, और उसमें फिर आपने पानी ऐड किया और उसको छोड़ दीजिए करीब 4-6 घंटे।
1: अच्छा
2: हाँ, और पानी भी मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है बैटरी वाला पानी यूज़ करें प्रोडक्ट्स बनाने में।
1: ओके
2: या इस तरह से तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं
1: जी।
2: ये आरओ वाटर बहुत अच्छा, देख लीजिए।
1: जैसे इसमें हमें जिंजर डालनी है, गार्लिक डालना है और चिलीज,
2: चिली हरी मिर्च, जो हरी मिर्च डालिए और उसका
1: और इनको कट करके डालना है, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा काट के या कूट के डालना है,
2: कूट के डाल दीजिए। okay. कट करके डाल दीजिए, छिलके सही डालिए,
1: और इसमें भी गुड़ जाएगा
2: जी।
1: ओके okay. यानी अगर हम 300 ग्राम लेते हैं इन तीनों चीजों को, हाँ। और 100 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर पानी के जार में इसको डाल के छोड़ देना है 45 दिन तक ऑलमोस्ट छोड़ देंगे इसको, या इसको कम दिन के लिए छोड़ सकते
2: हैं। नहीं नहीं नहीं, पूरा 45 डेज या फुल आप 90 डेज करिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है।
1: ओके 90 डेज
2: के लिए ही मैं प्रिफर करूंगी रखने को, कहूंगी। और नीम का बायोएंजाइम बना सकते हैं आप, मारी गोल्ड का बायोएंजाइम बना सकते हैं, तुलसी का बना सकते हैं, ये सब इंसेक्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं,
1: जिनके घर में मच्छर, कॉकरोच, छिपकली और
2: रेगुलर यूज करेंगे तो आई एम श्योर। मैं आप सिट्रस बायोएंजाइम भी रेगुलर यूज करेंगे तो काफी हद तक कीड़े कम हो जाएंगे। अपनी मॉपिंग में अगर आप केमिकल यूज भी करते हो तो भी आप एक ढक्कन बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए, अपना नहाने के पानी में एक ढक्कन बायोएंजाइम ऐड कर दीजिए।
1: अच्छा,
2: तो ये थोड़ा सा एक तरह से आपको पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप पे इम्पैक्ट करेगा।
1: यानी देखिए, नेचुरल चीज़ें बनी हुई हैं, फ्रूट से बनाए, सब्जियों से बनाए, तो ऑफकोर्स बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेगा। फर्मेंटेड है आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फर्मेंटेड खाना भी अगर आप खाते हैं तो वो आपके गट को कितना स्ट्रांग रखता है। सो अगर आप फर्मेंटेड चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में करें, अपने नहाने के पानी में करें, अपने घर को साफ रखने के लिए करें, अपने प्लांट्स के लिए करें, तो उसका भी एक ज़बरदस्त लेवल का फ़ायदा होता है।
2: और अभी बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी और भी लोग जो है वो लेक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ में खेतों में इस्तेमाल हो रहा है बायोएंजाइम, तो ग्रो जो उसकी यील्ड पैदावार हो रही है उसमें काफ़ी फर्क दिख रहा है, और किसानों को पेस्टिसाइड्स भी कम यूज़ करने पड़ रहे हैं।
1: जी जी,
2: तो इस तरह से हर तरह से एयर पोल्यूशन के लिए भी इससे इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से हर तरह से हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बायोएंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और भी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, रिसर्च हो रही है, बट आई एम श्योर कि आगे चल के ये काफी सक्सेसफुल होंगी।
1: जी जी, सुचेता जी, अब चलते चलते बस इतना ही जानना चाहूंगी, ये बायो एंजाइम्स बनाने के लिए जगह कितनी चाहिए होती है, क्योंकि आजकल सब ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, स्पेस इतना होता नहीं है, कई बार आपके पास एनवायरमेंट नहीं होता है इतना रखने के लिए, तो कैसे रखें इसको, इतनी जगह भी तो चाहिए होगी।
2: मैम ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, आप अगर रेगुलर अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 5 लीटर का एक डब्बा ले लीजिए, उसमें आपका करीब 3 लीटर बायोएंजाइम बन जाएगा 3 महीने में। उसको छान के पतली, ये जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल आती है उसमें रख लीजिए, और उसके बाद उसी जार में फिर से एक बैच डाल दीजिए, आपकी इतनी ही जगह लेगा वो। जब तक आप अगले ये 3 महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जो छाना हुआ 3 लीटर है काफ़ी है आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए।
1: अच्छा,
2: और उसके बाद फिर आप जब तक वो ख़त्म होगा आपका नया बैच रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप
1: तो एक कोना ही चाहिए,
2: एक छोटा सा कोना आपके घर का, जैसे अचार डालते हो आप,
1: हाँ।
2: एक कोने में रख देते हो, उसी तरह से ले रख सकते हो, और बनने के बाद तो आप अंदर कहीं

0: करते हैं सुचेता जी, अगर हम एक आपसे एक प्रोडक्ट लेते हैं, किसी से भी हम एक बॉटल बायो एंजाइम लेते हैं, जो प्लांट केयर फर्टिलाइजर हो या फिर फ्लोर क्लीनर हो, और 500 ml की बॉटल अगर हम लेते हैं, तो क्या इसका प्राइस क्या होता है? क्योंकि अक्सर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट में, या फिर हम जो भी चीज़ें लेते हैं नेचर फ्रेंडली, सो कॉल्ड पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी, ये सारी चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो बहुत महंगी लगती हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगी है। अगर कोई चीज़ 150 रुपये की मार्केट में मिली है, तो ये ऑर्गेनिक के नाम पर वही चीज़ 400 रुपये की मिलती है
1: जी। इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा लेबर की होती है, जो बनता है, छानना, बनाना और उसको रेडी करना।
0: जी जी,
1: तो सारा लेबर है, मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर, तो वो काफ़ी होता है। और मैं जो फ्लोर क्लीनर अपना देती हूँ, नॉर्मली 150-160 रुपए के बीच आता है वो 1 लीटर। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो आराम से एक 3-bedroom फ्लैट में 2 महीने चल जाता है। नॉर्मली आप एक 5 लीटर की बॉटल
0: डालेंगे तो हाँ, बहुत लंबा चलता है।
1: तो आप उसका, अब ये जो है प्लांट के लिए जब हम लेते हैं, तो मुश्किल से 15 दिन में हमारा 10-15 ml यूज़ होता है। और अगर हमने वेजिटेबल वॉश के लिए यूज़ किया, तो वही पानी फिर हम प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है। तो अगर एक बॉटल आपने ली भी है, थोड़ी महंगी भी आपको पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाती है, सब कंपनसेट हो जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ लोग 5 लीटर से कम का फ्लोर क्लीनर नहीं लेते हैं, और वो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है। ये मेरी एक बॉटल लोग लेते हैं, वो आराम से 2 महीने बाद बोलते हैं कि हमारा फ्लोर क्लीनर ख़त्म हो गया, दूसरा दे दो। तो एक तरह से बचत भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है
0: जी।
1: और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे डिश सोप है, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट वो भी आप ये देखिए कि अगर आप उसका जो हार्मफुल इफेक्ट के कारण जो डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं, वो कितनी महंगी पड़ जाती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल ये सही आपने बोला कि जो खाने में आप देखिए, खाना हम कितना भी साफ बना लें, अगर हम बर्तन ऐसी चीज़ से धो रहे हैं जिसमें केमिकल है, तो वो सब कुछ वैसे ही हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप अगर खाना ऑर्गेनिक खा रहे हैं, तो आप अपने बर्तन जो क्लीन करवा रहे हैं, वो भी डिश वॉश ऐसा लें जिसमें किसी भी तरीके के कोई केमिकल ना हो। और ये जो हम बायो एंजाइम्स की बात करें, ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट होता है
1: जी,
0: घर पे बन जाता है, आपके बर्तनों को साफ रखता है, आपकी हेल्थ को ठीक रखता है, नाली में जब जाता है तो किसी तरीके का कोई पोल्यूशन वाटर में नहीं फैलाता है।
1: और तो और मैम, ये 1 लीटर बायो एंजाइम जब नाली में जाता है, तो 1000 लीटर पानी को साफ करता है।
0: क्या बात है, मतलब ये गंदा नहीं करता, ये साफ करता है।
1: साफ करता है, कुछ हद तक उसकी जो BOD COD लेवल है उसको इम्प्रूव करता है।
0: क्या बात है। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये STPs जो होते हैं, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, उनमें भी बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उनको साफ किया जाता है,
1: किया जा रहा है, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रोसेस होता है।
0: तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल की साइंस है, जिसको समझ के अगर आपने इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया, तो ये जो बातें हो रही हैं बड़ी सारी कि क्लाइमेट चेंज और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोशिश तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा बेहतर करने की।
1: बिल्कुल होगा मैम, हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा।
0: बिल्कुल, और सारे घर अगर इस तरीके से इस्तेमाल करें चीज़ें, और सारी जो लेडीज़ होती हैं हमारे घरों की, जो एक्चुअली में घरों को मैनेज करती हैं, अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचें, खुद नहीं बनानी है तो एटलीस्ट परचेज करें प्रोडक्ट्स इसी तरीके के, क्योंकि आपके घर में आपके परिवार को फिट रहना है, आपको फिट रहना है, पर्यावरण को फिट रहना है, तो थोड़ा सा एक आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुचेता साहू जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत सारी बातें आपने बायो एंजाइम के बारे में बताई। दोस्तों, अगर आप इस पर्टिकुलर बायो एंजाइम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर 8010781078 पे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं आप बायो एंजाइम के बारे में क्या जानना चाहते हैं। हम आपके सारे प्रश्न सुचेता जी तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उनके जवाब आप तक लेकर आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, और मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर लोग इसको सीखेंगे और यूज़ करेंगे। मैं अवेलेबल हूँ उनको मदद करने के लिए हर तरह से
0: जी,
1: तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए
0: जी। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में, आज हमने बायो एंजाइम्स के बारे में जाना, वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़ा ये कार्यक्रम है जहाँ पर कूड़ा निस्तारण के बारे में हम बात करते हैं, कैसे उसको किस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कूड़े को, या फिर उसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बायोएंजाइम एक ऐसी ही चीज़ है। घर में आपके बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलकों से बनने वाले कुछ ऐसे लिक्विड्स जो आपके पर्यावरण को ठीक रखते हैं, आपके घर में फ्लोर क्लीनर, वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए, आपके प्लांट्स को ठीक रखने के लिए फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में एकदम नेचुरल

और सेफ प्रोडक्ट है, और इसके बारे में आज बहुत कुछ हमने जाना है सुचेता साहू जी से, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक्सपर्ट हैं। केयर बायो एंजाइम नामक एक ब्रांड है इनका, जिसमें ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो अगर आप भी इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर ओ पी भल्ला फाउंडेशन का, इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड का। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM है दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ओगन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ओगन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं ऑर्गन इंडिया की सीईओ सुनैना सिंह, जो बात कर रही हैं सीमा बिंदल और पंकज बिंदल से, जिन्होंने अपनी बेटी के अंग दान किए थे। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में एक बार फिर से नमस्कार। मैं सुनैना सिंह हूँ और आज के शो में मेरे साथ हैं एक बहुत हिम्मत वाले माँ बाप, जिनकी कहानी आज हम सुनेंगे उनकी जुबानी। सीमा जी और पंकज बिंदल जी, आपका हमारे शो में स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: मैं आप दोनों से कई बार मिल चुकी हूँ और आपने अंगदान की शपथ लेने के लिए बहुत लोगों को प्रेरित किया है और खूब काम किया है इस विषय में, और हर बार मुझे ये महसूस होता है कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आपका अंगदान के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आपने अपनी 16 साल की बेटी सुरभि के एक्सीडेंट के बाद उसके अंगदान किए थे। तो सबसे पहले सीमा जी, सुरभि के बारे में कुछ बताइए।
3: सुरभि जो कि एक बहुत ही होनहार लड़की थी और अपना सेल्फ स्टडी में विश्वास रखती थी, और उसका हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि पढ़ाई में अव्वल आना। कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा उसका सपना था कि सीए बनकर मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करूंगी और उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगी। पर कुदरत को मंजूर नहीं था और उसकी एक दुखद हादसे में ब्रेन डेथ हो गई।
2: पंकज जी, सुरभि के बारे में आप कुछ बताएंगे प्लीज।
4: सुरभि एक अच्छी बेटी थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ वो सीए भी करना चाह रही थी, किसी कारणवश वो सीए ना कर पाई।
2: तो आपके और भी बच्चे हैं?
3: मेरा एक बेटा है वंश, जो कि सुरभि से 12 साल छोटा है और वो अब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। बट जो सुरभि के साथ अटैचमेंट मेरा उस समय से लेकर जब से वो पैदा हुई थी और आज तक भी उसी के साथ अटैचमेंट है, वो मैं अपने बेटे के साथ अभी तक भी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मेरी सुरभि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी जिसने अपने माँ बाप का हमेशा सुख में और दुख में साथ दिया है। उसने कभी भी जिद वाली बात नहीं की, जैसा भी है जो भी है उसी में सेटिस्फाइड थी। कभी ज़िंदगी में कुछ मांगा नहीं, कभी उसने हमसे जिद नहीं की कि नहीं मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, वो जितना चाह जो था उसी में अपना काम चला लेती थी।
2: तो उस दिन जिस दिन सुरभि का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन क्या हुआ?
3: रोज़ की तरह मैं अपने बेटे वंश को लेने जा रही थी, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम हुआ और मैंने कहा अम्ब्रेला दे, अपनी बेटी से अम्ब्रेला मांगा था। उसने कहा मम्मा मैं पढ़ रही हूँ और नहाई भी नहीं हूँ अभी, तो आप ऐसा कीजिए अम्ब्रेला मैं ही लेके चली जाती हूँ, क्योंकि आप गीले हो जाओगे और आपको नहाना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने भी कहा ठीक है बेटा आप चले जाओ, और वो दो कदम की दूरी पर ही गई थी कि सामने ही एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसके 5th टॉप फ्लोर से एक वॉल उस पर गिर गई, जो कि मेरे बिल्कुल सामने आंखों के सामने ही ये सब हुआ, जिसको उस समय सुन हो गया दिमाग कि ये हुआ क्या है। हम उसको फिर पास में हमारे हेडगेवार हॉस्पिटल था, गली में कोई मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, मेरे हाथ पैर फूल रहे थे कि मैं करूँ क्या, मैं चीख रही थी चिल्ला रही थी लेकिन कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था उस समय। फिर मैंने बैल बजाई, अपने घर की ही बैल बजाई, मेरे हस्बैंड घर में ही थे, तो वो नीचे फटाफट आए और देखा कि माजरा क्या है, और हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे वंश की उस समय वैन आ चुकी थी तो हम फटाफट से उसको उसी में लेके हेडगेवार पहुंचे।
2: पंकज जी, आप जो पहले आप अस्पताल में थे, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे फिर उसके बाद हुआ क्या?
4: हम इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे कजन ब्रदर भी काम करते हैं, तो उनके द्वारा हमने अपनी बेटी के बारे में उसका इलाज करवाया, लेकिन ये क्रिटिकल मामला होने के कारण इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा हम वहन नहीं कर पा रहे थे। तब इसको ऑल इंडिया ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ ले गए थे वहाँ के हॉस्पिटल का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि हमारे को एम्बुलेंस भी नहीं मिली वहाँ पे, और एम्बुलेंस हमने अपनी मंगवाई और डॉक्टर भी हम अपने रिलेटिव के थ्रू ही गए, और काफ़ी परेशानी के बाद में जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो ड्राइवर भी ऑल इंडिया ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में होने के बावजूद उसको ऑल इंडिया ट्रॉमा सेंटर का एड्रेस भी नहीं मालूम था। तो ये सब काफ़ी दिक्कतों के बाद हम अपनी बेटी को ऑल इंडिया ट्रामा सेंटर उसी दिन 2 घंटे के अंदर ही वहाँ इलाज कराने की कोशिश की, किसी कारणवश वो सही नहीं हो पाई, और जिसके कारण हमें अपनी बेटी का अंगदान करा। लेकिन उसमें भी थोड़ी समस्या थी कि अंगदान के बारे में हमें पता नहीं थी, बेटी का डॉक्टरों ने बोला कि ब्रेन डेथ है आपकी बेटी की, आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी तो समझ में आती है, लेकिन बच्चे की जब सांसें चल रही होती हैं तो सॉरी का वर्ड समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे कजन ब्रदर होने के नाते उनसे जानकारी ली और पता लगा ब्रेन डेथ इज डेथ, और फिर हमने ऑर्गन डोनेशन में अपना जो भी छोटा मोटा सहयोग था वो देने की कोशिश करी। और हम चाहते हैं सभी व्यक्ति कोई भी हो, सब जानकारी हासिल करके सही जगह अपने किसी भी सदस्य की मृत्यु होने के बाद अगर अंगदान करे तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: जैसे कि आपने बताया कि जब आपको बोला गया कि सुरभि की ब्रेन डेथ हुई है, तो इस वक्त पे लोग समझ ही नहीं पाते कि ब्रेन डेथ क्या है, क्योंकि कभी उनको बताया ही नहीं गया कि ब्रेन डेथ क्या है, और ब्रेन डेथ एक्चुअली डेथ है, वो कोमा नहीं है, वो कुछ नहीं है। और उस वक्त लोगों की सांसें जारी होती हैं क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं। तो आपको कैसे उन्होंने समझाया और आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ ये ब्रेन डेथ डेथ ही है, क्योंकि आपको पहले कुछ मालूम तो था नहीं?
3: ब्रेन डेथ हमें मालूम नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा डेथ हो गई है, और हम बहुत पजल थे कि सांस चल रही है और डॉक्टर कह रहे हैं डेथ हो चुकी है, क्योंकि सभी कहते हैं कि सांस है तो आस है, लेकिन वो हमारी आस टूट रही थी जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब ब्रेन डेथ क्या होता है उसे समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने समझाया हमें कि इसका माइंड काम नहीं कर रहा, और माइंड जो है वही बॉडी का मेन पार्ट होता है, और जब वो उसको कंट्रोल उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि आपकी बेटी की ब्रेन डेथ हो चुकी है और आप इसके ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए। तब हमने फिर उसके ऑर्गन्स डोनेट किए।
2: आपको उन्होंने समझाया कि इसके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं जब ब्रेन डेथ हो चुकी है, जब वो मर चुकी है?
3: उन्होंने बस यही बताया कि इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, इसके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है तो इसलिए अभी इसके जो ऑर्गन्स हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं और वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको वेंटिलेटर से हटा देते हैं तो ये आप इसको घर ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाकर भी आपका कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये इसका और माइंड जो है वो अब बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, और जब माइंड ही नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगी, सिर्फ एक लाश की तरह पड़ी रहेगी, जो कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे सामने पड़ा हुआ है। हम अपनी बेटी को ऐसे तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने कहा नहीं डॉक्टर आप इसके ऑर्गन्स डोनेट कर दे।
2: तो सीमा जी, एक बार आपने हाँ कर दी अंगदान के लिए, उसके बाद क्या हुआ?
3: एक बार हाँ करने के बाद मुझे बस यही था कि मेरी बेटी के अंग जिसको भी लग रहे हैं वो प्रॉपर वर्क करें, और अगर मेरे पास मेरा बच्चा वापस नहीं आ पा रहा है तो कम से कम उन माओं का बच्चा, उन माओं के लाल तो उनकी गोदी में खेलेंगे जिनके जिनके बॉडी में इसके अंग लग रहे हैं। और कम से कम मुझे इस बात का बहुत सुकून मिलता है जब मैं सोचती हूँ कि आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो आज अपनी आँखों से, अपने दिल से, अपने किडनी लीवर लंग से कहीं ना कहीं तो सांस ले रही है, और बहुत खुशी होती है इस बात की, क्योंकि जाना तो सबने हैं, भगवान ने जो सांसें होती हैं वो लिख कर भेजी होती है कि कितनी लेनी है, तो जाना तो सब ने है। आज मैं भी अगर इस समय यहाँ पर आपके सामने बोल रही हूँ तो सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी के अंगदान किए हैं, और उसके ऑर्गन्स जो है वो वेस्ट नहीं किए मैंने, उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया और उनको किसी ना किसी रूप में वो काम कर रहे हैं। हम अपना पैसा भी होता है वो जीवन रूपी बैंक में जमा, हम बैंक में जमा करवाते हैं ताकि वो फले फूले। तो ये तो ऑर्गन्स हैं और वो किसी के जीवन रूपी बैंक में जमा हुए हुए हैं जहाँ पे वो फल फूल रहे हैं, वो और ज़्यादा हमारे लिए हिम्मत की बात है और हमें सुकून मिलता है इस बात से।
2: पंकज जी, आपके ये डिसीजन के बाद आपकी फैमिली में किसी ने बोला कि आपने क्यों किया और आप कैसे कर सकते हो?
4: असल में मैं अपने घर में इकला हूँ और रही बात मेरे रिलेटिव की, रिलेटिव में किसी से मेरी कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आपने जो करा बहुत अच्छा करा। हमारे घर में परिवार में किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, चाचाओं में मामाओं में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाज के कुछ तत्व, कुछ व्यक्ति गली मोहल्ले के जिनको समझ ना होने के कारण कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अपनी बेटी के अंगों को बेच के आए हैं, जिनके लिए लोगों को सोचने समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कभी किसी व्यक्ति किसी अपने का कोई ऐसी घटना में जिसको अंग की जरूरत हो और वो अंग ना दे पाए, उसको ना मिले, तो उसको पता लगेगी कि अंग बेचे कैसे जाते हैं और खरीदे कैसे जाते हैं। ये समाज को जो गली मोहल्ले के होते हैं उनको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और सोचेंगे तो आने वाले भविष्य में अपने बारे में भी सोचें, कभी ना हो किसी को भी ऐसी परेशानी हो। ये एक हमारे देश में अवेयरनेस की भी कमी है कि जिसकी वजह से लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है ये, और कुछ करना नहीं चाहते कि हमारे को आँखें दे दी तो आँखें नहीं मिलेंगी अगले जन्म में। आपका भविष्य यही है, यही दिन है, यही रात है, आप प्रेजेंट टाइम को लेके चलिए, भविष्य आपका अपने आप सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं फिर एक बार कहता हूँ, जब तक आपको पता ना हो आप सारी बातें झूठी अफवाहें ना फैलाएं किसी व्यक्ति के बारे में भी।

0: सीमा जी, हॉस्पिटल में एक बार आपने हाँ कर दी अंगदान के लिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वहाँ पे? सब डॉक्टर्स के साथ जो वहाँ थे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनके साथ?
1: जैसा कि आप सबको पता ही है कि डॉक्टर्स वगैरह लेडीज़ के साथ बात करने में झिझकते हैं, क्योंकि एक माँ बहुत उस समय उस स्थिति में होती है कि बात भी नहीं कर सकती, बात माँ क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो डॉक्टर्स ने मुझे तो कहा कि मैडम आप बाहर चले जाइए, लेकिन हम उस कंडीशन से गुजर रहे थे कि हमें अपनी बेटी का पता चल रहा था कि 10% चांस है, तो बात समझ आ रही थी। और मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप बताइए क्या कंडीशन है, तो उन्होंने फिर समझाइए नहीं मैडम प्लीज़ आप चले जाइए बाहर, मैं सर से बात करता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो खुद ही बहुत जल्दी है ना एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने कहा नहीं सर बताइए आप। तो डॉक्टर ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डेथ है, तो हमने जब हाँ कर दी तो डॉक्टर्स फिर भी पूरी टीम जो थी वो लगी रही उसके लिए कि मैम अभी 5 घंटे का एक टेस्ट हो रहा है, हम वो टेस्ट करेंगे, भगवान का कोई चमत्कार कोई ऐसा हो जाएगा कि शायद आपकी बेटी सही हो जाए। तो उन्होंने फिर भी टेस्ट किया, एक दवाई और उसके माइंड से ना उसमें एंटर की गई, लेकिन फिर भी भगवान को मंजूर नहीं था कि वो हमारे पास वापस आए।
0: आपको अस्पताल में वेट करना पड़ा जब तक सारे अंग निकाल दिए गए, और उसके बाद क्या हुआ?
1: जब हमने एक बार हाँ कर दी उसके बाद है ना डॉक्टर्स वगैरह मैच करने के लिए कहने लगे कि अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में है और हम घर आकर आराम से बैठ जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं हम हैं यहीं पर ही हैं, आप कीजिए जितना भी टाइम लग रहा है, कम से कम 20-25 घंटे हम वहीं हॉस्पिटल में, मेरा छोटा सा बेटा था 3.5 साल का, हम उसको लेकर, वो उसको भी है ना कहीं पर हमने नहीं छोड़ा क्योंकि हम लोग अकेले हैं अपनी फैमिली में, तो हमने उसको अपने साथ ही रखा और जो भी टाइम लगा उसका हमने वेट किया, और जब उसकी सुबह हमें उन्होंने बॉडी दी तब हम उसे लेकर घर आए।
0: आप दोनों लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, उनको अंगदान के बारे में कुछ नहीं मालूम, ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको?
1: मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये हमारे अंग हैं वो बाज़ार में मिलने वाले प्रोडक्ट नहीं हैं, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इसलिए भगवान की देन है और इसे आप मिट्टी में मिला देते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के कि आगे फ्यूचर में ना करे भगवान हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे उस समय, क्योंकि इतनी आसानी से मिलने वाली प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम है ना इनको वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान ना करे जरूरत पड़ने पर हम कहाँ से लेंगे, इसे सिर्फ आंसू ही बहाएंगे, तो इसके लिए आपको सबको सोचना पड़ेगा और एक एक कदम मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि इस चीज़ की कमी हमारे जो देश में है वो पूरी हो सके और कोई भी हमारे देश में अंगों के अभाव में ना मर पाए।
2: मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अंग देने चाहिए, अंग देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंग देने में सही जगह दीजिए जिसको आप जानते हो, जैसे जो भी डिपार्टमेंट में आप देना चाहते हैं, हमने अपने अंग गवर्नमेंट ही संस्था ऑल इंडिया एम्स में और वो डिपार्टमेंट है वहाँ दिए थे, ऐसे ही आप भी अवेयरनेस होके उसकी जानकारी लेके अपने बच्चों के या कोई भी व्यक्ति का जिसको भी अंग देने वो देने की जरूर आवश्यकता है, आप जरूर दीजिए।
1: मेरी बेटी सुरभि जो है उसके अंगों से 8 लोगों की जिंदगी बची है। अब आप सोचिए कि एक माँ आजकल के ज़माने में सिर्फ 1-2 बच्चों को जन्म देती है और कितनी खुशी होती है कि मेरी बेटी ने तो 8 लोगों की ज़िंदगी बचाई है, और वो भी जो लोग मरने की कगार पर हैं, जो वेट कर रहे हैं इन अंगों की, और जो ये ऐसी स्थिति में है कि वो इसके बिना लाचार हैं और तिल तिल करके मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बचाना कितना बड़ा काम है। तो बहुत सुकून है इस बात का कि वेस्ट ना करके उसको हमने एक ऐसे इंसानों के शरीर में डाला हुआ है ताकि वो फल फूल रहे हैं, वेस्ट नहीं हुए।
3: थैंक यू सुनैना। मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
4: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहाँ सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, Feel Good, Feel Life।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो लेकर आता है आपके लिए बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे इंटरव्यूज और साथ ही लेकर आता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने भी जिसे सुनकर आप खुश हो जाते हैं और आपकी खुशी देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत सारी बातों के साथ साथ गाने का सिलसिला भी हमारा चलता रहता है। इसी के साथ मैं आ गई हूँ लेकर प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, लाइफ में सक्सेस सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, आप खुद सोचिए ना। हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, कोई कामयाबी हासिल कर ले या फिर कुछ अपनी लाइफ में कर ले और कुछ बन कर निकले। दोस्तों, ये बात तो सच कही है, जरूरी नहीं होता कि सबके पास सब कुछ हो तो इंसान सब कुछ तभी कर पाता है। नहीं, मैं आपके साथ ना बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किसी के पास कुछ ना होते हुए भी उसने कितने संघर्ष से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से सब कुछ हासिल कर लिया। तो बस लाइफ का ना यही मोटिव रखना चाहिए कि बस आप ना अचीव करने के ऊपर ध्यान दो, आप बस मेहनत करने पर ध्यान दो। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। आप बस काम करिए, मेहनत करिए, सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज भी आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए बहुत सारी बातें, जहां पर आज हम किसी की जर्नी के साथ चलने वाले हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, आज हम बी आर अम्बेडकर की जर्नी के साथ चलने वाले हैं। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी लाइफ से हम मोटिवेशन लेने वाले हैं कि ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर हम खुद आस छोड़ देते हैं पर अगर सामने कोई इंसान आ जाए और अपनी बातों से अगर हमें मोटिवेट कर दे, हमें भी अंदर से हौसला आ जाता है कि यार हम भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए आपके लिए जर्नी लेकर आ जाती हूँ और ये सिलसिला पूरा एक घंटे का रहता है, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारी गाने भी सुनते हैं। तो चलिए इसी के साथ अभी सुनाऊंगी मैं आपको बहुत ही प्यार सा गाना, उसके बाद हम इस जर्नी पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पर उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, और साथ ही एक संकल्प के साथ एक कहते ना इतिहास रच दिया। और आज की हमारी कहानी है भारत के एक ऐसे महान विचारक की, एक ऐसे समाज सुधारक की, अर्थशास्त्री की, राष्ट्र निर्माता की, जिनका नाम भारत के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा, लिया जाता है, और आगे भी सम्मान से लेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं B.R. अंबेडकर की, जिन्हें पूरा देश बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानता है। दोस्तों, हर महान सफलता की कहानी की शुरुआत किसी न किसी संघर्ष से ही होती है। बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म हुआ 14th of April 1891 को, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता रामजी मौलजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा करते थे और शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वता भी देते थे। बचपन से ही बाबा साहब एक तेज और जिज्ञासुक विद्यार्थी थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उस समय भारत में सामाजिक असमानता और भेदभाव गहरा था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें कई कठिनाई, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अलग अलग व्यवहार का सामना भी करना पड़ा था। ये अनुभव किसी भी बच्चे का हौसला तोड़ सकता है, लेकिन बाबा साहेब ने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जी हाँ, जितनी मुश्किलें उनके सामने आती गई, उतनी ही उनकी पढ़ाई के प्रति लगन और ज्यादा बढ़ती गई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। इसी सोच ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब कई लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, तब कुछ लोग उन्हें बदलने का संकल्प ले लेते हैं। जी हाँ, बाबा साहेब उन्हीं लोगों में से एक थे। दोस्तों, बचपन की कठिनाइयों ने उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत ज्ञान और शिक्षा से ही होगी। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यहीं से हमने बाबा साहेब अम्बेडकर का पहला सक्सेस मंत्र भी मिल गया। जी हाँ, वो ये है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती है, बल्कि सोचने, समझने और अपनी जिंदगी को बदलने की एक ताकत होती है। जी हाँ, इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरती स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की बचपन के बारे में, उनके शुरुआती संघर्षों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उनके अद्भुत सफर की, जो उन्हें भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक बनाता है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि अगर जिंदगी में सच्चा बदलाव लाना है तो उसका रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। जी हाँ, इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और समर्पण के साथ जारी रखा। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिनस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया। उस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन बाबा साहेब के सपने भी इससे और ज्यादा बड़े थे। उनकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की। जी हाँ, ये स्कॉलरशिप उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसकी मदद से बाबा साहेब को अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। जी हाँ, अमेरिका पहुंचकर उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जैसे विज्ञानों का गहरा अध्ययन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से समझा। वहाँ उन्हें एक ऐसा वर्ताप मिला जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत और योग्यता से होती थी। इस अनुभव ने उनकी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन बाबा साहेब का सीखने का जो सफर यहीं नहीं रुका, वो अमेरिका के बाद भी इंग्लैंड गए थे। वहाँ पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की, साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। इतनी कठिनाइयों के बावजूद लगातार पढ़ाई करना उनके संकल्प का प्रमाण था। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सीखने की इच्छा हो और मेहनत करने का जज्बा होना, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं होती। उन्होंने ज्ञान को सिर्फ अपनी सफलता का जरिया नहीं बनाया, बल्कि समाज में बदलाव लाने का माध्यम भी बनाया है। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का दूसरा सक्सेस मंत्र भी मिलता है, नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा तरक्की के दरवाजे खुलते जाएंगे। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम B.R. अंबेडकर की जर्नी के साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक की शिक्षा यात्रा को पूरी की और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का उद्देश्य सिर्फ खुद सफल बनना नहीं था, बल्कि उनका सपना था कि एक ऐसा समाज बनाना जहां पर हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय मिल सके। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद जब बाबा साहेब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में असमानता और भेदभाव की समस्याएं अब भी मौजूद थी। उन्होंने फैसला किया कि जो ज्ञान और अनुभव उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से प्राप्त किया है, उसका उपयोग वो समाज के हित में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा की महत्वता के बारे में बताया, शिक्षा से जागरूक करना सिखाया, और उसके बाद उनका मानना था कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो लोगों को शिक्षित और सशक्त बनना बहुत जरूरी होगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कई लेख लिखे, भाषण दिए और सामाजिक जागरूकता के अभियान भी चलाए। साल था 1924, जिसमें उन्होंने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य था कि शिक्षा पर प्रसार, सामाजिक जागरूकता, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। बाबा साहेब ने हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई जिसे समाज में समान अवसर नहीं मिल पा रहा था। उनकी एक और खास बात थी कि वो समस्याओं की सिर्फ आलोचना नहीं करते थे, बल्कि उनके समाधान भी प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सोच के साथ साथ संगठित प्रयास भी बहुत जरूरी है। इसी वजह से धीरे धीरे लोग उनकी बातों को सुनने लगे और उनके विचारों से प्रेरित होने लगे। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि नेतृत्व करना हो। असली लीडर वही होता है जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है और उन्हें अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित भी करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी उद्देश्य को समर्पित कर दिया। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का तीसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी समाज के हित के लिए भी करते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आज स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम चल रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जर्नी के साथ। बहुत सारी सीखें मिल रही हैं हमें, बहुत सारे सक्सेस मंत्रा मिल रहे हैं उनकी लाइफ से। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में हमने जैसे उनके बारे में जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए किया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विचार रखना ही काफी नहीं होता है, कभी कभी बदलाव लाने के लिए हिम्मत के साथ खड़े होना भी जरूरी होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही किया। जी हाँ, उस दौर में समाज में कई ऐसी परंपराएं और व्यवस्थाएं मौजूद थी जो लोगों के बीच में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती थी। बाबा साहेब ने इन समस्याओं को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ आवाज भी उठाई। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। फिर आया साल 1927, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे महत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस आंदोलन का उद्देश्य था सार्वजनिक

उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कई बार जब कोई व्यक्ति पुरानी सोच को चुनौती देता है तो उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मुश्किलों और विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उनका फोकस हमेशा एक ही भारत का निर्माण था, जहां पर हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल सके। उनकी लीडरशिप ने लोगों को ये सिखाया कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। उनका संघर्ष सिर्फ एक समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता तैयार कर रहा था। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का चौथा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो हिम्मत के साथ उसके लिए खड़े होना भी जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से नहीं, बल्कि उनके लिए संघर्ष करने से परिवर्तन आता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सक्सेस मंत्रा में बात करी बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलनों और समानता के लिए किए गए संघर्ष के बारे में, इसके बारे में हमने जाना। लेकिन अब बात करते हैं आगे इस सेगमेंट में उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय। ये वो अध्याय था जिसने उन्हें भारत का सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में शामिल कर दिया था। जी हाँ, जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था तब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे, न्याय सुनिश्चित करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। इस महान जिम्मेदारी के लिए बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। जी हाँ दोस्तों, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। भारत एक विशाल और विद्वताओं से भरा हुआ देश था। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियां थी। ऐसे में एक ऐसे संविधान बनाना जो सबको साथ लेकर चले, एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने गहरे अध्ययन, कानूनी ज्ञान और दूरदर्शी सोच का उपयोग करते हुए संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब देश के हर व्यक्ति को अवसर और सम्मान मिलेगा। फिर आया दिन 26th of November 1949। जी हाँ, भारत का संविधान अपनाया गया। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं था बल्कि एक नए भारत का सपना था। एक ऐसे भारत का जहाँ पर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार हो, अपनी प्रगति का मौका हो और कानून के सामने सब समान हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये भी सिखाया कि किसी भी राष्ट्र की ताकत उनके नागरिकों और उनके संस्थानों में होती है। इसलिए उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र और कानून के प्रति सम्मान की बात की है। दोस्तों, आज जब हम जिस भारत में अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं उसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके सहयोगियों के वर्षों की मेहनत छुपी हुई है। इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का पांचवा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है कि बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों को मिलती है जो तैयारी, ज्ञान और ईमानदारी के साथ उन्हें निभाने की क्षमता रखते हैं। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे और भी बातचीत हमारी बाकी है जिसे हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर यानी कि B.R. अम्बेडकर की जर्नी के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई और एक ऐसे भारत की नींव रखी जहाँ न्याय, समानता और स्वतंत्रता को महत्वता दिया गया। और अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी विरासत, उन्हें मिले सम्मानों और उनके विचारों की, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने समय में महान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन के बाद भी कई पीढ़ियों तक बना रहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और महान अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है, इसीलिए उन्होंने हमेशा लोगों को पढ़ने, सीखने और जागरूक बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सामाजिक स्थानों में चर्चा का विषय बना रहता है। और उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। ये सम्मान उनके द्वारा राष्ट्र और समाज के लिए किए गए अमूल्य योगदान की पहचान है। आज देश के कई संस्थान, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर स्थापित हैं, जो उनकी अमर विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो एक विचारक, अर्थशास्त्री, लेखक, समाज के सुधारक और दूरदर्शी नेता भी थे। उनके विचार हमें आज भी ये याद दिलाते हैं कि समानता और न्याय किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और सबसे खास बात तो ये है कि उनकी सीखें सिर्फ इतिहास की किताबों में ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के युवाओं के लिए उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण भी है। खुद को शिक्षित बनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का सक्सेस मंत्र मिलता है कि आपकी असली पहचान आपके जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और समाज पर छोड़े गए प्रभाव से बनती है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा के प्रेरणादायक सफर में हमने बात करी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनके कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जाना, एक ऐसे बच्चे की कहानी जानी जो कठिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ, एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी जिसने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और एक ऐसे नेता की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी हमें कई ऐसे सबक देती है जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय में थे। उनका पहले सक्सेस मंत्रा है, शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। जी हाँ, बाबा साहेब का विश्वास था कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो लोगों को गलत राहों पर असमानता और असीमित सोच से मुक्त कर सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने और सीखने को महत्वता दिया। दूसरा सक्सेस मंत्र है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, कभी हार मत मानिए। बचपन से लेकर जीवन के कई पड़ाव तक उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष सफलता का विरोध नहीं बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा सक्सेस मंत्र है, अपनी सफलता को समाज के हित से जोड़िए। जी हाँ, बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को समाज को सशक्त बनाने और देश को मजबूत बनाने में किया। चौथा सक्सेस मंत्र है, न्याय, समानता और सम्मान के मूल्यों पर विश्वास रखिए। जी हाँ, उनका मानना था कि एक मजबूत समाज वही है जहाँ पर हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और उनकी गरिमा का सम्मान किया जाए। अब आखिरी सक्सेस मंत्र, जी हाँ, जहाँ पर बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी अपनी सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने सपनों को अपनी पहचान बनाया और कैसे वो आज लोगों में इतने महान व्यक्ति बन गए। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जिंदगी सिर्फ एक इतिहास का एक अध्याय नहीं है बल्कि उनके हौसले, शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक जीवांत मिसाल है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजी स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत, और अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक और ऐसी शख्सियत की कहानी के साथ जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्र मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए, और साथ ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों, हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दोस्तों अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरूह सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरूह इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गाने के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी की है तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया अभी, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानो रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारी देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील Life.

0: वेल हेलो गुड इवनिंग नमस्कार सर श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते। जय हिंद जय भारत। हमारे शो एक मुहिम है, एक पहल है, एक इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको आपके राइट्स के बारे में एटलीस्ट बता पाएं, कानून क्या बोलता है, कानून की व्यवस्था कैसी है आपके लिए, ये देश आपको क्या क्या अधिकार देता है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं सिंपल सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचा पाएं। आज वापस से लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि करंट सिनेरियो में या बीते कुछ टाइम में जो आपने चीज़ें इस देश में सुनी होंगी या देखी होंगी महसूस करी होंगी, उसको देखते हुए ये सवाल आपके दिमाग में आए होंगे। तो आपके उन तमाम प्रश्नों को आज हम यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं। संविधान की बात करेंगे, प्रोटेस्ट की बात करेंगे, कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर दीपक बंसल। दीपक सर इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट मानवरत्न यूनिवर्सिटी। और दीपक सर क्योंकि लॉ के अध्यापक हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खुद अपनी PhD परस्यू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा या इनसे सही कोई इंसान हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर बात करने से। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे दीपक सर का। हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
1: थैंक यू सागर जी, दोबारा आपके पास आने के लिए, बहुत बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। हर बार जब आप लोगों से बात होती है, लॉ डिपार्टमेंट में किसी भी फैकल्टी से बात होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। शुरुआत करना चाहूंगा पहले प्रश्न से। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक शब्द है, लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान को, एक आम नागरिक को इसका सही मायना क्यों पता होना चाहिए?
1: सागर जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझसे। संविधान और संविधान के बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है? संविधान क्या है बेसिकली? संविधान एक ऐसा कागज़ या आप एक मान सकते हो किताब है, जो हमारे पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को काम पूरा चलता उसी के अनुसार है। उसमें जब आप देखेंगे तो शुरुआत से ही पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स डिफाइंड हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3, विच इज़ डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकारों से डील करता है। अब मौलिक अधिकारों में भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अगर किसी चीज़ में माना जाए तो एक जीवन जीने का अधिकार है, एक समानता का अधिकार है, एक बोलने का और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को रखने का अधिकार है। इसी के लिए हमने अपना पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, इसी के लिए नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब की यही लड़ाई थी कि हमें अपनी बात रखने का और हमें समान रखने का एक मिल सके। तो संविधान में वो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो निहित हैं। और मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं? मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि उनके हनन होने पर एक कोई भी भारत का नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनके इन्फ्रिंचमेंट के खिलाफ, उनकी जब उनका हनन किया जाए होता है सरकार के द्वारा, तो उसमें पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 32 है उसमें। तो हमारा आर्टिकल 19 जो है संविधान का, वो हमारा बेसिकली जैसे तीन जो मैंने आपको मुख्य राइट्स बताए, आर्टिकल 14 विच डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 विच डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर राइट्स, एंड आर्टिकल 21 विच डील्स विद लाइफ एंड लिबर्टी। तो इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ एंड लिबर्टी है, बट वो लाइफ किस तरीके की लाइफ होनी चाहिए? लाइफ ऐसी नहीं कि केवल जानवरों जैसी ज़िंदगी, वो लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम अपनी कोई बात भी रख सकें समाज में एक हद तक। उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलें, कहीं भी बोलें, कैसा भी बोलें, उसके कुछ नियमित पैमाने हैं। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बोला है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का, एक्सप्रेशन रखने का, अपनी स्पीच का फंडामेंटल राइट है। बट वो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट इन द सेंस आर्टिकल 19(2) उसके साथ हमें पढ़ना पड़ता है, विच प्रोवाइड सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? कि आप जब आपका मन कर रहा है कुछ भी बोलने का, जब आपका मन कर रहा है कुछ भी कहने का, कोई चित्र बनाने का, तो वो इनडिसेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, भारत की अखंडता एकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे किसी फ्रेंडली रिलेशन है जो फॉरेन स्टेट से उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो उसमें ऐसे 8 या 9 के करीब रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड हैं, जहाँ जहाँ अगर सरकार चाहे तो कोई कानून लाके आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक सकती है। विच मीन्स वॉट इन अदर वर्ड्स आई शुड एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस, कि भाई जहाँ जहाँ आपकी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है वो प्रोवाइडेड है संविधान के द्वारा, संविधान उसके बारे में बात कर रहा है, बट वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं।
0: मतलब एज इट इज नहीं है,
1: एज इट इज एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी बोलना। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस इसलिए भी की गई हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो कहीं दूसरे को परेशान ना करने लगे। आपको बोलना है, अधिकार है, दैट्स फाइन एंड इनफ, बट दैट शुड नॉट इन अ वे डिफेम द अदर पर्सन, दैट शुड नॉट इन अ वे इन्फ्रिंजिंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दैट शुड नॉट you know go against the sovereignty and integrity of India. So that reasonable restrictions are being there, but predominantly jitne bhi aaj tak hamare jo samvidhan nirmata hain, jab inko banaya bhi gaya tha samvidhan ke is article ko, to shuruaat mein ye reasonable restrictions zyada nahi the, bahut thode the. Jaise ek public order hai, public order kya hota hai, पब्लिक ऑर्डर हमेशा कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कागज पे लिख दिया कि ये पब्लिक ऑर्डर है. पब्लिक ऑर्डर बहुत एक तरीके से सब्जेक्टिव चीज है. सब्जेक्टिव चीज मतलब हो सकता है किसी पुलिस वाले के मन के अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार धारा 144 पहले होती थी सीआरपीसी की, 144 सीआरपीसी जो हम बोलते कहते थे धारा 144 लग गई, दो या दो से आज़ाद आदमी नहीं रह सकते, एसडीएम डीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगाता था उसको. वो अब 163 बीएनएसएस हो गई है क्योंकि अब हमारे यहाँ नया क्रिमिनल लॉ आ गया, भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, तो उसका 163 सेक्शन है, वो डील करता है, सेम है, सेम वर्डेड है 144 और वो. अब 163 में भी ये ऑर्डर पास किया जाता है बाय द गवर्नमेंट कि अगर हमें लग रहा है भाई ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उदम होने की संभावना है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो वहाँ आप जाके अपना धरना या अपना प्रदर्शन या अपना कुछ और ना करें. दैट इज बीइंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन दैट सेंस. तो जो सरकार है वो हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ऊपर रखने की कोशिश करेगी और जो अभिव्यक्ति है, जो नागरिक है, वो हमेशा अपनी आज़ादी को, तो एक तरीके का मतलब दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज में एक टकरावट है, और इन टकरावों को किस, फिर कोई एक जज भी होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि भाई ये सही है या ये पैमाना सही है, उसको हम जजेस के पास छोड़ते हैं, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स पे, देन देयर आफ्टर दे विल डिसाइड कि भाई क्या सही है या किसके साथ तक ऑर्डर जो पास किया गया वो सही था या किसके साथ तक जो ऑर्डर पास किया गया वो गलत है. तो संविधान, मोर ओवर जो आपका प्रश्न जहाँ से शुरुआत हुई कि संविधान हमारा है क्या, तो संविधान में सारे हमारे अधिकार निहित हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी है, राज्य को भी उनकी शक्तियाँ मिलती हैं जिस तरीके से वो अपने काम को परफॉर्म करना चाहते हैं, बट नागरिक की जो राइट्स हैं उनको भी उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है.
0: बहुत सुंदर. अभी आपने एक बात बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन में अगर कुछ इमोरल हो रहा है, ठीक है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि उसको रोक सकती है,
1: मोरालिटी डिसेंसी ग्राउंड,
0: ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कानून के हिसाब से या संविधान के हिसाब से या कोई और ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट, क्या है डेफिनेशन इस इमोरालिटी?
1: जैसे अब ये जो मोरालिटी है, मोरालिटी और डिसेंसी, जैसे कपड़े पहनना, और ये इसके तीन अलग अलग टेस्ट थे. जैसे इंडिया में भी एक कानून है इनडिसेंसी के ऊपर, अगर आप आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है, अगर कोई अभद्रता करते हैं. अब जैसे उसके भी टेस्ट हैं जो कोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे हिकलिन टेस्ट होता है, हिकलिन टेस्ट, HICKLIN, हिकलिन टेस्ट. एक होता था कंटेम्प्रेरी सोशल मोरालिटी टेस्ट. जैसे फ्रांस में जो कंटेम्प्रेरी मोरालिटी है वो अलग है, इंडिया में वो अलग है. जैसे फ्रांस में आप PDA करते हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ का सभ्यता, वहाँ की संस्कृति उस टाइप की है. बट यहाँ अगर आप PDA करते हो पार्क में या कहीं और, सो इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ अ न्यूसेंस बिकॉज द मोरालिटी इज समवॉट सब्जेक्टिव इन इट्स अप्रोचेस. तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हम अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं और सरकार बोल रही है कि आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये इनडिसेंट है, ये इमोरल है, ये आप डिफेमेशन कर रहे हो, या सरकार की जो सुवरेनिटी, भारत की अखंडता, संप्रभुता के ऊपर हमला कर रहे हो, अगर सरकार ने ये बोला तो वो उन चीज़ों से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे बारंबार किसी नागरिक की. इस मोमेंट पे उस नागरिक के पास क्या बचता है, क्योंकि नागरिक सरकार के खिलाफ तो कुछ, सरकार इतना माइटी पावरफुल, पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके पास है, नागरिक के पास कुछ नहीं है. इसलिए इस मोमेंट पे उनको ये मौलिक अधिकार मिला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और ये मौलिक इसलिए है कि अगर ये कभी इन्फ्रिंज होता है सरकार के अननेसेसरी मनमाने तरीके के ऑर्डर पास करने पे, तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट्स में 226 में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भाई जनाब ये जो आप मेरे खिलाफ जो सरकार का ऑर्डर पास किया गया है ये बिल्कुल ही गलत है, हम अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, चुपचाप पीसेबली प्रदर्शन कर रहे हैं. क्योंकि उसमें जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो उसमें 6 राइट्स हैं नीचे. 6 में सबसे पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दूसरा है फ्रीडम टू फॉर्म, टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, ऐसे करके कि आप कहीं पे भी एकजुट हो सकते हैं बिना किसी हथियार बंद के, मतलब आराम से चुपचाप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सत्याग्रह करना चाहते हो तो करो, लाठी वाटी चाकू वाकू ये ना लेके जाए। लेकिन अगर सरकार को लगने लगा कि ये इसमें कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट भी आ गए हैं आपके पीसेबली, अब ये पीसेबल मतलब वायलेंट होने वाला है या कुछ और, तो वो पब्लिक डिसऑर्डर का बहाना लगा के आपके ऊपर उसको रोक भी सकते हैं आपके स्पीच। तो कहने का मतलब ये इन दोनों के जो टसल है, क्योंकि नागरिक हमेशा ये बोलेगा कि भाई मेरा तो, मैं तो चुपचाप बैठा था। जैसे आज कल का ही जो इंसिडेंट देखिए आप, जो 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ, उस 20 जुलाई के इंसिडेंट में भी पुलिस, दिल्ली पुलिस का ये कहना है या जो प्रशासन का ये कहना था कि भाई मिसक्रिएंट एलिमेंट्स आर बीइंग देयर इन द प्रोटेस्ट इन दैट सेंस, एंड द प्रोटेस्टर्स वर सेइंग कि हम तो अपना पीसफुल मार्च कर रहे थे। तो यही एक मतलब एक तरीके का टसल है बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस। पुलिस नेसेसरी जो जो मतलब कह सकते हैं एक बल का या किसी और तरीके का जो रीजनेबल फोर्स दे कैन यूज अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, सो दैट और लोगों का डिसऑर्डर क्रिएट ना हो समाज में और लोगों को कोई परेशानी ना हो इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ ऐसी परिस्थितियों में ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है हमें, और इसका बेस्ट भी ये है कि जजेस को और अपना व्यू पॉइंट रखते हुए देन दे हैव टू यू नो डिसाइड दीज केसेस की सरकार की गलती है या कहाँ किसी आदमी की गलती है। इस पे हम देख दो जजमेंट्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी इनके बारे में, जो बहुत बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं जिनके हमें जानना जरूरी है।
0: फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बहुत रोचक टॉपिक है। मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा इसी में आशा करता हूँ। नहीं आ रहा है तो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइट्स की बात हो रही है। केवल यहाँ पर मेरा व्यू या किसी और इंसान का व्यू नहीं चल रहा है, यहाँ पर प्रॉपर राइट्स की बात हो रही है। एग्जैक्टली जो चीज़ें मायने रखती हैं हमारे संविधान के हिसाब से। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि अभी वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल गो फील life.

0: वेलकम बैक, मैं आरती सागर शो चल रहा है सत्यमेव जयते। उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। हमारे साथ है मिस्टर दीपक बंसल और यहाँ पर हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है, लेकिन आपके हिसाब से एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, फॉर एग्जांपल एक इंसान है मेरे जैसा जो वोकल है थोड़ा सा, जो अगर गलत को आवाज़ देना चाहता है या चीज़ों के लिए बहुत वोकल है, जागरूक रहता है, अपने आसपास करंट अफेयर्स में बहुत अप टू डेट रहता है, मेरे जैसे लोगों को क्या क्या राइट्स हैं जो पता होने चाहिए, नॉन नेगोशिएबल, संविधान देता है हमें?
1: ये सचमुच में बहुत आपका बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और मैं चाहता था ये चीज़ बोलना एट द एंड ऑफ आवर शो, बट ये जो मौलिक अधिकार हैं आपके सारे, इनको हम ब्रॉड कैटेगराइज करते हैं 6 हिस्सों में। ये सारे हमारे बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट हैं और इसमें भी जब हमने अपनी बात शुरू करी तो 3 जो मुख्य फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज़ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार, बोलने का अधिकार और सारी फ्रीडम्स जो हमारी 19 में मेंशनड है, अभी मैं बता भी दूंगा आपको जो 19 में सारी हैं, और 21 का जीवन जीने का अधिकार और आज़ादी से जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी। क्योंकि हमारा प्रीएम्बल भी इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बहुत बात करता है, जो संविधान की सबसे पहली, प्रीएम्बल मींस द प्रस्तुति जिसको हम कह सकते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कॉन्स्टिट्यूट, जो पूरा संविधान की प्रतिलिपि है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इन 4 गोल्स को बहुत महत्वता दी गई है कि इन 4 चीज़ों पर बहुत नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, एवरी सिटीजन मस्ट बी नोइंग इट। क्योंकि हमारी पूरा, आप समझिए जैसे सागर जी, ये थोड़ा विरोधाभास होगा और एज ए संविधान के अध्यापक की नज़र से मतलब गलत होगा कहना, बट हमारा संविधान ना एक तरीके से बैग ऑफ बोरोइंग्स है। हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे दूसरे देशों से अच्छी अच्छी ले ली हैं अपने संविधान में। और जो एक अंग्रेज़ों का संविधान था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको हम कहते हैं, उसमें और हमारे आज के संविधान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए सिस्टम बना रखा था 1935 वाला, उससे हम बहुत सारा मिलता जुलता है। उसमें एक ही चीज़ बहुत अलग है, दैट इज़ पार्ट 3, जो समवट फंडामेंटल राइट्स जो डील करता है पूरा पार्ट। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर समथिंग डिफरेंट एंड दैट टू द 1935 एक्ट, राइट? तो ये चीज़ के लिए ही एक तरीके से आप समझिए कि हमारा पूरा जो आज़ादी की लड़ाई थी इसी के ऊपर थी, बोलना, अपनी बातें रखना, क्योंकि हम बराबर नहीं थे अंग्रेज़ों के। दैट वॉज आर ओनली डिमांड कि जो राइट एक ब्रिटिश सिटीजन को मिलते हैं इंग्लैंड में, हम भी आपके, आप हमारे रैया मान रहे हो हमें अपनी, मतलब एक तरीके के हम भी आप हमारे ऊपर रूल कर रहा है ब्रिटिश क्राउन, तो हमें भी वही सारे राइट्स दो दैट वर नॉट बीइंग अवेलेबल टू अस बिफोर द इंडिपेंडेंस। सो ये हमारी पूरी बुनियादी लड़ाई थी इन हकों को मांगने की। नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल 19, क्योंकि 14 और 21 पूरा ही एक अलग से शो भी बन सकता है इनके ऊपर, इक्वालिटी के राइट के ऊपर, बट 19 जो राइट है ये हमें एक तरीके से आप इसको चेरिश करते हो, जो आप सारे जितने भी आपके राइट्स हैं, जैसे 19(1) मैंने आपको बताई दिया, 1A जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, 19(1B) जो है वो डील करता है आपका टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, 3rd आपका डील करता है टू फॉर्म associations, जो आप associations बनाते हो, cooperative societies and the associations which is being, that is also a fundamental right, कि आप अपने कोई group बनाना चाहते हो मिलके, डूटा, डेली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, स्टूडेंट्स यूनियन बनती हैं या ये संगठन बन जाए, CJP बन गया, कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसका फंडामेंटल राइट है। एवरी सिटीजन इज हैविंग दिस राइट। देन द 4th वन इज राइट टू मूव इन एनी वे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ भारत में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरा मन कर रहा है नागालैंड जाने का, मेरा मन कर रहा है पांडिचेरी जाने का, तो आई डू हैव द फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(d) टू रोम अराउंड एनीवेयर। देन देर इज वन आर्टिकल 19(1)(e) ऑल्सो स्टेट्स की मेरा मन कर रहा है कहीं और सेटल होने का, भारत में ही कहीं पे भी, हमें रहने वाला था ग्वालियर का, फरीदाबाद में आके सेटल हो गया, मेरा मन करे बैंगलोर जाके सेटल होने का, सो आई कैन डू this settlement as well, I can do and can work anywhere as well. And last one is 19(1)(g) जिसको हम बोलते हैं टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जहाँ आपकी मर्जी है, जो आपको प्रोफेशन चूज करना है, ऑक्यूपेशन, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको इसमें नॉन नेगोशिएबल है, मेरा मन कर रहा है डॉक्टर बनने का तो मैं बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता कि ये ही केवल बनेगा या ये नहीं बन सकता, आरजे बनने का मन है तो मैं बन सकता हूँ, सो दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। What important over here is the discussion which we are having us on this point is कि जो आपके मौलिक अधिकारों में भी जो सबसे important मौलिक अधिकार हैं, बोलने का अधिकार, ये बोलने का जो अधिकार है इस पे किसी भी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, एक ये पक्ष है लोगों का। मैं हम देखिए हम यहाँ पे जब बैठे हैं तो हम अपनी ओपिनियंस ना बताते हुए जो कानून के जो ओपिनियन है उसको बताएंगे। मेरी ओपिनियन और आपकी ओपिनियन से देश नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन के ओपिनियन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जी आप अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन करिए, एक्सरसाइज, असेंबल, चुपचाप होइए, कोई लाठी वाठी रखे नहीं, कोई कट्टा बारूद ये सब रखे नहीं, पिस्तौल वगैरह। बट इसके साथ साथ जो सरकार आपके ऊपर कोई जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मीन्स आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन नहीं। आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन होता है कि मेरा मन कर गया इस लाइन के आगे नहीं जा सकते, मेरा मन कर गया जंतर मंतर पे ही रहोगे, इसके आगे नहीं जा सकते। वो चीजों के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू है तो सरकार अपने मतलब जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करती है फ्रीडम्स के ऊपर तो उसमें उनको रीजनेबल होना जरूरी है। यस एस कोर्ट के जजमेंट्स में भी है, जैसे एक केस है, आपने दो इंस्टांसेस में लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक केस है अमित कुमार का करके, अमित कुमार वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का 2020 का, जो शाहीन बाग का जजमेंट था। उसमें यह था कि जैसे शाहीन बाग की जो रोड है, मेन रोड, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया था बाय द प्रोटेस्टर्स एट दैट टाइम, जब OCA NRC का प्रोटेस्ट हुआ था। दैट वॉज ऑल्सो पीसफुल प्रोटेस्ट हैपनिंग एट दैट टाइम। बट जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट से एक पब्लिक जो रोड है दैट वॉज बींग डिसरप्टेड। तो उसमें कोर्ट ने एक पॉइंट दिया अपने ऑब्जर्वेशंस में, जजेस ने, कि देखिए आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको करिए, लेकिन आप पब्लिक रोड को मत डिसरप्ट करिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, बहुत लोग लेट पहुंचते हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में भी होती है और लोगों के ट्रेड ऑक्यूपेशन में भी हो रही है, मूवमेंट में भी हो रही है। तो आपको डेजिग्नेटेड प्लेस अगर सरकार एक कोई दे दे तो वहां पे आप अपना प्रदर्शन करिए, जैसे रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए प्रोटेस्ट। अगर उसमें भी सरकार आपसे मना कर रही है कि हम यहाँ परमिशन नहीं देंगे, आपको करने ही नहीं देंगे एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, तो ये गलत चीज है बाय द गवर्नमेंट एट सच। बट जो पब्लिक प्लेसेज हैं यू शुड अवॉइड गोइंग एट दैट प्लेस। ये पहला केस था। एक केस है अनुराधा भसीन का, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2020 का ही, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें क्या बोला गया है कि जैसे आपने एक चीज़ नई चीज़ देखी होगी जो कल भी हुई, 20 तारीख को भी हुई प्रदर्शन के दौरान, इंटरनेट शटडाउन हुआ सेंट्रल दिल्ली में, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया एक फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 AM, अराउंड 10 AM जब वो प्रोटेस्ट एकदम शुरुआत होने लग गई थी उसके बूमिंग की, और 10 बजे से 3-4-5 बजे तक के लिए उन्होंने विदाउट इवन गिविंग एनी प्रायर नोटिस उसको पैन को इश्यू कर दिया। अब आप एक बात सोचिए, हर व्यक्ति कोई टेम्पलेट या पोस्ट कार्ड लेकर तो घूम नहीं रहा, दे आर नाउ द मीडियम इज द सोशल मीडिया। उस मीडियम को यूज करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? अगर वो इंटरनेट हमारा रुक जाएगा तो हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब वो उस मीडियम को ही उन्होंने रोक दिया तो एक तरीके से इसको भी माना जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। उस रिस्ट्रिक्शन के लिए भी अनुराधा भसीन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि भाई जब कभी भी सरकार को रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ऐसा इंटरनेट शटडाउन करना है या रोकना है, तो उसके लिए पहले होम सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, होम सेक्रेटरी मतलब गृह सचिव, राज्य का भी या केंद्र का, तो दिल्ली तो केंद्र के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, तो उन्होंने कहा केंद्र के गृह सचिव के द्वारा एक ऑर्डर पास होना चाहिए और वो भी पब्लिश्ड होना चाहिए ऑर्डर सब जगह पहले कि हम इतने बजे से इतने बजे तक इसको बंद रखेंगे इंटरनेट को। एकदम से चुपचाप से नहीं कर देना चाहिए सरकार को, बट सरकार पब्लिक इमरजेंसी में इसको कर देती है ग्राउंड बना के। एक टेलीग्राफ एक्ट है हमारा Section 20, उसमें क्या है कि पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे सरकार चाहे तो एब्रप्टली भी कर सकती है, एक मिनट का बिना नोटिस दिए भी कर सकती है, विच इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। तो कहने की बात यह है कि रेस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको बोला, रेस्ट्रिक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, जैसे उन्होंने बोला हम मार्च करेंगे संसद मार्च तक, तो उन्होंने बोला नहीं जी आप संसद तक नहीं मार्च कर सकते, डेजिग्नेटेड प्लेस यही है आपके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, जंतर मंतर, दैट्स इट, इसके अलावा आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो वो जो और लोगों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो बींग डिसरप्टेड। तो पुलिस के हिसाब से भी और जो प्रदर्शनकारी कह रहे कि हम मार्च करेंगे क्योंकि आप हमारी सुन नहीं रहे, संसद का सत्र चलने वाला है, सो दैट इज ऑल्सो बींग अ पॉइंट कि जब कभी भी सरकार, मेनी अ टाइम्स हमने देखा है पहले के भी केसेस में और आज भी, कि सरकार मीडियम्स पे ज्यादा रोक लगाती है, जैसे मीडियम मीन जैसे इंटरनेट इज अ मीडियम, सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करेगी, आपके अकाउंट ब्लॉक कर देगी. सोशल मीडिया इज़ वेरी बूमिंग राइट नाउ बिकॉज हम देख रहे हैं द प्रेजेंट डे सिनेरियोज हैपनिंग. लोग उनसे ज़्यादा एम्बेडेड जर्नलिस्ट से ज़्यादा विश्वास करते हैं ऑन टू द सोशल मीडिया एंड द सोशल मीडिया हैंडल्स आर दिस कॉकरोच जेंडर पार्टी इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया मूवमेंट विच हैपन. सो द पॉइंट इज ओवर हेयर कि सरकार मेनी टाइम्स विल बी इन अ पोजिशन और ट्राई टू यू नो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडियम इन इटसेल्फ लाइक द इंटरनेट or their or on their speech and expression in any other form in the physical forms as well in that sense which is happening here as well in that sense.
0: तो आपने सोशल मीडिया की जो बात बोली, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया पे भी जो मैं बोलता हूँ क्या वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आएगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा अधिकार है ट्वीट करने का, सब चीज़ लिखने का. एक हमारा जजमेंट और है, वो बहुत फेमस जजमेंट है, कोई भी वकील अगर इसको सुन रहा होगा तो, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है 2015 का. उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था. पहले उसमें क्या होता था कि सरकार आईटी एक्ट का एक प्रोविजन है धारा 66A, वो बोलती थी कि अगर आपने कुछ भी ऐसा लिखा इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो थोड़ा सा भी ऐसा लगा जिससे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होने वाला है, तो आप पे FIR दर्ज होती थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यू विल बी बिहाइंड बार्स इन दैट सेंस. बट उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बड़ा गलत प्रोविजन है भाई, कोई आदमी अपनी कोई बात ही नहीं रख पाएगा ऐसे इंटरनेट पे, क्योंकि अब हमारे पास मीडियम क्या है, सोशल मीडिया है. जैसे मुझे भी अगर कुछ चीज़ आपको अपनी ओपिनियन शेयर करनी है तो आप कहाँ करोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल तो हमें लिखने नहीं देगा. सो द बेस्ट वे मैकेनिज्म अवेलेबल विद अस इज द सोशल मीडिया ऑन विच वी कैन शेयर आवर व्यूज एंड ओपिनियंस. दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली. बट इफ गवर्नमेंट ट्राई टू you know impose unreasonable restriction on that account in itself or on that social media platform, then that is considered to be infringement of your right, and then you can seek the help of court as well in that sense.
0: All right, so amazing. तो भैया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, अपनी बात खुल करके रखिए, आपको पूरा अधिकार देता है, आपको संविधान देता है, और अगर बीच में कोई आपको बोलता है तो आपको ये बात जरूर कहनी है कि मुझे अपने अधिकारों के बारे में पता है, तो कृपया करके मुझे ना बताएं, कोर्ट में मुलाकात होगी. फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: होपिंग आपको मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में, आई एम जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है इस म्यूजिकल वाइब के साथ, आई एम जस्ट होपिंग आपको कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर इस शो में। आइए शो को आगे लेकर चलते हैं। दीपक सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत सारी नॉलेज अपने साथ रखते हैं और बहुत सिंपल शब्दों में हमें हमारे जितने भी कन्फ्यूजन, डाउट्स और प्रश्न हैं उनको एड्रेस करके यहाँ पर दे रहे हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मैं थोड़ा सा डिफेमेशन की बात जरूर करना चाहूँगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये टर्म मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बार बोली गई है डिफेमेशन, और बहुत कम इसको समझाया गया है, बहुत कम इसको समझा गया है। क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं डिफेमेशन में जो मैं कहूँगा, अगर मेरी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो रही है फॉर एग्जांपल E20 पेट्रोल डलवा करके, तो मेरे पास फैक्ट है इसका, मैं लाइव एविडेंस आपको दिखा रहा हूँ कि ये हो रहा है, तो क्या इसको डिफेमेशन में डाला जा सकता है?
1: देखिए एक ज़्यादा अच्छा शब्द होगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन पे भी हम आपको मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, बट एक होती कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, एक होती डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है कि आप अपना पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने पेट्रोल का एग्जांपल दिया जो हम बहुत देख रहे हैं आजकल, E20, E50 जाने कौन सा। तो इन सारे सिनेरियोज में भी अगर मैं सरकार की किसी पॉलिसी का एज अ नागरिक, क्योंकि उनकी पॉलिसी से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, उन्होंने ये बना दिया बिना मेरी राय लिए, मशवरा लिए, क्योंकि यूजुअली कोई भी कानून बनता है या कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसका एक नियम है जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं कि आपको पहले उस पर राय मशवरा लेना चाहिए जनरल पब्लिक का, उनके जाए राय मशवरे लेने के बाद आपको अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, आपको मतलब सरकार को, दैट इज देयर ड्यूटी। हियर इन दीज सर्कमस्टांसिस व्हाट इज हैपनिंग विद दिस E20 एंड E10 जो हमारा हो रहा है, पहले E10 पॉलिसी थी देन E20, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति का कोई क्रिटिसिज्म है तो उसको बैश ऑन करके या मतलब ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके, बिकॉज देखिए एक नॉर्मल आदमी मेरे जैसा आपके जैसा, हमारी हैसियत नहीं है सरकार से लड़ने की, सच बात मैं बता रहा हूँ आपको। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद द गवर्नमेंट, यू कैन फाइट विद एनी वन हियर इन इंडिया बट यू कैन नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट, ये बहुत मुश्किल लड़ाई है। जैसे आपको बोलते हैं जैसे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी मतलब माना क्यों जाता है उनको, या क्या उनको ऐसा क्या दिया कहा था उन्होंने जिसके लिए उनको वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय हैं वो व्यक्ति या सम्माननीय है वो व्यक्ति, इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 32 जो मैंने आपको बोला, 32 क्या बोलता है, 32 हार्ट एंड सोल की तरह है संविधान के, आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। आपने एक ओपिनियन रखी, मिनिस्टर ने या कोई एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अपनी एक पॉलिसी निकाल दी, उसके खिलाफ आपने अपनी क्रिटिसिज्म रखी, नाउ दे आर यूजिंग द ब्रूट फोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू यू, स्टेटिंग कि भाई तुमने जो जो बोला उससे हमारी मानहानि हुई, तुमने जो जो बोला उससे पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, तुमने जो बोला उससे संप्रभुता खतरे में आ गई, एंटी नेशनल हो गए तुम, कोट अनकोट, राइट। अब इस परिस्थिति में मेरे पास क्या बचता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार जो कर रहा है वो कर रही है जो मेरे खिलाफ वो गलत चीज है, द वेरी फर्स्ट मोमेंट दे आर अनरीजनेबल, कंसिडर टू बी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे रेस्क्यू में आना चाहिए हाई कोर्ट को, मेरे रेस्क्यू में आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट जो है भारत में वो सरकार के अधीन नहीं है, लग सकते हैं कई लोगों को बट दे आर नॉट, दे आर इंडिपेंडेंट, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तभी जैसे आप कल देखो आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनका बहुत अच्छा जजमेंट आया है अभी अभी, एक उन्होंने ऑर्डर पास किया है अभी 2-3 घंटे पहले, मैंने उनका देखा था, जस्टिस अभय नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अभय पता नहीं आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उन्होंने एक बात कही है कि सरकार का विरोध करना या सरकार के खिलाफ आप अपनी क्रिटिसिज्म भी रख रहे हो, या आप बोल रहे हो कि भाई किसी एक पार्टी को कि भाई फॉल बैक, या आपको मुर्दाबाद के आप बोल भी दिया कि आपने किसी पार्टी को एक्स वाई जेड, आई एम नॉट गोना नेम देम, तो वो क्या किसी तरीके से मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति की जो आप आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर आप सरकार इस तरीके से प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकती कि तुमको एंटी नेशनल कर दे, तुम पे एनएसए लगा दे, या तुम पे कुछ और मुकदमे फाइल कर दे, क्योंकि जब वो मुकदमे फाइल करेंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा उनसे लड़ने के लिए, इजंट इट। तो इधर उन्होंने भी कहा जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, कि देखिए सरकार को भी मतलब पेरेंट की तरह बिहेव करना चाहिए अपने सिटीजन्स के साथ, वो सिटीजन से ही सरकार बनी है, उस सिटीजन के खिलाफ अगर आप जाओगे देन आप बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऑल दो हमारे पास मौका आता है 5 साल बाद वोट डालने का, बट उन 5 साल के बीच में भी आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे नागरिकों के विरुद्ध ही आप चले जाओ इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट. मुझे मौका मिलेगा चुनाव में वोट डालने का, तब मैं अकाउंटेबिलिटी दिखाऊंगा. दैट मेनी ऑफ द पीपल आर सेइंग सो एज वेल. दे आर बिकॉज इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल. वो चिल्लाते नहीं है, वो चुप रहते हैं. जब वो वोट डालने जाएगा देन ही विल से इट लाउडली कि मैंने क्या किया है. वो उसका वोट बता देगा. बट उसके बीच में भी आपकी बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी बनती है. यू नीड टू टेक एक्शंस अगेंस्ट दोज मिनिस्टर्स, अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स एज वेल, जो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किसी की स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि इसको रोकने का मतलब यही है कि कहीं से भी आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा, भारत में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट शटडाउन होता है. हम प्रेस अभिव्यक्ति में सबसे पीछे हैं, बहुत पीछे, पाकिस्तान वगैरह और देशों से भी बहुत पीछे, 140 के आसपास हमारी रैंक है. इसका रीजन क्या है? इट शोज दैट आर डेमोक्रेसी इज नॉट फंक्शनिंग वेल इन अ वे इन दैट सेंस, राइट? बिकॉज डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि केवल चुनाव डाल देना. डेमोक्रेसी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी भी होना. डेमोक्रेसी का मतलब है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट्स को प्रिवेल होने देना. क्योंकि जब ज्यादा बातचीत होगी तभी व्यूज आएंगे, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी, एंड द पीपल आर टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल इनफ टू हैव टू कास्ट देयर वोट्स एज वेल इन द लॉन्ग रन इन दैट सेंस, राइट? तो ये चीज हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, कि भाई आपको बैलेंस ट्रकआउट करें, ज्यादा विचार एंड विमर्श करें पब्लिक के साथ भी एंड देन इन दैट सेंस. और ये जो कानूनों का जो इस्तेमाल करते हैं डिफेमेशन का, अपनी क्रिटिसिज्म को हेल्दी क्रिटिसिज्म लेना चाहिए. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में और मैं पढ़ाता रहा हूँ, कुछ तो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, और मैं उसकी जो क्रिटिसिज्म आ रही है उसको गलत तरीके से ले रहा हूँ. गलत एक तरीका ये है कि मैं उन जो क्रिटिसिज्म आ रही है उनको एब्जॉर्ब करूँ, फिर अपने पढ़ाने के तरीके को सुधारूँ आगे आने वाले क्लासेस में. एक तरीका ये है कि मैं उनसे लड़ाई लड़ूँ. तो लड़ाई लड़ने का कोई पर्पस नहीं होगा. अगर मैं अपने आप को उनकी जो बातें भी आ रही हैं क्लास में बच्चों की उनको सुनूंगा, देन अपने तरीकों को चेंज करूंगा, देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द नेशन एज वेल, फॉर द क्लासरूम एज वेल. दैट इज व्हाट आई फील इज मिसिंग. दैट इज माय ओपिनियन दैट इट इज मिसिंग राइट नाउ इन द सिस्टम एज वेल. दैट शुड नॉट हैपन. वो डिस्कोर्स होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए. जो कोई बोल भी रहा है कि सर मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो उस पर डेफेमेशन मत लगाओ. बिकॉज डेफेमेशन इज समथिंग, जैसे डेफेमेशन आपने पूछा, इन जस्ट टू लाइन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. डेफेमेशन बहुत ओल्ड ब्रिटिश लॉ है. उसकी दो रेमेडीज होती हैं, एक सिविल रेमेडी, एक क्रिमिनल रेमेडी. एक तो आप मुकदमा भी दर्ज करा सकते हो उस पर, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि आपकी जो रेपुटेशन है उसको इंजरी अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक योर प्रॉपर्टी एंड योर बॉडी, तो उस पर आप अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं. पहले आईपीसी में भी था, बीएनएस में भी है, ठीक है? उसमें आप अगर डिफेमेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करते हैं किसी के खिलाफ, तो उसमें आप उसको जेल भेजने की कोशिश ज्यादा करते हैं. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. दूसरा है एक सिविल डिफेमेशन. सिविल डिफेमेशन जैसे आपने सुना होगा 100 करोड़ रुपए का मां नानी का मुकदमा दायर कर दूंगा, 80 करोड़ का कर दूंगा. अरुण जेटली ने जैसे केजरीवाल पे किया था, 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरविंद, जो अरुण जेटली साहब थे, जो लेट अरुण जेटली जी हैं, उन्होंने इन पे किया था अरविंद केजरीवाल पे. तो जब इन्होंने इन पे एक मुकदमा किया तो उसमें केजरीवाल का ट्रायल, मतलब अरुण जेटली का ट्रायल भी हुआ. दैट ट्रायल वाज बीइंग कंडक्टेड बाय राम जेठमलानी एट दैट टाइम. बहुत सीनियर एडवोकेट थे, केजरीवाल ने उनको हायर किया था जेठमलानी को, तो वो विटनेस बॉक्स में था जेटली. वो एक बहुत फैसिनेटिंग सीन था, पुराने 1817-18 की बात है. देन देयर आफ्टर बाद में जब उनको लगा कि इसमें कुछ होना नहीं है, मुकदमे में आगे, तो केजरीवाल ने सॉरी बोल दिया था कोर्ट में. बिकॉज अपोलॉजी इज वन ऑफ द वे ऑफ यू नो सेइंग कि भाई कोई नहीं, अब मैटर सॉल्व करो. कोर्ट भी इसको अलाउ कर देता है इफ यू प्लीड फर्दर. बट डिफेमेशन से बचने के तरीके हैं. जैसे डिफेमेशन कब नहीं माना जाएगा? डिफेमेशन तब नहीं माना जाता जब आप कोई सच्चाई बोल रहे हो, कोई ट्रुथ आप स्पीक कर रहे हो. इन द सेंस जैसे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाला, उस पेट्रोल से ही मेरी गाड़ी खराब हुई, एंड इफ आई एम सेइंग इसमें एथेनॉल मिक्स था इसकी वजह से हो रहा है, और मैं तो एक लेमैन हूं लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो जानता है गाड़ियों के बारे में, ही सेइंग दिस फैक्ट और मेरी गाड़ी खराब हुई है, तो अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो आप मेरे ऊपर डिफेमेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज आई एम स्टेटिंग द ट्रूथ इन दैट सेंस, राइट? ट्रूथ इज अ डिफेंस ऑफ डिफेमेशन. कोई आदमी चोर है, मैं उसको चोर बोल रहा हूं, तो उसमें मैं डेफेमेशन नहीं कर रहा. दैट इज अ रियलिटी इन दैट सेंस, राइट? यू कैन नॉट से दैट भाई. और जैसे गडकरी जी पे कई लोग बोल रहे थे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, या कोई और पे भी कई लोग बोलते हैं इन दैट सेंस, या कई और किसी मिनिस्टर पे भी बोलते हैं कि आपने आपके बेटों की चल रही है, शुगर मिल्स चल रही हैं, ऑल दिस विच इज बींग देयर. तो वो एक ट्रू फैक्ट है. यू कैन नॉट मतलब से कि भाई तेरे पे डेफेमेशन लगा दूंगा. सो एज टू कर्ब हिज स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एक तरीका है डरा देने का दूसरे वाले आदमी को, बट इसमें डरना नहीं चाहिए आदमी को. मतलब इन दैट सेंस ऑल्सो, बिकॉज डेफेमेशन प्रूव करना भी मुश्किल है. आप जब आप ये कोई इससे एक और भी चीज निकल के आती है कि जब भी आप कोई चीज बोल रहे हो अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, तो उसको बैक करो किसी सत्य से, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है. जैसे मैं कभी भी कोई रील शेयर करता हूं तो कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा, देन ओनली आई विल शेयर इट, अदरवाइज आई वोंट शेयर इट. क्योंकि ये भी शो करता है कि भाई आपको पता नहीं था, देन यू आर सेइंग मिसकोटिंग सम अदर थिंग एज वेल रिगार्डिंग द अदर पर्सन, दैट मे टेंटामाउंट टू डेफेमेशन इन दैट सेंस, राइट.
0: ओके, ये बहुत सुंदर बात आपने बोली कि आप रील शेयर करते हो, फैक्चुअली वो करेक्ट होती तो आप उसको शेयर करते हो. व्हाट इफ समवन इज शेयरिंग एंड देयर इज नो फैक्ट दैट इज बैकिंग इट, क्या वो इलीगल हो जाता है?
1: हाँ, वो एक तरीके से कंसिडर किया जाता है कानून की निगाह में. जैसे आजकल आप जानते हो ये जो डीप फेक वीडियोस, इंटरनेट एआई के थ्रू दे आर क्रिएटिंग वीडियोस, अब उसमें कुछ भी उल्टा सीधा आपने बना लिया. जैसे कल का ही एक इंसिडेंट का, परसों के इंसिडेंट का था कि नसीरुद्दीन शाह है जो फेमस एक्टर हैं, नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने उसको प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया, जबकि नसीरुद्दीन शाह अपने घर पे बैठे वो उनका किसी एक थिएटर का वो था सीन, तो उन्होंने उसकी क्लिप लगा के बोल दिया कि दैट सीजेपी के प्रोटेस्ट को ही इज ज्वाइनिंग. तो कई लोग उसको रीशेयर कर रहे हैं. सो दिस इज इन अ वे कंसिडर्ड. अब अगर नसीरुद्दीन शाह चाहें अगेंस्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल्स की मैं तो था नहीं उसमें प्रोटेस्ट में, ना मैं कुछ कर रहा था, आप मेरा नाम क्यों उछाल रहे हो, इन दैट सेंस. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सेइंग कि ये गलत चीज स्प्रेड नहीं करना चाहिए. बिकॉज एक जैसे द सोशल मीडिया इज जस्ट एन एम्पलीफायर, इट स्प्रेड्स द लाई एज वेल और द ट्रूथ एज वेल, दोनों को बढ़ाता है ये, इसका काम यही है. तो जो सच है अगर वो चीज समझ में आए, सब लोगों को दिखे, देन इट इज परफेक्टली फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर कोई झूठ है तो उस झूठ पे तो फिर आपके ऊपर मुकदमा, फिर आपको फिर तभी रीजनेबली यू हैव टू चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. ऐसा नहीं कि किसी के बारे में भी आपने कुछ भी गलत बोल दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, एंड देन यू कैन से नहीं नहीं ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी थी, ये नहीं है, सॉरी टू से. बट वहां आपकी अभिव्यक्ति की आजादी रुकेगी, क्योंकि आपका आपकी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है वो दूसरे व्यक्ति का भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, राइट. दैट इज द बैलेंस व्हिच यू नीड टू स्ट्रक इन ऑफ इन दैट सेंस.
0: सो अमेजिंग. हालांकि प्रश्न मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन समय की हमारे पास एक सीमा है, तो इसलिए अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा. कंक्लूड करते हुए मुझे इतना समझ में आया मोटा मोटा कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, और कोई इंसान सामने से आए हुए भारी भरकम शब्द का प्रयोग करता है, हमें लगता है कि अरे बाप रे ये क्या कर दिया हमने. एक सहमा सा माहौल बन जाता है, वो ना बने इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने अधिकारों को पहले तो जाने पहचाने कि आपके अधिकार क्या हैं, कानून क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है. दैट इज रियली रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सलाह दूंगा आप सभी को, एक बार अपने जीवन में संविधान जरूर पढ़िएगा. संविधान इस देश का, इस आजाद भारत का एक मूलभूत आप कह सकते हैं कि सोर्स है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है. आप ये कह सकते हैं कि एक अधिकार जो आपको मिलता है नागरिक होने का, या जो प्राउडली बात बोल पाते हैं कि मैं इंडिया का नागरिक हूं, तो वो जो इंडिया आप जो टर्म यूज कर रहे हो वो आपको संविधान में उसका सही से एक जवाब मिलेगा कि क्यों आप इंडियन हो एंड क्या क्या अधिकार हैं आपके इंडियन होने के साथ साथ. ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी, तो ये जरूर करने की कोशिश करिएगा कभी मौका मिले तो. बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर.
1: थैंक यू सर सागर सर, आपने मुझे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दिया दोबारा से. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड कोई भी अगर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा हमारे जितने भी श्रोतागण है कि मानव रचना यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ में देर इज दिस लीगल एड सेल, जहाँ पे हम इस टाइप का अगर कोई आपका इशू भी है देन वी आर डीलिंग विद दैट एज वेल. तो अगर आपको भी कोई और गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं एंड टू सी आर लीगल एड सेल एज वेल, इट इज़ फंक्शनिंग वेल. सो
0: मानव रचना यूनिवर्सिटी में
1: स्कूल ऑफ लॉ जी ब्लॉक में चलता है,
0: जी ब्लॉक में चलता है, हर रोज चलता है.
1: हाँ जी जी, हफ्ते में एक दिन एडवोकेट भी आते हैं उसमें. सो इट इज बीइंग देयर, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वी आर हियर एज वेल. सो
0: बहुत उम्दा. तो सर ने भी बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई केस करने की धमकी दे रहा है, कोई केस कर चुका है आपके ऊपर, तो यहाँ पर लीगल एड में आप आ सकते हैं डेफिनेटली. यहाँ पर क्योंकि हमारे इतने काबिल प्रोफेसर, सारे अध्यापक जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एडवोकेट्स भी आते हैं. सो डेफिनेटली मानव रचना यूनिवर्सिटी जी ब्लॉक. फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो के यहाँ पर खत्म करने का. आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा. आज के शो से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी. संविधान के बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है. हालांकि संविधान इतना छोटा शब्द नहीं है कि मैं एक शो में इसको समअप कर सकूँ. बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट कोशिश करेंगे लेयर बाय लेयर हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेकर के चलें। फिलहाल अपने शो को यहाँ पर विश्राम देना होगा। नाउ दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। सशक्त महिलाओं से मिलवाने का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं की कहानियाँ सुनाती हूँ जिन्होंने सशक्तिकरण का मार्ग चुना है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नुपुर माथुर। डॉक्टर नुपुर माथुर एक MBBS डॉक्टर हैं और सेवा की राह पर इस तरीके से चल रही हैं कि क्या कहने। ना सिर्फ ये जो गरीब लोग होते हैं या हमें कहना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उनके लिए सलाह लेकर जाती हैं, एडवाइस लेकर जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस लेकर जाती हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें सेहत का एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा देने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: हाँ नमस्ते भावना जी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा विशेष है नहीं मुझ में जितना आपने बताया है, बट स्टिल आई थिंक।
3: तो डॉक्टर नुपुर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं?
4: हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण शायद हर व्यक्ति सोच में एक अलग अर्थ रखता है, और जैसा कि हम सोचते हैं, एक आम आदमी ये सोचता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ पैसे से रिलेटेड है या महिला काम कर रही है या नौकरी कर रही है उससे रिलेटेड है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। सशक्तिकरण से अगर आप वैसे अर्थ ले तो महिला शक्ति, देखिए शक्ति तो महिला में होती है, नारी शक्ति का हमारे में तो हमेशा से रहा है, तो उस शक्ति को थोड़ा सा एक सही अर्थ देने को शायद सशक्तिकरण कहा जा सकता है। और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह पर स्त्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। तो सशक्तिकरण इस माध्यम से हम देखें तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक स्वयं की जो भावना है जो नारी में होनी चाहिए, उस भावना को लेकर कुछ भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए जो भी कार्य वो करना चाहे उसको हम नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं।
3: हालांकि
4: हाँ, एक बड़े तौर पे देखा जाए अगर किसी देश के लिए या विश्व के लिए तो यही देखा जा सकता है कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कमा सकती हैं। पर अगर इंडिविजुअल अप्रोच देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही रिलेट किया जाना चाहिए।
3: वाकई बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नुपुर आपने। और मैं ये कहती हूँ महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिए वो आजादी है जिससे वो अपना जीवन जी सकती हैं, क्योंकि परेशानी है कि महिलाएं अपना जीवन नहीं जी पा रही हैं। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर एक लंबे समय तक बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती रहती हैं। दोस्तों वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर से। डॉक्टर नुपुर की वैसे तो पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन पर्सनल प्रैक्टिस में ये इतनी सारी महिलाओं की मदद करती हैं कि क्या कहने। भाई मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि महिलाएं जो है ना वो अपनी बीमारियों को छुपाती रहती हैं, और जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं होता ना वो बाहर डॉक्टर के पास तो जाती ही नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर नुपुर हैं, आई एम श्योर इस बात से तो वो बिल्कुल अग्री करती हैं। डॉक्टर नुपुर मुझे बताइए ना कि आज के टाइम की महिलाओं का क्या खास चैलेंज है।
1: हाँ, ये बात आपने सही कही है कि महिलाएं नहीं आती हैं आसानी से डॉक्टर्स के पास। इसका एक कारण जो ये है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या इवन जो लोअर क्लास है उसमें इतनी विजिलेंस नहीं है। लगता है कि एक छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो है कि पैसों की कमी होती है। जो लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए और जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है उसमें पैसों की काफ़ी कमी होती है। तो हमेशा महिलाओं का पहला प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, उनको पहले आगे रखें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इसका इलाज करा दें। फिर एजुकेशन है जिसमें आजकल काफ़ी पैसा चला जाता है, तो उसमें वो अपना योगदान दे देती हैं और उनकी बीमारी थोड़ा पीछे रह जाती है। और एक दूसरा कारण यह है कि कुछ हद तक औरतें अपनी बात बहुत आसानी से नहीं कह पाती हैं सबसे, ख़ास तौर से जो अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं उसके साथ उनके पति का कोई बहुत विशेष योगदान नहीं होता है और इस तरह से वो पीछे रह जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों मैं तो महिलाओं से हमेशा से ये बात कहती हूँ, इतनी सारी महिलाएं फिलहाल मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी, जीवन तो आपका है और इस जीवन का ख्याल रखना भी आप ही का काम है। तो अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बना पाएंगी। जरूरी है कि अपनी खुशियों पर भी ध्यान दें। जहां पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वहां अपने आप को भी प्रायोरिटाइज जरूर करें। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆப் சுன் ரே ஹே ரேடியோ மானவ் ரஷ்னா 107.8 எஃப்எம். மே வாழ் ஜே பாவ்னா ரேடியோ மானவ் ரஷ்னா 107.8 எஃப்எம் பர் ஆப் சுன் ரே ஹே ப்ரோக்ராம் வி யானி விமன் எம்பவர்மெண்ட், மகிளா சசக்திகரண். ஜப் மே யே கேத்தி ஹூன் நா சசக்திகரண், சோ ஏசா லக்தா ஹே மஹிலாவோ மே பஹுத் சாரி சக்தி ஹோதி ஹே. லேக்கின் யே ஜோ சக்தி ஹே நா, யே தரஸல் சேனலைஸ் கஹீன் ஓர் ஜகஹ் ஹோ ரஹி ஹே. மானி வோ சக்தி ஹே தோ வோ பூரே பரிவார் கோ பாலனே கே லியே சக்தி ஹே. சக்தி ஹே தோ பஹுத் சாரே தர்த் கோ என்டியோர் கர்னே கி சக்தி ஹே. சக்தி ஹே தோ அச்சே டிசிஷன் லேனே கி சக்தி ஹே, லேக்கின் உசே சஹி ஜகஹ் இம்ப்ளிமெண்ட் கர்னே கா மௌகா நஹீ மில் ரஹா ஹே. தோ மே ஹமேஷா கேத்தி ஹூன் மஹிலாவோ கோ யே மௌகே மில்னே சாஹியே. आज हम डॉक्टर नुपुर से बात करें. डॉक्टर नुपुर माथुर अगर देखा जाए तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन दिल में इनके बिल्कुल मदर टेरेसा की जैसे ही बहुत सारा प्यार है. इतने सारे लोगों की ये मदद करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश में तो बहुत कम है. डॉक्टर नुपुर, अब मैं ना आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी. क्या आपके समय में डॉक्टर बनना आसान था? और अगर मैं आज तक की आपकी पूरी जर्नी देखूं तो कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया जिसको आप आज जीवन के इस पड़ाव पर बैठकर ये कहें कि यस, मैंने ये एम्पावरमेंट भरा डिसीजन लिया?
1: थोड़ा मुश्किल सा प्रश्न है. खैर, जर्नी मेरी कुछ बहुत कठिन नहीं रही, क्योंकि एक शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था. माता पिता दोनों शिक्षा वर्ग से थे और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हम जहाँ रहते थे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैंपस था, तो चारों तरफ देखा जाए तो शिक्षा ही शिक्षा थी. फादर भी मेरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, मदर लेक्चरर थी. तो ये हमेशा देखते चले आए कि हमसे सीनियर, हमारे से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो या तो उस टाइम पर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और ये दो ही चार थोड़ी अच्छी वाली शिक्षाएं कही जा सकती थी. तो थोड़ा सा प्रयत्न करा, कुछ बहुत विशेष नहीं, पर हाँ उस टाइम PMT एग्ज़ाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट करके, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर पढ़ाई भी ख़त्म हो गई. और उसके बाद हाँ यह ज़रूर था कि शादी हमेशा माँ बाप सोचते थे कि एक सही समय पर हो जाए. तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा मैं पीछे रह गई थी, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी. लेकिन फिर शादी के बाद यहाँ दिल्ली आई और उसके बाद लगा कि पिछड़े वर्ग को और भी समाज को ऐसा लगा कि एक MBBS डॉक्टर की अपनी अलग पहचान है. तो फिर मैंने वही परस्यू कर लिया और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड का एक क्लिनिक था तो मैं उसके साथ ही जुड़ गई और फिर बस तब से शायद चली रही है गाड़ी.
0: वाओ, बट भाई देखिए, ये एक बहुत एम्पावरिंग सी जर्नी है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत सारी महिलाएं नहीं ले पाती हैं. और आपने ये डिसीजन लिया, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि आज आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है. आज जब आप उनके इलाज करती हैं, आज जब आप उनके पास जाती हैं, उन्हें सलाह देती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके जीवन को टच कर रही हैं और उनके जीवन को बदलकर उनके जीवन को और भी खुशमय बना रही हैं. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. दोस्तों, वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का. फील गुड, फील लाइफ.

0: असल मानवता की सच्ची सेवा है। आज भी ऐसे जमाने में जहाँ पर कि आपको डॉक्टरी सलाह फ्री में नहीं मिलती है या बहुत कम कॉस्ट में नहीं मिलती है, ये आज भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस करती हैं। और इनफैक्ट मेरे इस पूरे इंटरव्यू के बाद ये वहीं जाने वाली हैं। डॉक्टर नूपुर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम ना जेंडर इक्वालिटी की बड़ी बात करते हैं, और अगर मैं डॉक्टरी लाइन में देखूं तो वहां तो फिर भी इक्वालिटी है, क्योंकि देखिए महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, बीमार तो सब पड़ते हैं, तो डॉक्टर तो आपको हर जेंडर के चाहिए। लेकिन बाकी सारे एरियाज में अगर आप देखें तो इम्बैलेंस है, तो क्या इस इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं?
1: हाँ, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में काफी हद तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहा जाए तो उत्थान नहीं हो पा रहा है। मगर अब बहुत सा नजरिया सब लोगों का बदल गया है। डॉक्टरी में तो आपने अभी देखा होगा कि शायद ज्यादातर डॉक्टर्स हर फील्ड में फीमेल्स हैं, और इवन जो पहले इवन हम जब पढ़ रहे थे तब भी ऐसा था कि जो सोचा करते थे कि गायनी डिपार्टमेंट में इसमें मेल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर मेल्स भी होते थे। तो डॉक्टरी में तो ये समानता है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में इतना कोई अंतर नहीं रहा है। पर और फील्ड में देखा जाता है कि इंजीनियरिंग में जो क्रूड वाली इंजीनियरिंग होती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा पीछे से अगर देखा जाए, अच्छी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो या उनके मम्मी पापा अच्छी तरह समझा दें, तो शायद हर फील्ड में, और इंडिया में तो आजकल देखिए कहाँ कहाँ लड़कियाँ पहुँच गई हैं। तो ये कहना कि समानता नहीं है, यह भी गलत होगा। थोड़ा सा उसमें अंदर से, अपने अंदर से कुछ एक भावना सी चाहिए कि हम यह काम कर सकते हैं, तो काफी हद तक सरलता से पहुंच जाती हैं स्त्रियां।
0: वाकई, तो भाई देखिए इस बात की हम खुशी मना सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। जहां पर एक जमाने में महिलाएं होती ही नहीं थी, वहां अब हम महिलाओं को देख पा रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी आएगा, क्योंकि अगला सवाल बड़ा दिल को छूने वाला है। हर महिला जब इस सवाल को सुनती है ना कहीं वो इस सवाल से रेजोनेट करती है और सोचती है इसका सोल्यूशन क्या मेरी जिंदगी पर फिट होगा या नहीं। तो पूछने वाली हूँ ये अगला सवाल डॉक्टर नूपुर माथुर से, पर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज उतनी ही प्यारी लेकिन सीजन्ड डॉक्टर नुपुर माथुर जी से मैं बात कर रही हूँ। बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर नुपुर, जब कभी भी महिलाओं की बात होती है, मतलब मैं अक्रॉस पूरे भारत की बात करूं या ग्लोब की बात करूं, तो हमेशा से ये माना गया है कि जो महिला है ना, वो घर की केयर टेकर है और नर्चरर है। और ये जो रोल्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत जमाने से डिफाइन कर दिए गए हैं। ऐसा होता है कि एक अगर महिला अपना करियर बना भी रही है या बना भी चुकी है, तो जैसे ही जीवन का वो पड़ाव आता है जहां बच्चे आते हैं और आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी केयर के लिए हमेशा एक महिला को अपने करियर का त्याग करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करिए, आप ब्रेक ले लीजिए या आप कुछ और करिए। तो मुझे बताइए कि क्या इसमें बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कहीं किसी भी महिला के करियर के लिए एक पुरुष ने कहीं कोई त्याग दिया हो।
1: नहीं नहीं, ये तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आजकल तो पुरुष वर्ग बहुत साथ देता है और बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी यंग, बिल्कुल यंग अभी आगे बढ़ रही हैं, और जब फैमिली में आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी एक अच्छा प्रमोशन होने वाला है, साथ में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देर आर मैनी, अब तो अपर क्लास में तो हैं पर लोअर क्लास में भी देर आर मैनी मेल मेंबर्स हु रेस्पेक्ट देम एंड हु ऑप्ट फॉर लीव फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द फीमेल पार्टनर। सो इट्स नॉट एज सच, बट हाँ, डिफिकल्टीज आर ऑलवेज देयर। द मेन थिंग इज दैट इन लॉज एंड हूएवर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द फैमिली शुड बी कंपैशनेट फॉर द गर्ल। तो आई थिंक इतना नहीं है, रहता जरूर है। और अगर स्त्री कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए थोड़ा बहुत कर भी रही है, कुछ फॉरगो करना पड़ रहा है उसको, अपना प्रमोशन या कुछ अपने आवर्स जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो शायद मन में एक ऐसा मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर रहता है कि हमने वो नहीं करा लेकिन कुछ उससे बढ़कर कर दिया। तो ये मेरा मानना है।
0: वाकई बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर नुपुर, और शायद मुझे लगता है कि यही मातृत्व कहलाता भी है। तो इसीलिए एक माँ का जो दर्जा है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि माँ बनने के बाद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के माइंडसेट को और भी बदल सकते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के लिए रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं।
1: रिस्पेक्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। वो शायद मुझे लगता है कि पुरुष वर्ग में एक स्कूलिंग के टाइम से जो मैनर्स और रिस्पेक्ट फीमेल्स के प्रति इम्बाइब हो जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल में ये शिक्षा नहीं दी जाती है, कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, मगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो बॉयज होते हैं उनको ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आपको अपने साथ वाली जो भी आपकी लाइफ पार्टनर होगी के लिए, मैंने देखा है मदर्स के लिए भी कई लोगों में वो रिस्पेक्ट नहीं होता है जो होना चाहिए, जो और कंट्रीज में होता है मेल्स में। तो वो उसमें अगर थोड़ा सा हम बेसिक लेवल से अगर अच्छी एजुकेशन दे दें तो शायद काफी हद तक ये समस्या खत्म हो सकती है।
0: और इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत घर से हो सकती है, और घर में फिर कौन, माँ, महिला। तो भाई अगर महिलाएं चाहें तो वाकई बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। दोस्तों, वक्त है एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर माथुर से। डॉक्टर नुपुर, अब एक बड़ा अहम सवाल, आपने ना अपने पूरे जीवन के पन्ने खोले, आपने बहुत सारी शिक्षा हमें दी, साथ के साथ ही बताया कि चीजें बदल रही हैं और कुछ जो चीजें बदलनी है उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन सामंजस्य से बिठाकर। तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी सभी को आप?
1: खास मैसेज तो यही है कि स्त्रियों को लगे रहना पड़ेगा, अपना एक अलग स्थान तो बनाना पड़ेगा और परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के शायद यह काम करना ज्यादा आसान होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो स्थान आपका परिवार आपको नहीं देगा, जरूर देगा। थोड़ा सा बस हौसला बनाए रखें और उस तरफ अपने प्रयत्न जारी रखें।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये जो समाज है ये तभी बदलेगा जब आप और मैं बदलने वाले हों, जब हम अपनी सोच को बदल दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नुपुर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू भावना जी।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को संदीप सिंगल का नमस्कार। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे हम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा होता है हमारे आपके जीवन से, और वो मुद्दा वो विषय भी ऐसा जो हमारे आसपास होता है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अनदेखी कर जाते हैं या नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसे किसी मुद्दे को। तो रेडियो मानव रचना का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम ऐसे विषयों को एक नई सोच के साथ नई दिशाएं प्रदान करें, जो आपको लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। तो श्रोताओं, आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की जब एजुकेशन की बात आती है तो एक हर किसी का एक सपना होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह एक अपना स्थान रखती है, लेकिन एक सपना हर किसी के मन में पल रहा होता है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़े। तो आज का मुद्दा इसी मुद्दे विषय पर चर्चा हम करेंगे, विदेशी शिक्षा बनाम भारतीय शिक्षा, यानी सपनों की उड़ान या जड़ों की पहचान। जैसा कि हमने अभी कहा कि हर दूसरे घर में एक सपना पल रहा होता है, बेटा विदेश जाएगा, बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और एक शानदार नौकरी करेगा, लेकिन क्या विदेशी शिक्षा वास्तव में हमारी इंडियन एजुकेशन से बेहतर है? क्या भारत में पढ़कर भी वैश्विक सफलता हासिल की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि डिग्री के बाद नौकरी और प्लेसमेंट में कौन आगे है, फॉरेन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन? तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे विदेशी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उनकी फीस की, उन अपॉर्चुनिटीज़ की, प्लेसमेंट की और पैकेजेस की। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की उस सच की जो सोशल मीडिया की चमक से बिल्कुल कहीं अलग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की, जो हमारी सोच को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आखिर क्यों बढ़ रहा है विदेश जाने का सपना? जो हम बात करते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की तरफ जो लोगों का रुझान है, आखिर उसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां से सबसे अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शायद आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अपने देश की। सरकारी और शिक्षा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पिछले वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख छात्र विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए, चाहे उसमें अमेरिका हो, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो उनकी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। श्रेणी में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं? कारण है वहाँ के मॉडर्नाइज कैंपस, उनकी जो स्टडी का जो तरीका है और रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन है वो, उनकी बेहतर प्रयोगशालाएं जो हम लेबोरेटरीज लैब्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एजुकेशन में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता है हर भारतीय के मन में कि यदि आप किसी भारत के बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी ऊंचे पद पर या एक बड़े वेतन के साथ नौकरी भी लग जाएगी। तो जो ये उम्मीद है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विदेशों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो चमकदार तस्वीरें हैं वो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। वहाँ की एमिनिटीज़ की जो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स सोशल मीडिया के माध्यम से या आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर, तो उनसे हमारे बच्चे, हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सन 2025 में, यानी हमने अभी आपको 2024 का एक डेटा बताया कि जिसमें करीब 7.5 लाख छात्र बाहर गए, कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफ़ी कम छात्र बाहर गए। उसका कारण जितने भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी फीस काफी ज्यादा बढ़ा दी। साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने देखा था यूएस में भी जो वीजा के नियमों में काफी सख्ती कर दी गई थी, नॉट पर्टिकुलरली फॉर भारतीय छात्रों की हम बात करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने वीजा नियम काफी सख्त कर दिए थे। और एक जो बड़ी चिंता, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि आपको बाहर पढ़ने के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पाई गई जिसकी वजह से ये 6% की गिरावट आई। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 43% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण विदेश जाने का विचार छोड़ दिया, यानी बढ़ती हुई फीस और उस फीस के पैसे का अरेंजमेंट ना हो पाना भी एक कारण रहा इस गिरावट का। यानी अगर हम बात करें तो केवल फॉरेन जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना अट्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि आज के छात्र इतने स्मार्ट भी होने लगे हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी देखने लगे हैं, यानी आपको कितनी फीस दे करके क्या पढ़ाई मिलेगी और उस पढ़ाई का आउटकम क्या होगा, कैसी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी एक नज़रिया छात्रों का बदल गया है। और अगर हम उसको एक लाइटर नोट पे बोलें तो पहले सपना होता था कि विदेश जाना है, लेकिन अब सवाल होता है कि विदेश जा करके एजुकेशन लोन की ईएमआई कौन भरेगा। यानी एक जागरूकता जो आई है उसने कहीं ना कहीं इस नंबर में, बाहर जाने के जो नंबर है परसेंटेज में, गिरावट लाने का काम किया है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा है हमारे बच्चों की शिक्षा से, यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम या बाहर का विदेशी एजुकेशन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है, अट्रैक्शन के कारण क्या हैं। और जो हमने अभी बात की कि सन 2024 में जहां 7.6 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे पढ़ने, लेकिन 25 में वो करीब 6% गिरावट उसमें आई, तो उसके भी हमने अभी कारण आपको बताए। दोस्तों, जो भारतीय शिक्षा है उसकी ताकत को हम कम नहीं आंक सकते। मतलब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसा हमारा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे देश में हुए हैं, तो यदि विदेशी शिक्षा की चमक हमें आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी एक ताकत जो है वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देती है। हम बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भारत ने, हमारे देश ने दुनिया को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी विशेषज्ञ और साथ ही साथ बहुत बड़ी वैश्विक कंपनियों के सीईओ भी दिए हैं, जिनका मूल हमारा देश रहा है, हमारा भारत रहा है। और हमारी भारतीय शिक्षा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा मजबूत गणितीय आधार, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जो कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और दूसरी बात, जिसका दबाव आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा समझता है, वो है फीस। कंपैरेटिवली इंडिया में एजुकेशन जो हमारी है वो बहुत सस्ती है अगर हम फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट देश में, भारत में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो IITs हैं, IIM हैं, एम्स की बात हम करें या IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग जगह रखते हैं। पूरे विश्व में जो उनका सम्मान है वो बहुत शीर्ष संस्थानों में किया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ चैलेंजेज भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक रटने की जो संस्कृति है, या फिर बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज की जो फोकस रहता है कि आपको इतने अंक आने चाहिए, इतना परसेंटेज आना चाहिए, वो जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और साथ ही साथ जो स्किल गैप और बड़ी लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह का एक कमी वाला जो रोल है वो प्ले करती हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी कि भारत में लाखों छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते। हमने आमतौर पर देखा है कि इंजीनियर, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है, लेकिन यदि हम उनकी कार्यकुशलता की बात करें तो वो उतने बेहतर तरीके से उन कार्यों में अपनी जो एक्सपर्टीज है वो नहीं दिखा पाते हैं जितने लेवल की एजुकेशन उनके पास होती है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की जो कंपनीज हैं वो केवल डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो देखते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हर उद्योग की, हर इंस्टीट्यूट की, या हम बात करें किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की। जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है, AI और टेक्नोलॉजी की जो समझ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी अच्छे संस्थान में नौकरी पाने के लिए। यानी समय अब बदल चुका है, केवल पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको कार्यकुशल होना यानी स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और इसमें हमने देखा कि जो एक फीस है या जो अंकों का दबाव है, एक तरह की हमने बात की, जहां एक तरफ कम फीस होना हमारे लिए अट्रैक्शन हो जाता है, एक कम्फर्टेबिलिटी दिखती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन वहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं या हम बात करते हैं अंकों का जो दबाव है, जो एक परसेंटेज गैदर कैप्चर करने का या हासिल करने का जो एक प्रेशर फील होता है, वो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि अगर हम वर्ष दर वर्ष बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले जो छात्र हैं उनके परसेंटेज में गिरावट भी आई है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है आमतौर पर विदेशों में शिक्षा पाने के लिए, यानी यदि आप किसी भी अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एक चार्म कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मन में रहता है कि आपको एक बड़ी किसी कंपनी में एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिल जाएगी। लेकिन आखिर इस बात का सच क्या है दोस्तों? आज हर छात्र और अभिभावक का, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कितनी अच्छी मिलेगी। यानी उनका एक बड़ा फोकस रहता है कि यदि आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको उसके बाद कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये वो सवाल है जिसके जवाब के आधार पर लोग चयन करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाना है, यानी किसकी प्लेसमेंट कहाँ बेहतर तरीके से होती है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो प्लेसमेंट के नंबर्स हैं, अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें तो वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा चार्म भी रहता है हमारे देश में उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाने का। यदि हम 2025 वर्ष 2025 के प्लेसमेंट सीजन की बात करें तो IIT बॉम्बे में लगभग 74% प्लेसमेंट दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये कि IIT मुंबई में 74% प्लेसमेंट हुआ। और इंटरनेशनल जो पैकेज था वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर तक गया था। यानी अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, जो हमने 74% प्लेसमेंट की बात की, तो उस वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो भी 23 लाख पर एनम था। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट का जहाँ की प्लेसमेंट 74% हो। या हम बात करते हैं IIT चेन्नई की, वहाँ पर 4.3 करोड़ तक का पैकेज मिला। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 53 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यानी 53 लाख पर एनम का रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर की, यानी IIT नागपुर का जो CSE विभाग है उसकी प्लेसमेंट, आपको यकीन कीजिए जानकर के आश्चर्य होगा कि 100% प्लेसमेंट हुई। और वहाँ का जो एवरेज पैकेज था वो तकरीबन 15 लाख रुपीज पर एनम रहा। साथ ही साथ हम NIT जालंधर की बात करें तो वहाँ तकरीबन 900 जॉब ऑफर्स आए और 1 करोड़ रुपये से ऊपर का एनुअल पैकेज मिला। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि भारत का हर कॉलेज IIT नहीं है। यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग के जो शीर्ष संस्थानों में जिनका शुमार होता है IITs का, हर कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे जो सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कमज़ोर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ एवरेज जो सैलरी है वो कम है, कई छात्रों को नौकरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, विदेशों में जो शुरुआती वेतन है, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फॉरेन एजुकेशन का, वो ये भी कि जब इनिशियल जो वहाँ पर सैलरी ऑफर होती है वो भारत से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और पर्टिकुलरली अगर हम AI की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, या फाइनेंशियल हेल्थ केयर या रिसर्च के क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, AI में, इनमें जो एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया के मुकाबले बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है वहाँ पर पढ़ाई करने का। लेकिन आज की यदि हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2024 के बाद 25 में गिरावट आई, वो गिरावट आने का एक कारण ये भी था कि आज स्थिति वहाँ पर भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे देशों में नौकरी जो है वो कंपटीशन जो उसमें है जॉब्स में वो बहुत बढ़ गया है, वीज़ा की इश्यूज़ हो गए हैं, और साथ ही साथ कुछ जो टेक कंपनीज़ हैं उनमें रिट्रेंचमेंट भी हुई है, छटनियाँ भी हुई हैं, यानी
अब केवल विदेशी डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं रहा, ये कड़वा सच हमें आज स्वीकारना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो, इसका एक जो लाभ है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी सीधा सीधा मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हर बार जो हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा आपके साथ करते हैं, तो आज का मुद्दा है विदेशी एजुकेशन बनाम भारतीय शिक्षा। अभी हमने बात की कि आखिर फॉरेन एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रहता है, तो उसके पीछे के कारण थे वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी, यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टिव तरीके से दिखना, बड़े पैकेज की ऑफर्स आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो महंगी फीस है या वहाँ का जो वातावरण है या डे बाई डे नौकरी मिलने में परेशानियाँ होना या वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में अट्रैक्शन कम हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो सीधा सीधा रिलेटेड है इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन से, वो है कि यदि हम विदेशी एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्च है, आमतौर पर हम बात कर लेते हैं केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स के फीस की, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसकी फीस कितनी है। लेकिन दोस्तों, विदेशी शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, उसमें शामिल होता है वहाँ पर रहने का खर्च, वहाँ खाने का खर्च, वहाँ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या जितने भी आपको

मिल जाती हैं और उनमें उनको पेमेंट भी अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप उस खर्चे और कमाई के बीच में रहता है। हालांकि सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनता है, उसमें दिखाया जाता है बहुत सुंदर कैंपस है या वहाँ का जो वातावरण है या उस वहाँ का जो पर्यावरण की हम बात करें, क्लीन एयर और बर्फबारी और सुंदर दृश्य देखने वाले मिलते हैं, एक बड़े ही आधुनिक कैफ़े या एक जो लाइफस्टाइल वहाँ की है, विदेशी जो जीवनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू जो आमतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें नहीं दिखाया जाता, वो है कि जो असली ज़िंदगी है वहाँ की, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है किराए का, बहुत महंगे महंगे रेंटल्स आपको पे करने पड़ते हैं, लोनलीनेस जो आपको अकेलापन महसूस होता है वो एक बहुत बड़ा मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का भी कई बार कारण बन जाता है। और कुछ देशों की तो जो जलवायु जो पर्यावरण वहाँ का है वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जो इंडिया के मुकाबले दिन और रात में फ़र्क होना, सनलाइट की अवेलेबिलिटी ना होना, बहुत ज़्यादा समय तक अंधेरा रहना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग आदि नहीं होते, तो वहाँ पर जा करके उनको इस चीज़ का भी एक मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर नहीं रह पाती, और साथ ही अकेलेपन के कारण या एक नई जगह के कारण एक मानसिक तनाव की स्थिति भी बच्चों में, युवाओं में देखी जाती है वहाँ के छात्रों में। और साथ ही साथ जब पढ़ाई की बात होती है तो जैसा कि हमने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना या पढ़ाई के बाद जॉब हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है, उसका भी एक बहुत दबाव और उसकी एक भागदौड़ जो है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी विदेशी एजुकेशन हासिल करने जाना होता है या वहाँ पर कोई डिग्री लेना होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की एजुकेशन ले लेना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बेहतरीन स्थिति की क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पर जा कर के जॉब मिलेगी ही, एक बेहतर जॉब मिलेगी या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस सच्चाई को हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए, जो एक बेहतर निर्णय लेने में हमारे लिए सहायता करती है या हमारे लिए सहायक होती है। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी सुनिए एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम का अगले हिस्से में। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। आमतौर पर हमने अभी बात की कि विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेजना एक बड़ा हर किसी परिवार का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत महंगी फीस दे देना, एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा होना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का माहौल बदला है विदेशों का, उससे काफ़ी संख्या में कमी आई है और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इम्प्रूव हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और रिसर्च फैसिलिटीज़ का आ जाना एक बहुत बड़ा कारण बना है कि बच्चों में बाहर के देशों में जाने की अट्रैक्शन कम हो गई है। और साथ ही साथ अभी हमने हाल ही में कुछ खबरें सुनी कि बाहर की जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में भी बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और हमारे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जो ऑप्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और एक पहलू जो फॉरेन एजुकेशन का है वो ये भी है कि जब कोई भी टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि विदेशों में बहुत अच्छे सफल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी देश से हमारे ही गए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं और ये प्रतिभा हमारे देश की ही है। और इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी एक शब्द इसके लिए किया गया ब्रेन ड्रेन। और एक रिसर्च के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले जो इंडियन जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनमें से 73% वापस नहीं लौटते। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो यदि 100 लोग बाहर जाते हैं तो उसमें से 73 लोगों की संभावना रहती है कि वो वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ ये तस्वीर बदल रही है, यानी सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं। बहुत सारे छात्र वो इस थॉट के साथ जाते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ें, वहाँ पर एक्सपीरियंस लें, इंडिया में वापस आकर के अपना स्टार्टअप शुरू करें, साथ ही साथ जो वहाँ चीज़ें सीखी हैं उनको यहाँ आकर के और लोगों से शेयर करके रिसर्च करें और जो उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंस अर्न किया है उसको अपने देश में ले करके आएँ। तो वो बहुत एक नया बदलाव जो आना शुरू हुआ है, एक बेहतर स्थिति में हमारा देश, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेहतर स्थिति में आता जा रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। साथ ही जैसा भी मैंने आपको कहा कि भारत में भी अब ग्लोबल कैंपसेज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, यानी शिक्षा नीति के माध्यम से भी बदलाव की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ विदेश जाना नहीं है, सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, वो कितने स्किल्ड हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी को अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखने के बाद क्या लौटा रहे हैं। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मूल भाव केवल और केवल एजुकेट करना नहीं होता, बल्कि उन युवाओं को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास के जो काम है, विकास की जो गति है, उसमें उनका योगदान भी सुनिश्चित करना होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम का। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए खूबसूरत सा गीत और उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे समापन की ओर। अभी सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हमने चर्चा की फॉरेन एजुकेशन वर्सेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, स्थिति में क्या बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह से हम कहते थे कि हर घर का एक सपना होता था कि उनका बच्चा बाहर पढ़े, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, एक अच्छे पैकेज पर उसको नौकरी मिले या वो अपना कोई व्यवसाय करे, वहीं परिस्थितियां बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने जरूर जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक सीखते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को लेकर के आते हैं अपने देश में वापस और यहाँ पर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति हम बात करें या यदि हम विकास की बात करें, तो उसमें अपना योगदान देते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आखिर बेहतर कौन है, भारतीय शिक्षा या विदेशी शिक्षा? एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें हर किसी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर किसी की अपनी एक जीवन की एक, अगर हम बात करें, लक्ष्य है, गोल है। तो उसके हिसाब से यदि हम बोलें किसी छात्र को चाहिए कि बहुत हाई लेवल की रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोजर या विशेष तकनीकी अवसर, तो विदेशी शिक्षा उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसे हमने भी आपको कहा कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे ही किसी स्टूडेंट के अंदर कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा है, तो यकीन मानिए हमारे देश में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए और उसको इस्तेमाल करने का जज्बा भी आपके भीतर होना चाहिए। हमारे देश में ही IIT IIM जैसे संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। यदि आप बात करें बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, हम देश से बाहर जो गए हैं, उनकी मूल जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इंडिया में ही हुई है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ही देश के IIT और IIM के पढ़े हुए बच्चे जो ग्लोबली वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजॉन है या और हम किसी ग्लोबल कंपनीज की बात करें, तो उनमें बहुत ही शानदार पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी हमें बात समझनी चाहिए कि जो असल जो फर्क है वो केवल देश नहीं बनाता, फर्क बनाता है छात्रों का दृष्टिकोण, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका स्किल या उनकी स्किल टू लर्न यानी उनकी सीखने की जो क्षमता है, वो फर्क पैदा करती है कि आप किस देश में, किस कंपनी में, किस पैकेज पर कैसी नौकरी हासिल करते हैं या कैसा स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी सच्ची बात है कि पहले लोग आमतौर पर पूछते थे कि कौन सा कॉलेज मिला जब कभी एजुकेशन की बात आती थी, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि प्लेसमेंट कितना मिला, यानी पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हमने समझने की कोशिश की है कि विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों की अपनी ताकत और अपनी लिमिटेशंस है। विदेश अवसर देता है और भारत आधार देता है, यानी हमारा जो देश है वो हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन का फाउंडेशन देता है। और साथ ही साथ जो विदेशी डिग्री है वो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और साथ ही हमें समझना भी पड़ेगा कि जो भारतीय डिग्री है या हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियाँ हैं वो असफलता की भी पहचान नहीं है। यानी इस बात में यदि हम अंतर को समझें तो बाहर के देशों में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती सफलता होना, और इंडिया में पढ़ना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना कोई असफलता होने की पहचान नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की शक्ति दे, यानी आपको कुशल बनाए और आप अपने विजन और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करा सके। दरअसल असली शिक्षा वही है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के बीच में भी कहा था कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल आपको शिक्षित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर ये भाव पैदा करना कि जिस देश में, जहां आपने ये शिक्षा हासिल की है, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश की प्रगति में आप अपने शिक्षित होने के बाद, कार्यकुशल होने के बाद किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी का जो एहसास कराए, दरअसल शिक्षा का पूरा उद्देश्य जब ही होता है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ हमें दीजिए अनुमति और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंघल को दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अवसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ। और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है। दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

जिसने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उससे निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्राश्चित कर रहे हो। 1,00,000 की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन 1,00,000 की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती, सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा न मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं, आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास न बुझेगी। शब्द दे सकते हैं सत्य नहीं, अंधेरे की दीवालों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी है। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे, जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल ना समझ कह सकते, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो, सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं, और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं।
बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तत्वस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के, न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं, साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। या जैसे कोई लेट गया है घास पर, छांव पर, आकाश में चलते बादलों को देखता है, उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है, जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो, तुम मात्र दृष्टा रहो। जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तटस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती। जितने तुम तटस्थ होते जाते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है, वो भ्रांति में है। जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है, वो भी भ्रांति में, उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते, जैसे स्वप्न में किए हो कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हो कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो, स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे, कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे, हंसोगे, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा, जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे, अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा हो साधना। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो, और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति, राग द्वेष पैदा हुआ,
तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया, दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की, रह रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी, तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है, तुमने नहीं तौला बस देखते रहे तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का परमात्मा का बुद्धि को कभी बताया।

तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी। ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था। जब तुमने आंख खोली थी तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्णयुक्त है, लेकिन फिर भी गंध शून्य, ऐसा ही पांडित्य है। रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से, तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती, वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते, भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे? तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे? सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है, एक रानी उसके प्रेम में थी और उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है। तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें एक परीक्षा ये भी थी। वो आई एक दिन राज दरबार में, दूर खड़ी हो गई, हाथ में उसने दो गुलदस्ते के, फूलों के गुलदस्ते लाई थी, और उसने सोलमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था। वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलोमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए, न तो दरबारी समझी न वो रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोलोमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वो जो असली फूल थे उन पे जाके बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला। वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना? सोलोमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे? बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता है सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना। जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं है,

प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है। जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो, तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात न रह जाए, उसकी जड़ें तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते हैं, बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर। और ज्ञान का तो भारी बोझ है, तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ, तुम जानते ज्यादा हो जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ, थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, अकल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, अकल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, खुश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, केवल वे ही समझ पाएंगे जो बुद्धि से गहरे उतर कर हृदय का दिया जलाएंगे। हृदय के दिए से अर्थ है जो जानते उसे जीवन बना लेंगे, जो समझा है वो समझ ही ना हो कि समाधि बन जाएगी, जो सुना है वो सुना ही नहीं पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो जियो ज्यादा और तुम पहुंच जाओगे, ज्यादा तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे, तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं, तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक न हो पाओगे। पंडित मत बनना, पापी भी पहुंच जाते पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा, दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है बिना जाने। शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है, सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते, जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं, सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है, तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिमान है।
वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है। उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं। जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है। तीनों आयामों में, तीनों डायमेंशंस में उसके कहीं कोई रुकावट नहीं। जिस दिन तुम सार और असार को पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा स्वातंत्र भी इतना ही अपरसीम हो जाएगा जैसा हंस का। इसलिए हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। न जानने से ही बंधे हो। जमीन पर ही ठीक से रहना नहीं आता, पानी पे चलने की तो बात अलग, आकाश में उड़ना तो बहुत दूर। शरीर में ही ठीक से रहना नहीं आता, मन की तो बात अलग, आत्मा की तो बात बहुत दूर। शरीर यानी जमीन, मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश। इसलिए मन जल की तरह तरंगायत, शरीर फिर है पृथ्वी की तरह, 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, कितने ही बादल घिरे, कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गई, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए, आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता, मन की तो बात अलग, मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का ऊहापोह पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश मुक्त असीम। परमहंस कहा है ज्ञानियों को, लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया, बदलने का रहस्य समझ लेना चाहिए। तुम समझ भी लेते हो कभी कोई बात, इस स्फटिक मणि की भांति साफ दिखाई पड़ती है कि समझ में आ गई। अगर तुम उसी क्षण उसका उपयोग करने लगो तो और निखरती जाए। तुम कहते हो कल उपयोग कर लेंगे, परसों उपयोग कर लेंगे, अभी समझ में आ गई, संभाल के रख ले। एक मित्र यहाँ सुनने आते थे, डॉक्टर से पढ़े लिखे, मैंने उनको देखा कि जब भी वो सुनते तो बैठ के बस नोट ले रहे, फिर मुझे मिलने आए तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। कहते थे आप इतनी अद्भुत बातें कह रहे हैं कि नोट कर लेना जरूरी है, पीछे काम पड़ेंगे, जब मैं समझा रहा हूं तब वो समझ नहीं रहे। वो कल पे टाल रहे हैं, समझ तक को कल पे टाल रहे हैं, करने की तो बात अलग, वो नोट ले रहे हैं अभी, फिर पीछे कभी जब जरूरत होगी काम पड़ जाएगी। तुम अभी मौजूद थे, मैं अभी मौजूद था, अभी ही उतर जाने देते हृदय में, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बचाव है समझने से, समझना नहीं। सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यही, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया, करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा, स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा। अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है, नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना,
क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है, लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, कोई हर्षा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उनके पास भी कुछ स्वाद हो, तभी तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो, अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है कितना आसान है, कहना बहुत कठिन, क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना पड़े, जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही नहीं रहा। जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इनकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हां करना कितना कठिन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कहते थे जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर। कोई आदमी कहता ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं कायर नहीं कह के काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हां कहा वही बहादुर है, वही साहसी है, लेकिन हां भी नपुंसक हो सकती है। अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हां कहती हो, अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई, जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को, कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे, अब कौन झंझट करे कि है या नहीं, कि बिल्कुल ठीक जरूर होगा। अगर तुमने हां भी सिर्फ बचाव के लिए कही, तो तुम्हारी हां नहीं ही है, उस हां में हां नहीं, नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उसी के पास पूछना जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास, और जिसके जीवन में कोई स्वाद हो, जिसके ओंठों से, जिसकी श्वासों से शराब की थोड़ी गंध आती हो, उसी से शराब की बात पूछना। जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो, जिसकी आंखों में खुमार हो, उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना, और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है, कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में ना खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह है, तुम उसे हृदय में ले जाओ तक क्षण तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में संभाल के, वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जाना बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेसे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है, बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो, और एक जीवन ऐसा होता है जिसे तुम फूलों की माला कह सकते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं,
उसमें दो फूल जुड़े नहीं है किसी अन्य संयुक्त धागे से, सब फूल अलग अलग है, बिखरे पड़े। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण पिरोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो, तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे हैं जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है। वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेषता था, मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के, मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था लेकिन उपदेषता की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो सृष्टम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था, लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली, वैसे ही बैठा रहा आकड़ा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन ने कहा, बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक्य कोई टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क ट्वेन ने कहा, शर्त बदते हो, $100 की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है, जो मैं बोला हूं ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था, मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी बेच दी और लिखा, इसमें सब है जो भी तुम बोले हो, एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश, फूल की भीड़ एक ढेर, अनसयुत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बनता है, माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होश पूर्वक एक लयबद्धता देता है। तब जीवन न केवल गद्य बन जाता है, अगर धीरे धीरे तुम जीवन को निखारते ही जाओ तो गद्य पद्य हो जाता है, जीवन तुम्हारा गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, तुम्हारे भीतर से अहिर्निश संगीत की एक धारा छूटने लगती है, तुम बजने लगते हो। जब तक तुम बजो ना, तब तक तुम परमात्मा के चरणों के योग्य न हो सकोगे। और ध्यान रखना, व्यर्थ की शिकायतें शिकवे मत करना, उनसे शिकवा फजूल है, सीमाव काबले इल्फात तू ही नहीं। परमात्मा से क्या शिकायत करनी कि आनंद नहीं है जीवन में? काबले इल्तिफात तू ही नहीं, परमात्मा की कृपा के योग्य तू ही नहीं, इसलिए किसी और से शिकवा मत कर। तुम जैसे अभी हो ऐसे ही तुम परमात्मा पर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम माला बनो, तुम जीवन को एक दिशा दो, तुम ऐसे ही सब दिशाओं में मत भागते फिरो पागलों की तरह, तुम एक भीड़ मत रहो, तुम्हारे भीतर एक स्वरता है। और बुद्ध इसी को पुण्य कहते हैं, तुम चकित होगे। बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में एक स्वरता है वही पुण्य धर्म है। पापी एक भीड़ है, पुण्य धर्म एक माला है। पापी
असंगत है, कहता कुछ

करता कुछ, सोचता कुछ, होता कुछ, पापी के भीतर एक स्वरता नहीं, बोलता कुछ है, आंखें कुछ और कहती हैं, हाथ कुछ और करते। पापी एक साथ बहुत है, पुण्यात्मा एक है, योगस्थ है, जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है। वो जो भी करता है वो सब संयोजित है, वो सभी एक दिशा में गतिमान है, उसके पैर भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसकी आंखें जा रही हैं, उसके हाथ भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका हृदय जा रहा है, उसकी सांसें भी उसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ उसकी धड़कनें जा रही हैं। वो इकट्ठा है, उसके जीवन में एक दिशा है, एक गति है, विक्षिप्तता नहीं है। जैसे फूलों से मालाएं बनती है, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को पुण्य अर्जन करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन एक माला बन जाए। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं, खूब हृदय भर के सुनना। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन, कोई उपाय नहीं चंदन के पास कि अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेजते। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वह है सत्पुरुष की, वह है संत पुरुष की, वह है जागृत पुरुष की सुगंध। मनुष्य भी एक फूल है, और जो कली ही रह गए खिल ना पाए, उनके दुख का अंत नहीं। कलियों से पूछो जो खिलने में असमर्थ हो गई, जिनमें गंध भरी थी और लुटा ना पाई। ऐसे ही जैसे किसी स्त्री को गर्भ रह गया और फिर बच्चे का जन्म ना हो तो उसका संताप समझो। गर्भ बड़ा होता जाए और बेटे का जन्म ना हो तो उस स्त्री की पीड़ा समझो। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य पीड़ा में, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बड़ा हो रहा है वो जन्म नहीं पा रहा, तुम एक गर्भ लेके चल रहे हो। गर्भ बड़ा होता जाता है लेकिन तुम्हारे जन्म की दिशा खो गई, तुम भूल ही गए हो, तुम एक कली हो, उसके भीतर गंध इकट्ठी होती जा रही है, बोझिल हो गई है, कली अपने ही बोझ से दबी जा रही। मेरे देखे तुम्हारी पीड़ा ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारी असली पीड़ा यही है कि जो सुख हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। ये दुख की मौजूदगी नहीं है जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, ये उस सुख की मौजूदगी का अभाव है जो हो सकता था और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हें पीड़ा नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अमीरी का झरना फूट सकता था, फूटने को तत्पर खड़ा है, उस पर चट्टान पड़ी, वो झरना फूट नहीं पा रहा है। ये विकास की छटपटाहट है आदमी का संताप, ये आदमी की पीड़ा जन्म लेने की छटपटाहट है। सारा अस्तित्व खिलने में भरोसा रखता है, जब भी कोई चीज खिल जाती तो निर्भर हो जाती। आदमी भी एक फूल है, और बुद्ध कहते हैं बड़ा अनूठा फूल है, और बुद्ध जान के कहते हैं उनका फूल खिला। तब उन्होंने एक अनूठी बात जानी कि विपरीत दिशाओं में भी, जहां हवा नहीं भी जा रही हो वहां भी संत की गंध चली जाती। संत की गंध कोई सीमाएं नहीं मानती। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की सुगंध, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सज्जन की सुगंध एकमात्र सुगंध है जो संसार के नियम नहीं मानती, जो संसार के साधारण नियमों के पार है, जो अतिक्रमण कर जाती। सीख ले फूलों से गाफिल मुद्द आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इतना ही काफी नहीं कि खुद महको, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है समाधि फिर प्रज्ञा, समाधि फिर करुणा।
बुद्ध ने कहा है वो ध्यान ध्यान ही नहीं जो करुणा तक न पहुंचाते, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। उसी समाधि को बुद्ध ने परिपूर्ण समाधि कहा है जो लुट जाए सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बह जाए। लेकिन ये समझ लेने की बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। तुम साधारण अवस्था में सभी दिशाओं में दौड़ते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धत्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जिस दिन पहुंचता है उस दिन सभी दिशाओं में बहने में समर्थ हो जाता है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो, थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और अखीर में पाते हो भिखारी के भिखारी विदा हो गए, जिसे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ गए, बहुत पकड़ना चाहा कुछ पकड़ने ना आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी है जैसे तुमने बहुत प्रसिद्ध गधे की सुनी हो कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए बराबर दूरी पर, और गधा बीच में खड़ा था। उसे भूख तो लगी तो वो बाएं तरफ जाना चाहा, तब मन ने कहा कि दाएं, उस तरफ भी घास था। दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा मर गया क्योंकि न वो बाएं जा सका न दाएं। जब दाएं जाना चाहा तब मन ने कहा बाया, जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दाया। तुम्हारा मन यही कर रहा है, जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तब मन कहता दुकान, जब तुम दुकान पर बैठे हो मन को भजन याद आता मंदिर। ऐसे ही मर जाओगे। और दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा। आधे आधे मंदिर जाने की बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चला जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है, ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सारना होगा, आधा यहाँ आधा वहां। तुम दो नाव पर सवार हो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो, तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते हैं और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते हैं सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो, बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते हैं। महावीर ने कहा जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने एक को जान लिया उसने सब जान लिया। जीसस ने कहा सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अकेले तुम परमात्मा की खोज कर लो, प्रभु का राज्य खोज लो, ये सब अपने से आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। एक को जिसने गमाया वो सब गमा देता है और एक को जिसने पाया वो सब पा लेता है। लेकिन तुम्हारा सब अधूरा अधूरा है, अधूरे अधूरे के कारण तुम खंड खंड हो गए हो, तुम्हारे भीतर बड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा कहीं जा रहा, दूसरा टुकड़ा कहीं जा रहा। तुम एक टूटी हुई नाव जिसके तख्ते अलग अलग बह रहे हैं, तुम कैसे पहुंच पाओगे, तुम कहां पहुंच पाओगे? तुम हो ही नहीं, तुम इतने खंड खंड हो गए हो कि तुम हो ये कहना भी उचित नहीं है। होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी दिशा बने, एक अनुशासन हो, एक श्रृंखला हो। तुम फूलों को पुरोना सीखो, फूलों की माला बनाना सीखो। जीवन में सत्य का आविष्कार करना है, प्रेम का आविष्कार करना है। जीवन में तुम कौन हो इसका आविष्कार करना है, इसे ऐसे ही नहीं गंवा देना है। तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे अनुशासन आना शुरू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ी सी भी दृष्टि हो, दिशा हो कहां पहुंचना है, तो एक तारतम्य आ जाए। उस तारतम्य के साथ ही साथ तुम्हारे भीतर एकता का जन्म होगा। इस एकता के माध्यम से ही किसी दिन तुम माला बन सकते हो
और जिस दिन तुम माला बन जाते हो उस दिन परमात्मा के गले में चढ़ाने नहीं जाना होता, परमात्मा का गला खुद तुम्हारी माला में आ जाता है। आ ही जाएगा, तुम काबिल हो गए। काबिले इल्तिफात तो ही नहीं, तभी तक अर्जुन थी। उनसे सिकबा फजूल है सीमा, शिकायत बेकार है। इतना ही जानना कि अभी हम तैयार नहीं हुए। अब ये फूलों की गठरी को तुम किसी के गले में डालना चाहोगे तो माला कैसे बनेगी? गिर जाएंगे फूल नीचे, धूल में पड़ जाएंगे। ये माला किसी के गले में डालनी हो तो माला होनी चाहिए। फूलों के ढेर को माला मत समझ लेना। थोड़ा देखो माला और ढेर में क्या फर्क है। ढेर में संगठन नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है। माला में एक संगठन है, एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। धागा दिखाई नहीं पड़ता, एक फूल से दूसरे फूल में चुपचाप अदृश्य में पिरोया हुआ है। जीवन के लक्ष्य भी दिखाई नहीं पड़ते, एक क्षण से दूसरे क्षण में अदृश्य पिरोए होते हैं। बुद्ध उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं तो हर घड़ी के भीतर ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। जो भी करते हैं एक बार ध्यान रखते ही है कि उस करने में से ध्यान का धागा न छूटे, वो धागा बना रहे। फूल से भी ज्यादा मूल्य धागे का है, लक्ष्य का है, दिशा का है। और जिस दिन ये घड़ी घट जाती कि तुम संगठित हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, उसी दिन परमात्मा की कृपा तुम पर बरस उठती। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसलिए बुद्ध उस संबंध में चुप रहे। जो कहा जा सकता था उन्होंने कहा, जो नहीं कहा जा सकता था उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सारा जोर इस पर दिया है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे एक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान कैसे आचरण बन जाए, तुम्हारे बिखरे फूल कैसे माला बन जाए। इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इसके बाद बात करनी ठीक ही नहीं। इसके बाद जो होना है वो होता ही, वो हो ही जाता है, उसमें कभी कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा को तुम भूल जाओ तो अड़चन नहीं, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूला तो सब गया, सब डूबा। खुद की याद रखी और याददाश्त को रोज रोज संभालते गए। रोज रोज हर तरह से वो याददाश्त सघन होती चली जाए। जैसे जल गिरता है पहाड़ से, चट्टान मजबूत है, जल बिल्कुल नाजुक है, लेकिन रोज गिरता ही चला जाता है। एक दिन चट्टान तो रेत होकर बह जाती, जल की धार अपनी जगह बनी रहती। कठोर से कठोर भी टूट जाता है सातत्य के सामने। इसलिए घबराना मत। अगर आज तुम्हें अपनी दशा चट्टान जैसी लगे, तुम कहो कि कैसे ये अहंकार बहेगा, ये चट्टान बड़ी मजबूत है, कैसे ये दिल झुकेगा, ये झुकना जानता नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करना। तुम सिर्फ सातत्य रखना, ध्यान का, अवलोकन का, साक्षी का, से सब अपने से हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तित्व का विज्ञान दिया, उन्होंने मनोविज्ञान दिया, मेटाफिजिक्स, परलोक के शास्त्र की बात नहीं की। बुद्ध बड़े यथार्थवादी है। वे कहते हैं जो करना जरूरी है वही, और ज्यादा व्यर्थ की विस्तार की बातों में तुम्हें भटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम काफी भटके हुए हो, थोड़े से तुम्हें सूत्र दिए, अगर तुम उन्हें कर लो तो उन सूत्रों में बड़ी आग है, वो अंधकार को जला डालेंगे, वो व्यर्थ को राख कर देंगे, और उन सूत्रों की आग से तुम्हारे भीतर का स्वर्ण निखर के बाहर आ जाएगा। बुद्ध ने बहुत थोड़ी सी बातें कही, उन्हीं को दोहरा के कहा है, क्योंकि बुद्ध को कोई रस दर्शन शास्त्र में नहीं है। बुद्ध को रस है मनुष्य की आंतरिक क्रांति में, रूपांतरण में। बुद्ध को जिन लोगों ने गौर से अध्ययन किया है उन सबको हैरानी होती है कि बुद्ध एक ही बात को कितनी बार दोहराए चले जाते। वो हैरानी इसलिए होती है कि बुद्ध व्यर्थ की बात को कभी बीच में नहीं लाते, बस सार्थक को ही दोहराते ताकि सत्य चोट पड़ती रहे। और तुम ऐसे हो, तुम्हारी नींद ऐसी है, तुम्हारी तंद्रा ऐसी है कि बहुत बार दोहराने पर भी तुम सुन लो वो
भी आश्चर्य है। बुद्ध से कोई पूछता था तो वो तीन बार दोहरा के जवाब देते थे, उसी वक्त तीन दफा दोहरा के जवाब देते थे। क्यों तीन बार? क्योंकि बुद्ध से कोई पूछने लगा कि क्यों तीन बार, क्या आप सोचते हम बहरे? बुद्ध ने कहा नहीं, अगर तुम बहरे होते तो इतनी अड़चन न थी। तुम बहरे नहीं हो और फिर भी सुनते नहीं, तुम सोए नहीं हो, यही तो अड़चन है। सोए होते तो जगाना आसान हो जाता, तुम बन के लेटे हो, तुम सोने का ढोंग कर रहे हो, उठना भी नहीं चाहते, जाग भी गए हो। तुम सुनते हुए मालूम पड़ते हो और सुनते भी नहीं, इसलिए तीन बार दोहरा दो। ये जो बुद्ध का दोहराना है धम्मपद में, इस पूरी चर्चा में बहुत बार आएगा, अलग अलग द्वारों से वो फिर वहीं लौट आते, कैसे तुम्हारा रूपांतरण हो। बुद्ध की सारी आकांक्षा अभीप्सा मनुष्य केंद्रित है, महावीर मोक्ष केंद्रित है, वो मोक्ष की चर्चा करते। जीसस ईश्वर केंद्रित है, वो ईश्वर की चर्चा करते। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है, जैसे मनुष्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है बुद्ध के लिए। साधार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं, सबके ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर कोई सत्य नहीं। क्योंकि जिसने मनुष्य के सत्य को समझ लिया उसे कुंजी मिल गई, सारे सत्यों के द्वार उसके लिए फिर खुले। बुद्ध को भोजन बनाओ, पियो, पचाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण होने लगा। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध की प्रतिमा उभरने लगी। हर चट्टान छिपाए है बुद्ध की प्रतिमा अपने में, जरा छेनी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है, व्यर्थ को छांट के अलग कर देना है। किसी ने माइकलएंजेलो से पूछा, क्योंकि चर्च के बाहर एक पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, चर्च के बनाने वालों ने उपयोग में नहीं लिया था, वो बड़ा अनगढ़ था। माइकलएंजेलो ने उस पर मेहनत की और उससे एक अपूर्व क्राइस्ट की प्रतिमा निर्मित की। किसी ने पूछा कि ये पत्थर तो बिल्कुल व्यर्थ था, इसे तो फेंक दिया गया था, इस तो राह का रोड़ा समझा जाता था, तुमने इसे रूपांतरित कर दिया, तुम अनूठे कलाकार हो। माइकलएंजेलो ने कहा नहीं, तुम गलती कर रहे हो, जो मैंने पत्थर से प्रकट किया है वो पत्थर में छिपा ही था, सिर्फ मैंने पहचाना और जो व्यर्थ टुकड़े पत्थर के आसपास थे उनको छांट के अलग कर दिया। ये प्रतिमा तो मौजूद ही थी, मैंने बनाई नहीं, मैंने सिर्फ सुनी आवाज। मैं गुजरता था यहां से, पत्थर चिल्लाया और उसने कहा कि कब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, कोई पहचान ही नहीं रहा है, तुम मुझे उठा लो, जगा दो। बस मैंने छेनी उठा के इस पर मेहनत की, जो सोया था उसे जगाया। बुद्धत्व को कहीं पाने नहीं जाना है, हर एक के भीतर आज जो चट्टान की तरह मालूम हो रहा है अनगढ़, बस जरा से छेनी हथौड़े की जरूरत है। सबके भीतर से पुकार रहा है कि कब तक पड़ा रहूंगा, उघाड़ो मुझे। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो तुम सुनो, जो सुभाषित तुम्हारे कानों में पड़ जाएं, उन्हें तुम स्मृति में संग्रहित मत करते जाना, उन्हें उतारना आचरण में, उन्हें जीवन की शैली बनाना। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ उनकी हवा तुम्हें घेरे रहे, उनके मौसम में तुम जीना, जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व उभरना शुरू हो गया, फूल माला बन गए। और तब एक ऐसी घटना घटती है जो संसार के नियमों के पार है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन जिनके भीतर का बुद्ध पुरुष जाग गया, बुद्ध चैतन्य जाग गया, उनकी सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है, सभी दिशाओं में उनकी सुगंध फैल जाती है। और जब तक तुम ऐसे अपने को लुटा ना सकोगे तब तक तुम पीड़ित रहोगे। एक ही नरक है अपने को प्रकट ना कर पाना, और एक ही स्वर्ग है अपनी अभिव्यक्ति खोज लेना। जो गीत तुम्हारे भीतर अनगाया पड़ा है उसे गाओ,

जो वीणा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है उसे छेड़ो, उसके तारों को, जो नाच तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है उसे तुम बोझ की तरह मत लो, उसे प्रकट हो जाने दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है, जब तक वो फूल न खिले तब तक बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीला रहेगी, संताप रहेगा। वो फूल खिल जाए, निर्वाण है, सच्चिदानंद है, मोक्ष है। आज इतना।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत।
5: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
4: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
6: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें, चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
4: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ मैं
6: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, I will start experiencing those qualities जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, I will start experiencing them in myself and the result of that will be कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
4: डिप्लीटेड
6: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहे लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
4: खुद किस situation में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
6: That's the point. तो जैसे ही आपका relationship उसके साथ जुड़ता है जो इतना powerful है, तो उससे आपको vibration कौन सी आएगी? आज एक parent भी एक बच्चे के साथ ये relationship जोड़ सकता है, not like God, but if a parent has the power कि वो unconditional love दे stability के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है? We all love each other, we say, but so many conditions we apply, and that's why we are getting disempowered. लेकिन जैसे ही हमारा connection एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, you know, just look at him just as another soul. We are looking at him just as another soul. इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
4: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, wonderful,
6: no pain, right? No anger, no stress, none of all these things. Ever powerful. Ever pure, ever peaceful. अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर?
4: Oh, it will start vibrating.
6: Yes. That I will start experiencing. कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic. लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर लव प्योरिटी मिलती है दैट हेल्प्स मी to overcome my pain and overcome my old sanskar. And that's why relationship with God ka jo sabse fundamental result nikalta hai, that is self-transformation. God does not transform me. We have to be very clear. Hum Bhagwan ko agar ye bhi kehte rahe na, mera ye sanskar thik kar do, mera ye sanskar, it's not going to happen. Nahi to Bhagwan aise kare aur sabke sanskar thik ho jaye. It doesn't happen. Hum खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ।
4: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। वंडरफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है। मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में। कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर, दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल?
6: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से, एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है। एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन। हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच। एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच। अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है। लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी। और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ। मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल। एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए। लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ। अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ। रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
4: होना ही था,
6: या आपने ऐसा कर दिया,
4: ये आप इस हद तक,
6: सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर। तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता। लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
4: कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
6: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया। अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? एंड जब हम दर्द में होते हैं हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है, वी नीड लॉट ऑफ लव। I need a soul who will give me so much love that I will be able to come out of that pain. लेकिन आज हम किसी से भी अपना pain share करें तो हमें return में कोई, you know, we still getting pain. So when I share my problem, my conflict, my pain with him, it is not that, you know, just the sharing does the work. एक तो sharing करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो in return मुझे फिर भी unconditional acceptance मिलती कि आप जो हो, जैसे हो, I still love you. This helps me to build my self-confidence all over again. तो परमात्मा के साथ relationship मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो, हम शेयर कर सकते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती। पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट, बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट, ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट। लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं।
4: मैं क्या से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है।
6: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वॉइस थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है। परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज़ सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती। तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई, और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने के। जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवर पावर करता है। अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवर पावर करती है, एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
4: उनका फोन आ जाता,
6: तो वो कब होता है, जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहाँ से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है। सो बेसिकली ही इज एवर रेडी।
4: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड। यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू you are there personally, but if I want to get connected to my daughter or like anyone,
6: I may
4: else,
6: not be there personally. Sometimes I could be sitting here but I'm not here if my mind is there. Mera man ho sakta na main aapse baat kar rahi hu lekin man कहीं और है, तो आपको वो एक्सचेंज का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने बहुत सारे डिस्टर्बेंस से गुजर रही है। लेकिन अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं,
4: तो मैं ही जानना चाहती हूँ, लोग भी ये जानना चाहेंगे कि व्हेन आई गेट कनेक्टेड टू हिम, मतलब जब मैं उनको याद करूँ, तो क्या वो कनेक्टेड मुझसे है
6: हमेशा ही कनेक्टेड है। यू नो इट्स लाइक अ ट्रांसमिटर जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है। अब सिर्फ रोल किसका बचा है,
4: मेरा,
6: रिसीवर, कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी

0: फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
1: तो
0: था।
1: अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था।
0: वो तो है ही है, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, वो तो है ही है, लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस एंड सेकेंड आई डेंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू। अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल, तो सोल को याद कौन आएगा? सुप्रीम सोल। फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर, लेकिन द मिनट आई ट्यून इन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फ्लो। तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते, तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं। पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा। अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अब उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारी थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं, जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सबकॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए। फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं। वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम। फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है। नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा?
1: सबकॉन्शियस,
0: यहाँ सबकॉन्शियस में। तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट्स साइड पे कर सबकॉन्शियस लेयर को, जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं। तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना, और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम। अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें। कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम। कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम। तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
1: बाकी सब,
0: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माई रिलेशनशिप। फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
1: आसान
0: बहुत ईजी हो जाएगा। एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव, एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव, एंड व्हेन आई गिव my relationships become very close. जो हम meditation में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन faculties हैं, mind, intellect and experience, संस्कार, ये तीनों faculties अपना अपना role play करते हैं। Mind creates a thought, intellect उसको तुरंत visualize करता है, जैसे आपने thought create किया बेटी, तुरंत picture आ जाएगी। तो इसी तरह आत्मा ने thought create किया God, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रही है। तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो कहाँ

0: ऊपर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता। तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट प्योरिटी एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी। तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं, जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं। तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा, मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट। किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है। यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
1: फिर
0: वो मन वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर। एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली। मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है। दिस इज ऑल मैटर, आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति। ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग in the center of the forehead, prikuti ke beech mein ek sundar sa chamakta hua sitara, tiny star, consciousness. Yahan se baith kar main sharir ko chalati hu, main hi hu jo har atma se sambandh anubhav karti hu. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है संबंध अनुभव करने वाली। मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, प्योरिटी, डिविनिटी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। आई सी माई सेल्फ अपने घर की तरफ चलते हुए, अपने आप को देखें, वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ। गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस। आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी, आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ। अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर, वाइब्रेटिंग ऑल ओवर। मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ। आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था, के सामने आकर बैठा। मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन, उनसे कर सकते हैं। मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा, देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। ओम शांति,
1: ओम शांति। सुसा शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनेमिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनेमिक हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम जिसको हम अभी तक तलाश रहे हैं। थैंक यू सो मच। शांति। हर बार की तरह आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सुसा शिवानी, थैंक यू सो मच।
0: शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों, कथाओं की बात करते हैं जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत कर दी थी एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और वो है महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसे उन्होंने गणेश जी को लिखवाया था। और हम पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान रहे थे, और हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो आरुणी की कथा थी, उपमन्यु, वेद, ये जो आचार्य जी के शिष्य थे, इनकी कथा जानी थी। और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी, इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रुव और वनिता।
0: जी,
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रुव ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्ति कहा, दोनों प्रसन्न हो गयी। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता, तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग नहीं ना किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह घोड़ा अश्वरत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था, अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनते श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह से उनकी और असर अपूछ की ओर देखता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। इसी समय श्वेत वर्ण का उच्च सवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्पवृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च सवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नीले कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
0: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागले कदसी जिसे हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागले खदासी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं जी।
1: उस सवा घोड़े को देखकर कद्रू ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जल में देके सर्प अग्नि जल कर भस्म हो जाओगे। कद्रू और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली ज्ञान करने लगी। वे कद्रू और वनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर वनिता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश लोक को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर व नादि उदर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह इतने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। वरुण इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कृष्ण जी की आज्ञा प्राप्त कर कलयुग जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। उनको देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देख कर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देख कर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष की शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रबाल के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से हर साध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर्छा से मर गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए, वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्र अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। वरुण जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिया। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। वरुण जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुण मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। वरुण जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। वरुण जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। वरुण जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बाजु चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र इनकी हड्डी से ये वज्र बना है, इनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत, वन, समुद्र, जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए, आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ मुझसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वही उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर दिया। जब सर्पों प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यु से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
0: जी श्रोता, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षुक, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया, तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम 70 शिशु गतेषु च किम आकर्षित धम किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन 7 मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो 70 थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षित ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन 70 के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधू जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधू से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व तो फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं, और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे।
0: हाँ।
1: और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपत्ति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है, और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो, सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिससे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा, इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण।

अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है, किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है? फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था, मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था, मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी। यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ? फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे। जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है? मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे? ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे हो। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा

सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है, उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है। तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम, तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है। शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना, परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने? तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी, पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गया। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में, कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना,
उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अल-हिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते। जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी। तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उनसे पाही ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतत्म का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का।
5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिलाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे होगे कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना, संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा, कोमल चित्र, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले, पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है, संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी, संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा, और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं,
संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का, और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो बासंती देहों को रंगना है कायरता, पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं, जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के सीखों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी
अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के सीखों से अपनी पीठ खुजला रहा है।

उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी ना थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की, उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी। किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? कहां महावीर और कहां मोहम्मद? उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया। और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद नौ विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने नौ विवाह किए
और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही, अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए। ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे ही नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफा चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें, 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगे पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो, 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता, बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक, अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही
खाना आप दोस्त, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग, उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, हजारों साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चले कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता, ये बात सच। लड़खड़ा तो सकता है
और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहां तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए, तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पर मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देख कर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी हैं, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारों, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती है, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो,
कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा

एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती, फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है, वो जला देना पड़ेगा। आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो। जब पालने जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान, अभी अभी नहाया हुआ, ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रू ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन बद्रिका आश्रम गोकर्ण हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। हिमा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस त्वचा नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी पर्वत वन सागर ग्राम विहार नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस श्राप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया, उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा, और उनके नाम का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्ववास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा

0: जगतकारों का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है।
1: जी।
0: केवल वायु की कर निराहार रहते, इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरूरतकारों ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से त्रिपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं। इसलिए हमारी बात सुनिए, हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं, ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारु से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूँ। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप पर लोग आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए, उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे

0: बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जगत कारु ऋषि कुछ खिन होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरदकारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, शर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धन का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। चरत्कार ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, सब सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले खदासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यार सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले खदासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरदकारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरदकारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वे बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरदकारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरदकारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। समस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूँगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय इनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे, हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा, मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया, उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक स्थल से आया और उसने अपने महल उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। अब जैसा उचित समझे करें। उन्हीं ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, पृथ्वीको ने कहा। हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूर्य जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम हैं।
1: अरे कहाँ पलटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणि ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणि ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे।